0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिर से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है, सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए। जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें, योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में, सुबह, रात में हल्का ही भोजन करें। योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं। फल, सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें। जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारे पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए। हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें। तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान, चक्कर ला सकते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह 1 केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में, छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं, उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए आज की इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके, और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। आइए अब हम बताने जा रहे हैं आपको कपालभाति प्राणायाम के कुछ प्रमुख फायदे, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ। तो सबसे पहले कपालभाति के शारीरिक लाभों की ओर चलते हैं। फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और श्वास से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा, एलर्जी में ये लाभ देता है। रक्त को शुद्ध करता है और शरीर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ कब्ज, गैस और एसिडिटी को दूर करता है। मोटापा नियंत्रित करता है और पेट की चर्बी घटाने में भी यह सहायक सिद्ध होता है। लीवर और किडनी को स्वस्थ रखने में यह बहुत ज्यादा मददगार रहता है। शारीरिक लाभों में बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जिसे हम शुद्ध प्राणायाम भी कहते हैं, यानी कि कपालभाति को हम एक और नाम से जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, शक्तिशाली श्वास क्रिया और शुद्धि प्राणायाम, कपालभाति मोमबत्ती आसन, ऐसे ही कपालभाति के बहुत ही नाम हैं। लेकिन फायदा एक। दूसरा लाभ की ओर चलते हैं जो कि हमारा है मानसिक लाभ। तनाव, चिंता, डिप्रेशन को कम करता है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, दिमाग को ठंडक और शांति प्रदान करता है। मानसिक लाभ में यह आसन प्राणायाम अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो ही हम आगे की क्रियाओं को कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सौंदर्य और दिनचर्या के लाभ। चेहरे पर प्राकृतिक चमक आता है, बाल और त्वचा स्वस्थ रहते हैं, आँखों की रोशनी में भी सुधार होता है। आध्यात्मिक और ऊर्जा के लाभ। शरीर के नाड़ियों की शुद्धि करता है, सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है, जिससे ध्यान और साधना में मदद मिलती है। शरीर और मन में प्राण शक्ति का संतुलन बरकरार रखता है। कपालभाति को सुबह खाली पेट करना सबसे अच्छा माना जाता है। शुरुआत में 2 से 3 मिनट में शुरू करके धीरे धीरे 10 से 15 मिनट तक यह आसन किया जा सकता है। तो आइए हमसे फिर मिलेंगे एक नए आसन के फायदे, एक नए योग क्रिया को लेकर के। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि बहुत सारी योग की योग सीरीज हमने आपके साथ शेयर की है, योग को किस तरीके से अपनाने के लिए बताया है, योग को करने के लिए बताया है, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी प्रणालियों को भी शेयर किया है जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित भी हुई है। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि जब योग से हम जुड़े थे तो मुझे भी इस तरीके की जानकारी पूर्णता नहीं थी, लेकिन जब हम योग से जुड़े तो हमें भी यह मालूम हुआ कि योग हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यूं ही नहीं कहा गया है कि योग से जुड़ने के साथ जीवन भी बदल जाता है। ऐसे ऐसे योगियों को हमने योग करते हुए देखा है, ऐसे ऐसे रोगियों को हमने योग करते देखा है, जो कि एक बहुत गंभीर रूप से जब पीड़ित होते हैं तो भी योग को करने के बाद भी उन्हें राहत मिलती है। योग में सबसे पहला जो कि हम पूर्णता 8 प्राणायामों के बारे में बताते आए हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, अग्निसार, भस्त्रिका, भ्रामरी, अग्निसार। क्योंकि हम कई बार ये देखते हैं मुख्य 8 प्राणायामों के बारे में तो सभी बात करते हैं, लेकिन उसके फायदे, उससे जुड़ी हुई कई ऐसी बातें होती हैं जो कि हमारे, जिसे कहते हैं ना कि जब कोई कलाकार होता है तो जो आगे रहता है, यानी कि जो फ्रंट पेज पे होता है, हम उसे ही देखते हैं, लेकिन बैक ऑफ कैमरा यानी कि पर्दे के पीछे जो जिनका हाथ होता है, जिनकी मेहनत होती है, जिनके कारण हम उनको जानते हैं, वो हम कहीं ना कहीं भूल जाया करते हैं।
ठीक उसी प्रकार से ये 8 मुख्य प्राणायामों के बारे में तो हमने सभी को जाना कि या भी और हमें महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली, पर क्या इसके फायदे को किसी ने जाना? अमूमन हम ये भी कह सकते हैं कि बिना फायदे के तो योग कोई करेगा ही नहीं, यानी कि अनुलोम विलोम कपालभाति अग्निसार भस्त्रिका भ्रामरी यदि हम पहले से ही कर रहे हैं तो हमें उसके फायदे अगर ना मिलते तो कोई समझ ही नहीं पाता, पर ऐसा नहीं है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आज हम आपको देने जा रहे हैं, यह एक पर्दे के पीछे काम करने वाले व्यक्ति जैसी ही है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में, जो कि हमारे लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी को पता है कि अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम जब हम करते हैं तो एकाग्र चित होकर के हम एक शांत अवस्था में बैठ जाते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें वातावरण ही केवल शांत मिले, महत्वपूर्ण ये है कि हमें हमारी अंदर की संतुष्टि, हमारी अंदर का ध्यान और हमारी अंदर की खुशी महत्वपूर्ण साबित होनी चाहिए। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज अनुलोम विलोम के फायदे आपसे बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार अनुलोम विलोम को हमने किया, इस प्राणायाम के बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी, कैसे होता है, कब करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, किस अवस्था से और किस अवस्था तक यह प्राणायाम करना चाहिए, परंतु आज हम अनगिनत फायदे लेकर के आए हैं जो कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से कई तरह के फायदे हमें मिलते हैं, जिसमें से कुछ शारीरिक, मानसिक और हमारे बौद्धिक स्तर को यानी कि बौद्धिक स्वास्थ्य को फायदेमंद पहुंचाने में निरंतर काम करते हैं। कि अनुलोम विलोम वैकल्पिक श्वास, नासिका श्वास इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूर्णता दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से दाहिनी नासिका से सांस लेते हुए हम इसे पूर्णता करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम श्वास का आवागमन यानी कि आदान प्रदान करते हैं, दाई नासिका से श्वास लेते हुए हम बाई नासिका से छोड़ते हैं और बाई नासिका से श्वास लेते हुए हम दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ते हैं, इसी प्रक्रिया को अनुलोम विलोम कहा जाता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो हमारा पेट बहुत ही ज्यादा पीछे की ओर दबने लगता है। इसका सीधा कारण यही है कि श्वास से निर्मित यह प्राणायाम तो है ही, साथ ही साथ यह प्राणायाम हमारे पाचन तंत्र को भी बहुत मजबूत करता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है तो हमारा शरीर काला पड़ने लगता है। इस फूर्ति की जगह पर हमें हमेशा से उदासी महसूस होती है, किसी काम में मन नहीं लगना और हमेशा से एकांत में बैठने की इच्छाएं होती हैं, किसी से बात न करने के लिए या फिर हमेशा से चिड़चिड़ापन बना रहता है। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना और श्वास से निर्मित जब हमारे पास ऐसे कुछ कारण हो जाते हैं तो हमें पाचन तंत्र की कमी भी महसूस होने लगती है। अनुलोम विलोम के फायदे वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ फायदे आज हम आपके साथ बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो फायदा है अनुलोम विलोम को करने से, इससे तनाव और चिंता कम होती है। आपने कभी ये गौर किया है कि यदि जिस दिन हम सुबह उठ करके योग से जुड़ते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, उस दिन हमारा मूड और हमारा स्वास्थ्य भी साथ ही साथ में बहुत ही बढ़िया रहता है, जिसको आज की लैंग्वेज में जो टीनेजर्स बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो कहते हैं कि आज हमारा मूड बहुत चिल है। इसका मतलब यही हुआ कि आज हमारा मूड बहुत ज्यादा अच्छा है। और वहीं अगर हम सवेरे उठ करके कभी किसी से चिड़चिड़ हो जाती है या फिर मूड ऑफ हो जाता है तो हमारा मन भी किसी काम में नहीं लगता है। दूसरा है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। आप अनुलोम विलोम को बेहतर जानते हैं, अनुलोम विलोम इतना प्रभावशाली है, यदि जिन लोगों को अनुलोम विलोम करने के लिए नींद की अधिकता भी होती है या उसकी कमी होती है तो हम जान लें कि यह अनुलोम विलोम के प्रभाव के कारण ही होता है। अनुलोम विलोम जब हमारे साथ में सभी लोग मिलके करते हैं तो हमें इतना अच्छा प्रतीत होता है कि मैं आगे क्या ही बता दूं। जिन डॉक्टर्स ने यह गोली देते हैं या फिर जो पेशेंट जिन्हें नींद नहीं आती है, जिन
मरीजों को नींद नहीं आती है, जिन पेशेंट्स को नींद नहीं आती है वो लोग टैबलेट्स लेते हैं। अगर वो नित्य प्रति अनुलोम विलोम करें तो उन्हें नींद की शिकायत जो है वो भी दूर होती है, इसीलिए यह नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। इससे हृदय स्वस्थ रहता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। ब्लड प्रेशर आजकल बच्चों में यानी कि टीनेजर्स के बाद यानी 18-20 के बाद ही ब्लड प्रेशर की समस्याएं देखी गई हैं। इसीलिए अनुलोम विलोम का नियमित रूप से करना बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। इससे गठिया, माइग्रेन और अवसाद जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। यह श्वसन विकारों जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में भी फायदेमंद होता है। यह शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इससे वजन घटाने में भी मदद मिलती है। आजकल महंगे महंगे हम जिम जाते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी जो कि टैबलेट्स लेते हैं, शेक्स पीते हैं, जिससे हमारा वजन जो है वो घट जाए, लेकिन बिना पैसे थोड़ा सा जल्दी उठ करके अगर हम अपना टाइम दे दें अनुलोम विलोम को, तो हम घर बैठे ही अपने वजन को घटाने में मदद कर सकते हैं। कौन नहीं?

जब हम उनके साथ में लेटते उठते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे खर्राटे। एक को खर्राटे आते हैं और दूसरे को नहीं, तो साथ ही साथ में नींद तो खराब होती ही है, साथ ही साथ चिड़चिड़ा और गुस्सा भी आता है। तो आइए अनुलोम विलोम के फायदे हमने आज जाने, साथ ही साथ आज हमने आपको अनुलोम विलोम के वो फायदे बताए हैं जो कि अमूमन सभी के घरों में यह समस्याएं होती ही आती हैं। तो अनुलोम विलोम से जुड़े इनके फायदों को जानें और उसके बाद योग करें और खुश रहें। इसी के साथ नए एक और योग की फायदे लेकर के आपकी योगिनी समता आएंगी। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योगा एक्सपर्ट आपकी योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप अपना ख्याल खुद से भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा अपनों का और आपका रखते होंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्राणायाम की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं एक प्राणायाम जो कि आज हम आपको उस प्राणायाम के अंतर्गत ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम स्वयं करेंगे और आप भी हमारे साथ उस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आइए आज हम अपने ईश्वर, अपने ईष्ट, अपने अल्लाह, अपने गॉड को याद करते हुए एवं अपने माता पिता, अपने गुरु को याद करते हुए अपने मन एवं चित्त की सारी व्यक्तियों को एकाग्र करते हुए पूर्ण रूप से उन्हें अपने आप को समर्पित करते हुए ध्यान अपने गुरुवर में लगाते हुए पूरा अपना शरीर अपने वश में रखकर मानो हम पूर्णता इस पृथ्वी को सारी शक्तियों को एकत्रित करके अपने में संचित कर रहे हैं और ध्यान को और विस्तार में अपने आप में विस्तृत कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान एक मुद्रा है जिसे हम जितना भी विस्तृत करें वह कम है, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज है जिस भी चीज पे हम लगाएंगे वह विस्तृत होती जाती है। जैसे यदि हम किसी वस्तु में ध्यान लगाएंगे तो वह सक्रिय होते होते अंततः निष्क्रिय होती जाती है, उसी प्रकार इसका उल्टा यदि हम प्रभु में ध्यान लगाएंगे तो वह सक्रिय के साथ साथ और विस्तृत होती जाएगी। हमें उनका पूर्ण रूप से बोध और अपने आप में हमें आत्मा का बोध होने लगेगा और अंततः एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने प्रभु में लीन होकर हम अपने आप को पहचान लेंगे और एक दिन हम अपने प्रभु के चरणों में बैठकर अपनी सारी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखेंगे। यह एकमात्र ध्यान से ही संभव है, क्योंकि ध्यान ऐसी चीज है या हम कहें ऐसी अवस्था है जिसे हम करने से पूर्व कुछ ऐसी बातों का, कुछ ऐसे नियमों का ध्यान रखते हैं जिसे करने के लिए हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों आज हम अपना पहला प्राणायाम यानी भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं, जिसको करने के लिए हमें स्वतः पहले एकाग्रचित हो करके हम कहीं पर भी, जैसे यदि हम जमीन पे बैठे तो हम चद्दर या मैट या हमें योगा मैट होगी, हम उस पर बैठकर आराम से सुखासन, सिंहासन, पद्मासन की स्थिति में कर, यदि हमें इन आसन में बैठने में कोई परेशानी हो रही है तो हम स्वतः जिस भी तरीके से बैठ सकते हैं नॉर्मल पलथी मारकर हम बैठ जाएंगे। उसके बाद हम मुद्रा लेंगे, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी पहली उंगली पहली मुद्रिका अंगूठे के नीचे दबा करके पीठ सीधी और पेट अंदर की तरफ, पीठ बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, अपने मुखमंडल पर एक भीनी सी मुस्कान, जैसे मानो हमें सामने अपने ईश्वर, अपने ईष्ट देव के दर्शन हो रहे हों, और इस तरीके से अपने आप को पूर्णतः

समर्पित करते हुए एकाग्रचित होकर आंखें बंद करके जमीन पर जब हम बैठ चुके, अपना आसन ले चुके, उसके बाद मुंह बंद रखकर एक नासिका से, यानी हमारी नासिका के दो छिद्र हैं दायां और बायां, तो हमें दाएं और बाएं दोनों से आराम से, जैसे आपको कोई परेशानी ना हो, लंबी गहरी सांस ऐसे भरेंगे जैसे मानो वह सांस हमारे फेफड़ों में जाकर समावित हो रही है और उसे भरा जा रहा है। जिस तरीके से हम सांस भरेंगे, तो आइए हम अपना प्राणायाम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण कुछ इस तरह

अपनी अपनी सारी मन की चित्तों को शांत करते हुए, श्वासों को एकत्र करते हुए, अपना पूरा ध्यान आती जाती पर लगाते हुए, एकाग्रचित हो करके लंबी गहरी सांस भरेंगे पुनः और एक मिनट का होल्ड करके, एक मिनट रोक करके सांस को फेफड़ों में भरेंगे। फेफड़ों में भरने के बाद आपका पेट जैसे मानो फूल गया हो, इस तरीके से आपको प्रतीत होगा। पुनः करेंगे।

जिस गति से हम श्वास लेंगे उसी गति से हम श्वास को छोड़ेंगे भी। प्रारंभिक अवस्था में हम यह ध्यान रखें कि हम श्वास को लेते समय कोई भी जल्दबाजी ना करें और कोई भी लापरवाही ना करें, क्योंकि यदि हम

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: venus.
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में न जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आप सबका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में. आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम. ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में. और आज क्या है भाई, आज जो है वो है मंडे. और मंडे मॉर्निंग में हम वापस से हाजिर हैं आपके इस पूरे वीक की शुरुआत में आपके साथ होने के लिए. यस, बेशक. सो चलिए भाई, जब हम एक साथ में हैं तो क्यों ना फिर चलते हैं और जो कुछ भी आज आपसे बताने के लिए हम पहले से ही लेकर आए हैं आप तक पहुंचाने के लिए, वो सब कुछ पहुंचा देते हैं. लेकिन उससे पहले ये हॉट और गर्मी वाली मॉर्निंग आप सभी लोगों को बेहद मुबारक. तो चलिए भाई, अब शुरू करते ही करते हम पहुंच चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताते हैं कि आज का मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे क्या है. क्योंकि हर थॉट हमारे दिन की शुरुआत बनता है और कहीं ना कहीं हम पर एक अमिट छाप भी छोड़ के जाता है. तो जब इस तरह से थॉट हमारे लिए ख़ास हो जाता है, हमारी लाइफ का हिस्सा हो जाता है, तो फिर हम समझ पाते हैं कि हाँ, थॉट की क्या अहमियत है, थॉट किस तरह से हमारी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है जो हमारे अंदर चला करता है. और जब ऐसा कुछ मिल जाता है जैसा कि हमारे साथ है या हम उसको महसूस कर चुके हैं, तो क्या लगता है कि वाह भाई, ऐसा थॉट तो सच में बहुत खूबसूरत है. तो चलिए, क्या है आज मंडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे, वो आप तक पहुंचा देते हैं. फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, जो कि है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन. और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान.
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Arjun Khan.

हाँ जी, तो भाई अब वक्त आ गया है आपको बताने का कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है और आज का थॉट ऑफ द डे आपके लिए क्या पैगाम लेकर के आया है। फिलहाल आज का थॉट ऑफ द डे मंडे स्पेशल है, तो बात भी कुछ वैसी ही है। आज का थॉट कहता है कि मैं जो हूँ मुझे वही रहना चाहिए, मैं जो हूँ मुझे वही रहना चाहिए, मुझे अपना होना ठीक ठीक सहना चाहिए। मैं जो हूँ मुझे वही रहना चाहिए, मुझे अपना होना ठीक ठीक सहना चाहिए। इसके क्या मायने हैं, इसका मतलब क्या, इसकी मीनिंग क्या निकल के आ रही है। हालांकि थॉट्स की कोई ऐसा फिक्स्ड मीनिंग नहीं होती कि भाई यही मतलब है, आप अपने अकॉर्डिंगली समझते हैं। फिलहाल मुझे जो समझ में आता है कि हम अक्सर कहते हैं ना खुद को कि अगर हम ऐसा कर लिए होते या ऐसे नहीं ऐसे होते तो हम हमारे साथ ये ना होता। अब ये बताइए कि जब कोई भी चीज़ होती है तो हर किसी के दो पहलू होते हैं, जैसे कहा भी गया होता है प्रोज एंड कॉन्स होता है। कोई चीज़ बेहतर हो जाती है तो कुछ चीज़ छूट रही होती है। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आप सब कुछ बचा के चल पाए, क्योंकि अगर आप खुद पे सेंट्रिक हैं तो हो सकता है लोग बोले कि भाई वक्त ही नहीं है, तुम तो बहुत एटीट्यूड में आ गए हो। अगर आप लोगों को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो लोग खुद कहेंगे अरे अपने लिए भी कुछ कर लो, इसीलिए तो कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो आप जिस भी तरह से चलने की कोशिश करिए, आपके में कुछ ना कुछ रह जाएगा, क्योंकि जब आप कुछ करते हैं तो कुछ होता है और उसी के करने से कुछ नहीं भी होता है, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे होते हैं जो आप फिलहाल कर रहे हैं और नहीं करने वाला छूट जाता है, इसलिए इसका स्कोप हमेशा रहता है। तो आप जैसे भी हैं जो भी है, कुछ चीज़ें आपके जैसे हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्रकृति, आपके बिहेवियर के हिसाब से आप तक आएगी, उससे घबराना नहीं है। वो चूंकि आप हैं वैसे, इसलिए वो चीज़ें आपके सामने आएंगी ही आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। और यही कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे। थॉट कहता है कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे हैं वैसा भी कोई ना कोई आपको कहेगा कि आप ऐसे नहीं हो सकते थे, ऐसे होते, या आपको खुद लग सकता है। बहुत सिंपल सी बात है कि कोई सेल्फ सेंट्रिक है तो लोगों से कम बात करता है तो लोग कहते हैं कि भाई बात करना चाहिए। कोई बहुत टॉकेटिव है, सबसे बात करता है तो कहते हैं कि मेंटल पीस नहीं है, तुम्हें अपने पास अपने साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं लाइफ को बैलेंस करके जैसा आपको लगता है। हम बार बार इस बात को क्यों कोट करते हैं कि जैसा आपको लगता है, क्योंकि आपको गलत नहीं लगता है। आप ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से धीरे धीरे सीखने लगते हैं कि कितना कितना टाइम कहाँ कहाँ देना है, अब क्या करना, अब क्या करना है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर हम खुद पर डाउट करने लगते हैं, जहाँ पब्लिक ओपिनियन लेने लग जाते हैं। वहाँ हर शख्स जैसा उसको लगता है वैसा वो कहता है कि ऐसा कर लो, हालांकि आपकी लाइफ वैसी नहीं होती है। आपकी लाइफ कैसी होती है ये आप बेहतर जानते हैं। डर भी वही होता है जो दूसरों से मिला होता है, इसीलिए आप खुद जब अपने फैसले लेते हैं, खुद की जब कमियों को भी आप सहते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आपके लिए भी इजी हो जाता है। और ये इजी कौन बनाता है, ये आप खुद बनाते हैं, कोई और नहीं बनाता है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को समझा जाना कि भाई अब इस चीज़ को समझिए कि अगर आप जैसे हैं आपको ठीक ठीक खुद को भी वैसा ही सहना होगा। कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो आपके होने से प्रॉब्लम आएंगी आपको ही, और वो आपको ही सहना है। और यही तो जैसे होता है कि अपने को एक्सेप्ट कर लेना, राइट। यही कह रहा आज का थॉट ऑफ द डे। अब आज का थॉट ऑफ द डे आपको कैसा लगा, आप इस थॉट से क्या समझ पा रहे हैं, क्योंकि है ये बहुत ज़्यादा डीप, बहुत गहरा है। बस इतना ही कह रहा है कि आप जैसे भी हैं उसकी अच्छाई भी आपकी है और उसकी बुराई भी आपको ठीक ठीक सहना ही होगा, क्योंकि आप किसी भी तरह के हो जाएंगे, ये चीज़ें छूटेंगी नहीं। हाँ, अपने मन के हिसाब से होंगे तो अच्छा लगेगा सहने में, और दूसरों के मन के हिसाब से होंगे तो मुश्किल हो जाएगा। बस इतना ही फ़र्क है। अब आपको कैसा लगा
ये हमको बता दीजिए, क्योंकि अब हम चल रहे हैं अली जफर की आवाज की तरफ आपके मॉर्निंग वाले शो में गुड मॉर्निंग गोंडा में, आपके मॉर्निंग चौक आर जे अदनान के साथ। और काफी कुछ है आज मंडे ना, हमने कहा था मंडे में बहुत कुछ होता है जो आपसे हमें बताना होता है, कहना होता है। सो काफी कुछ है जो आपसे हम कहने वाले हैं। एक बार वापस से कहेंगे ना प्यार से अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, एक बार देखिए ना खुद को कितने प्यारे लग रहे हैं आप।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और देखिए ना, वापस से आ गए हैं, आने के बाद काफ़ी सारे मैसेजेस नज़र आ रहे हैं, तो चलिए भाई चलते हैं मैसेजेस की तरफ और देखते हैं क्या कुछ लिख भेजा है आपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो के मॉर्निंग चौक आरजे अदनान के पास सिर्फ और सिर्फ चैट बॉक्स पर। लेकिन उससे पहले सुनने वाले सभी श्रोताओं का फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से आप सभी का वेलकम करते हैं मॉर्निंग चौक आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो इतने सारे मैसेजेस के बीच में आप चल के बताते हैं कि क्या मैसेज आपका है, आपकी तरफ से हमको क्या मैसेज मिल गया है। क्योंकि बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस होते हैं जब मॉर्निंग में आके देखो, किसी ने फ्लावर दिया होता है तो किसी ने गर्मा गर्म चाय दी होती, मतलब लिटरली दिल खुश हो जाता है, रिफ्रेश हो जाते हैं एकदम। सो सबसे पहला जो मैसेज आ रहा है आज के इस शो में, वहां से शुरुआत करते हैं। मुकेश का पहला मैसेज है, मुकेश यादव गोंडा से हैं, लिखते हैं, गुड मॉर्निंग से दिल से गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में, हरीश चंद सविता जी आपका भी स्वागत करते हैं, आशु मिश्र जी प्यारा सा सुप्रभात सुप्रभात आपको भी वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। प्रीति जी फ्रॉम बहराइच लिखा है, सर जी गुड मॉर्निंग टू यू। अनुष्का जी हैं श्रावस्ती से, गुड मॉर्निंग सर हाउ आर यू। गुड मॉर्निंग, मैं बहुत बढ़िया हूँ, उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे। ज्योति सिंह भी मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग डियर सर कैसे हैं आप। गुड मॉर्निंग, मैं बहुत बढ़िया हूँ और मुझे उम्मीद है ज्योति कि आप भी ज़रूर अच्छी होंगी। इसके बाद जो है आप लोगों ने आज के थॉट ऑफ द डे पे अपनी राय भी रखी है, तो चलिए बताते हैं क्या कुछ लिखा है आज के थॉट के ऊपर, आपके रिएक्शंस क्या है। सबसे पहले ज्योति ने कहा सुपर्ब थॉट, थैंक यू सो मच, कायनात का है सुपर्ब थॉट, थैंक यू। एंड इसके बाद जो है अनुष्का जी लिखती हैं, वेरी नाइस थॉट ऑफ द डे सर, थैंक यू सो मच टू यू। एंड बहराइच से प्रीति जी ने कहा है ऑसम थॉट, हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं भैया, बट आजकल समय अनुसार कदम से कदम मिलाकर चलना बुद्धिमानी होता है अपने लिए, ओके। और आशु जी लिखती हैं आंख दुनिया की हर एक चीज़ देखती है, पर आंख के अंदर कुछ चला जाता है तो उसे आंख नहीं देख पाती। ऐसे ही इंसान दूसरे की गलती तो देख लेता है पर खुद की गलती उसे नज़र नहीं आती। नाइस थॉट, थैंक यू सो मच टू यू, एक अच्छा आपने एक पर्सपेक्टिव दिया है। सो ऐसा होता है कि भाई आपकी प्रॉब्लम्स आपकी चीज़ों को हर कोई बताएगा, एंड जो भी चीज़ आप चुनेंगे उसमें से कुछ तो आपको सहना भी होगा, उसके लिए आपको बी रेडी, आपको तैयार रहना है और अपने मन से चुनी गई चीज़ें आपको आप तक ज़रूर पहुंचा देंगी। ये एक अच्छा सरल और सही तरीका हो सकता है खुद तक पहुंचने का, राइट। चलिए ये बहुत अच्छी बात है, और एक प्यारे से सॉन्ग को अब तक पहुंचा देते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम, यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉकर अर्जी अदनान, स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो होती तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन उनके पीछे की कहानियाँ जो है वो अलग है। वैसे आप जब भी जाते हैं ट्रेन में तो आप सफ़र करते हैं और आपको लगता है ट्रेन एक घर की तरह है, और किस तरह से ये एक अलग ही दुनिया है जिसमें रेलवे के ट्रैक्स आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है जिस टॉयलेट का आप इस्तेमाल करते हैं रेलवे में उसको किस तरह मिला? किसने सोचा कि ट्रेन में ही क्यों ना टॉयलेट एस्टैब्लिश किए जाए? चलिए, अगर नहीं पता तो हम बताते हैं कि किस तरह से ट्रेन को मिला उसका टॉयलेट। यस,
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आरजे अतन।

सो क्या है इसके पीछे कहानी? दरअसल भारतीय रेल को किस तरह से टॉयलेट मिला, देखिए सालों पहले की बात है, जब अखिल चंद्र सेन बाबू, उनसे एक ट्रेन मिस हुई थी, जी हाँ, जिसकी वजह से आज भारतीय रेलवे में टॉयलेट की सुविधा है। अब आप सोचेंगे, अखिल चंद्र सेन बाबू से एक ट्रेन मिस हुई थी और उसके पीछे आज भारतीय रेल में टॉयलेट की सुविधा है, ये क्या बात हुई? दरअसल हुआ यूं था कि 20वीं सदी की शुरुआत में अखिल बाबू ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, लेकिन कटहल खाने की वजह से अचानक उनके पेट में दर्द होने लगा। अब नेचर्स कॉल से मजबूर होकर उन्होंने अहमदपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरना पड़ा, लेकिन जब तक वो टॉयलेट से लौटे तब तक उनकी ट्रेन निकल चुकी थी। उन्होंने दौड़कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश की, जिससे उनकी धोती भी खुल गई और उन्हें कई लोगों के सामने अपमानित भी होना पड़ा। सो इस घटना से दुखी होकर के उन्होंने रेलवे अधिकारियों को एक गुस्से भरा लेटर लिखा। उन्होंने बताया कि कैसे उतरते वक्त उन्होंने गार्ड को इंतज़ार करने को कहा था, लेकिन गार्ड ने ये बात भूल गया और ट्रेन उन्हें छोड़कर आगे चली गई। सो इस लेटर में धमकी भी थी कि अगर इस शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो वो इस घटना को अखबार में प्रकाशित करवा देंगे। इस धमकी भरे पत्र ने रेलवे अधिकारी को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद लंबी ट्रेन की जो दूरी थी लंबी, उसमें सभी ट्रेन्स के जनरल कोचेज में टॉयलेट्स बनाए गए। जी हाँ, तो अब अगली ट्रेन में टॉयलेट इस्तेमाल करते समय एक थैंक यू अखिल बाबू को भी ज़रूर बोल सकते हैं आप। सो देखिए, कहते ना कि कोई भी चीज़ जो हम आज देख रहे हैं उसके पीछे कोई घटना होती है, कोई वजहें होती है। सो कभी ख्याल नहीं आया कि भाई ये ट्रेन्स में टॉयलेट्स क्यों बनाए जाते हैं, हालांकि अब आपको हर तरफ हर देश मिल जाएंगे, लेकिन जब भारतीय रेल की बात आती है तो अखिल बाबू का नाम ज़रूर सामने आता है, जिसकी वजह आज हमने आपको बताया कि किस तरह से अखिल बाबू की वजह से वो दिन कि आज हम सब इस फैसिलिटी को यूज़ करते हैं। सो ये थी इसके पीछे की बिहाइंड द स्टोरी। आई होप कि ये स्टोरी आपको पहले नहीं पता होगी और फर्स्ट टाइम आपको लगा होगा कि हाँ यार, अच्छा इसके पीछे भी कोई स्टोरी थी क्या। आपको अब तक ये लग रहा होगा कि भाई दुनिया में हर तरफ बनी रेल और ये फैसिलिटी थी तो यहाँ भी ऐसी शुरुआत हुई होगी, बट ऐसा नहीं है। भारतीय रेल के पीछे अभी जो हमने स्टोरी बताई वो स्टोरी ही थी। सो आई होप कि ये नई जानकारी भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रोचक रही होगी और आइंदा जब आप जाएंगे तो अखिल बाबू को ज़रूर याद करने वाले हैं, ये तो फिलहाल हमें भी ऐसा ही लगता है। खैर, आने के बाद बहुत कुछ है जो आपसे शेयर करना है, साझा करना है। आप बने रहिए अपने गोंडा FM 9.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर, क्योंकि मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक RJ अदनान।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

हाँ जी, इरादों में अगर आप भी हैं और आपने भी इरादे बना लिए हैं। वैसे कई बार एक सवाल आपके मन में आता है कि नहीं, सवाल ये आता है, क्या एक साथ दो डिग्री हम ले सकते हैं, क्या एक साथ दो कोर्सेज हम कर सकते हैं। ये सवाल हमेशा आपको आता है और हमेशा से लोग कहते हैं नहीं, एक साथ दो कैसे डिग्री लगा सकते हो, परमानेंट ऐसे तो अलाउड नहीं है। बट UGC का नियम क्या कहता है, क्योंकि अभी हाल में ही UGC का इस बात को लेकर के नियम बदला है जिसमें एक साथ दो कोर्स किए जाने की बात हुई है। जी हाँ, आप भी स्टूडेंट हैं या आप भी पढ़ाई कर चुके हैं और किसी को गाइड कर रहे हैं, या आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, या आप खुद भी ऐसा सोच रहे हैं कि एक साथ दो कोर्सेस क्या एक ही ड्यूरेशन में पूरे हो सकते हैं। सो UGC का नियम क्या कहता है, ये हम आपको बताने वाले हैं इस शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। सुनते रहिए अपना गुड मॉर्निंग गोंडा वेडियो मॉर्निंग चौक आरजे अदनान। जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एक साथ दो कोर्सेज कर रहे हैं तो UGC का नियम क्या करता है, किस तरह से आप कर सकते हैं एक साथ दो कोर्सेज, ये हम आपको आ करके बता रहे हैं।

0: हाँ जी, तो भाई हमने कहा था कि आने के बाद आपको हम बताने वाले हैं कि यूजीसी का क्या नियम है एक साथ दो कोर्सेज करने का। तो चलिए अब वक्त आ गया है, ये बहुत ही अहम जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं कि आखिर यूजीसी इस नियम को लेकर के क्या कहता है और क्या आप एक साथ दो कोर्सेज कर सकते हैं, और यदि कर सकते हैं यानी हाँ तो कैसे कर सकते हैं, उसको लेकर के नियम क्या है, यानी नियम क्या कहता है यूजीसी का एक साथ दो कोर्स किए जाने का। अगर अभी तक आपको नहीं पता था तो चलिए आपको ये जानकारी हम दे देते हैं क्योंकि ये जरूरी बात है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

जी तो चलिए भाई, एक साथ दो डिग्री ले सकते हैं नहीं स्टूडेंट, ये बताते हैं हम। और UGC का नियम क्या है? सो आज के वक्त में स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर बेहतर बनाने के लिए दरअसल एक से ज़्यादा कोर्स करना चाहते हैं। कोई ग्रेजुएशन के साथ में डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का सवाल यही रहता है, क्या एक साथ दो डिग्री ले सकते हैं? अगर आप भी नहीं जानते हैं तो जान लेना चाहिए कि क्या कहता है UGC का नियम। तो नियम जो है वो भारत में UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नियम के मुताबिक एक स्टूडेंट जो है एक साथ दो डिग्री ले सकते हैं, और नए नियम के हिसाब से स्टूडेंट एक डिग्री रेगुलर मोड में और दूसरी ओपन या फिर डिस्टेंस या ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। यानी अगर एक जगह मान ली रेगुलर आप जा रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, इस तरह से कुछ भी कर रहे हैं, और उसके अलावा कोई आपको ओपन यूनिवर्सिटी है, कोई दूसरा कोर्स वहाँ से कर रहे हैं, या डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, या ऑनलाइन कोई कोर्स कर रहे हैं, तो एक साथ दो डिग्री आप ले सकते हैं। लेकिन इसके पीछे नियम जो है वो ये है कि एक स्टूडेंट जो है एक साथ दो रेगुलर डिग्री कोर्सेज भी कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए एक तरफ आप BA कर रहे हैं, दूसरी तरफ BCom भी कर सकते हैं, लेकिन उसको लेकर नियम एक है। वो क्या नियम है? नियम ये है कि दोनों ही जो क्लासेस की टाइमिंग है ये एग्ज़ाम एक साथ नहीं होना चाहिए। यानी मान लीजिए अगर आप दो डिग्री कोर्सेज भी कर रहे हैं एक साथ, तो वो भी माना जाएगा, लेकिन दो चीज़ें अलग होनी चाहिए। एक तो आपके जो कक्षा की टाइमिंग है यानी क्लासेस की टाइमिंग, वो अलग होनी चाहिए जिससे कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, एंड दूसरा एग्ज़ाम्स एक साथ नहीं होना चाहिए जिससे कि आप ये ना फंस जाए कि भाई अब एग्ज़ाम कौन सा दे, BA का दे या BCom का दे। तो ये इस तरह से है, एक तो टाइमिंग अलग होनी चाहिए, दूसरा एग्ज़ाम्स की डेट अलग अलग होनी चाहिए। तो एक साथ दो आप डिग्री कोर्सेज भी कर सकते हैं। सो एग्ज़ाम्पल, जैसा हमने बताया कि कोई स्टूडेंट है BA के साथ साथ BBA या फिर BCom के साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन या किसी भी लैंग्वेज का कोर्स कर सकता है। इसी तरह इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं मैनेजमेंट या डेटा साइंस जैसे कोर्स भी साथ में कर सकते हैं। शर्त हमने बता दी कि क्या रहे, ध्यान आपको ये रखना है कि कोई भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले विश्वविद्यालय और कोर्स की जो मान्यता है वो ज़रूर आपको देख लेनी है कि वो सही है कि नहीं। और स्टूडेंट को ये भी ध्यान रखना है कि दोनों डिग्री का शेड्यूल आपस में टकराए ना, वरना पढ़ाई जो है वह अफेक्टेड होगी। सो शेड्यूल जो पढ़ाई करने का है, क्लासेस का टाइमिंग वो अलग अलग हो, एग्ज़ाम्स की टाइमिंग भी अलग हो, तो इससे आपके लिए इजी हो जाएगा। सो दो रेगुलर डिग्री लेने की भी जो है वो फ़िलहाल परमिशन है। कहा ये भी जाता है कि साल 2022 में UGC ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 के तहत नियमों में ढील दी है और स्टूडेंट्स को दो रेगुलर डिग्री लेने की परमिशन दी थी। सो एक रेगुलर और दूसरा डिस्टेंस कोर्स कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स को सवाल रहता है कि क्या एक कोर्स रेगुलर और दूसरा डिस्टेंस से कर सकते हैं, तो आपको हम बता दें कि ऐसे दोनों कोर्सेज आप कर सकते हैं। जी हाँ, मतलब ये नियम है, इसमें आप कर सकते हैं, एक अगर रेगुलर है दूसरा डिस्टेंस से कर रहे हैं, या ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, या फिर ऑनलाइन कोई कोर्स कर रहे हैं, या एक साथ दो डिग्री कोर्सेज भी कर सकते हैं। बस कक्षाओं का टाइमिंग यानी क्लासेस का टाइमिंग और एग्ज़ाम्स की टाइमिंग अलग अलग होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें अलग हैं तो आप डेफिनेटली दो डिग्री कोर्सेज भी एक ही साथ में कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आप तक पहुंच गई है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आपके छोटे भाई बहन या बेटा बेटी या कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड इस तरह करना चाह रहे हों और उनको नहीं पता, तो हमने अभी आपको UGC का जो एक नियम है दो कोर्सेज के एक साथ करने का, वो हमने आपको विस्तार से समझा दिया कि किस तरह से एक रेगुलर कोर्स दूसरा ओपन यूनिवर्सिटी से या फिर डिस्टेंस लर्निंग या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप ले सकते हैं। दूसरा है कि दो डिग्री कोर्सेज भी कर सकते हैं, बशर्ते टाइमिंग और एग्ज़ाम डेट जो है वो अलग अलग हो। आई होप कि ये जानकारी आप तक पहुँच गई होगी। और अब आप भी अगर ऐसा करने का सोच रहे हैं तो वह आपको मिल गया है चांस, और आप करें वाओ क्या बात है, अब हम एक साथ दो दो कोर्स कर सकेंगे उसी ड्यूरेशन में, अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए,
खुश हो जाइए।

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450 944 999।
7: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
8: इसको तुरंत अल्टर स्किप्स ले चलो।
9: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टर स्किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
10: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
9: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
11: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
12: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
11: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
12: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
11: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
12: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
13: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: कई बार कुछ बहुत एवरेज सोचने और कई बार सोचते ही उसको करने के में क्या फ़र्क होता है, ये अभी आपको समझ में आएगा माइकल जैक्सन की एक बात से। अब आप सोचेंगे इसमें माइकल जैक्सन कहाँ आ गए। भाई यही तो बात है, कोई कहीं से भी आ सकता है। किसी की ज़िंदगी का एक छोटी सी बात या उसका एक छोटा सा पहलू भी किसी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी रोशनी बन सकता है। सो क्या है माइकल जैक्सन के बारे में कि वो अपने आइडियाज़ को किस तरह से देखते थे, और हम अपने अगर कोई आइडिया होते हैं तो उसको जनरली किस तरह से देखते हैं, ये बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो देखिए माइकल जैक्सन के बारे में हम बता रहे हैं आपको। रात में 3 बजे लोगों को उठाकर स्टूडियो बुलाते थे माइकल जैक्सन। ये बताते हैं कि जब मैं रात में 3 बजे उठता तो लोगों को स्टूडियो बुलाता था, क्योंकि इन्हें एक चीज़ का डर था, फेलियर का नहीं कि फेल हो जाएंगे, डर इस बात का था कि कोई दूसरा इनका आइडिया ना ले जाएगा। एक रात की बात है जब प्रोड्यूसर ने इरिटेट होकर पूछा, सुबह रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्या? माइकल जैक्सन ने कहा कि अगर अभी नहीं किया तो गॉड्स ये सॉन्ग किसी और को दे देंगे। सो अब जरा ध्यान से सोचिए, एवरेज जो लोग सोचते हैं मेरे पास बहुत आइडियाज है, एवरेज जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि मेरे पास बहुत आइडियाज हैं। यही डिफरेंसेस है। एवरेज लोग इंस्पिरेशनल फील करते हैं और जो विनर्स होते हैं वो इंस्टेंटली एक्शंस लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है मोटिवेशनल जो है वो टेम्परेरी है, एनर्जी टेम्परेरी है, इंस्पिरेशनल टेम्परेरी है। और सबसे डेंजरस सेंटेंस क्या है? कल से शुरू करूंगा। सो क्योंकि दुनिया में मोस्ट ड्रीम्स फेल नहीं होते हैं, ये डिले होते होते मर जाते हैं, यानी देर होते होते ख़त्म हो जाते हैं। सो माइकल जैक्सन टैलेंटेड ही नहीं थे, ये एक फास्ट एग्जीक्यूटर भी थे। बाकी लोग सोचते रह गए, वो रिकॉर्ड करके रिलीज़ करके भी दे देते थे। इसीलिए अगली

बार जब कोई पावरफुल आइडिया आपके पास आए तो उसे आप सेव मत करिए बल्कि शुरू कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सच है कि हम सोचते रह जाते हैं, कोई आइडिया आता है कि इसको कल से कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बहुत मस्त आइडिया है, इसको ऐसे किया जा सकता वैसे। लेकिन माइकल जैक्सन जैसे लोग जो है वो अपनी छोटी सी आदत से बता रहे हैं कि किस तरह से ये आते ही आइडिया को फास्ट एग्जीक्यूट करते थे और उसके बाद उसको मुकम्मल कर ले जाते थे। सो यही डिफरेंसेस हैं। सो कहीं ना कहीं इस बात को हम शायद समझ पा रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है ऑन द टाइम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मुझे लगता है कि ये मुझे तो समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आया कि नहीं? चलिए ज़रा सोचिए और फिर बताइए कि भाई ये माइकल जैक्सन की जो छोटी सी आदत थी, ये जो करते थे, ये आपकी लाइफ में कितना काम आ सकती है और आप इससे क्या समझ पा रहे हैं, ये ज़रा सोच के आप बता सकते हैं।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में न जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: अच्छा ये बताओ बच्चों, चांद पर पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने। शाबाश। और दूसरा कदम किसने रखा? और दूसरा कदम भी उसी ने रखा होगा ना, आखिर वो लंगड़ा थोड़ी ना था।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हाँ जी सुबह ही आपने जाहिर है गाने को एंजॉय किया होगा, और क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं, क्योंकि आज है मंडे, सो करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सो इतनी सारी चीज़ों को एंजॉय करने के साथ साथ हमने आपको इतनी ज़्यादा अहम जानकारियों से नवाजा है, और दूसरी बात ये कि आप जान गए हैं UGC के नियम के अकॉर्डिंग आप एक साथ दो कोर्सेज भी कर सकते हैं, दो डिग्री कोर्सेज भी कर सकते हैं, बशर्ते आपके क्लासेस की टाइमिंग और एग्ज़ाम डेट अलग अलग होनी चाहिए, या फिर एक रेगुलर एक डिस्टेंस मोड में या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं आप। सो ये जानकारी जो है आप पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन मैंने भी देखा है कि यार बनी रहती है, वो सोच नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में करना क्या है और किस तरह से होगा। सो इसके साथ ही साथ में एक और बात आती है कि सुबह पढ़ना चाहिए या रात में, साइंस क्या कहता है। चलिए हम इस बात पे अगर साइंस को लेके आते हैं तो सुबह 5 से 8 जो है ब्रेन सबसे ज़्यादा फ्रेश माना जाता है, फोकस होता है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो काफ़ी होता है, और लर्निंग कैपेसिटी सबसे हाई होती है इस टाइम में। रात के 9 से 11 अगर बताएं तो दिन भर की पढ़ाई को जो है याद रखने और उसको रिविजन का टाइम सबसे अच्छा होता है 9 से 11 के बीच का। मेमोरी तेज़ करने के भी कुछ तरीके बता सकते हैं, हालांकि ये मैं ख़ुद को भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा भुलक्कड़ हूँ। सो क्या क्या तरीके होते हैं, एक तो है एक्टिव रिकॉल, यानी बार बार ख़ुद को टेस्ट करते रहिए, अचानक से जो चीज़ें याद की है उसको याद कर करके रिमाइंडर खुद को दे दे करके। दूसरा है स्पेस्ड रिपीटेशन, यानी वक्त वक्त पर दोहराते रहना। सो जो कुछ सोचा है आपने, जो भी आपके डेली रूटीन के टास्क हैं या जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के टास्क हैं, उनको भी आपको बार बार से वक्त वक्त पर दोहराते रहना। तीसरा है माइंड मैपिंग, जिसे कनेक्ट करके याद करना भी कहते हैं, यानी कोई ऐसी चीज़ से आप एसोसिएट कर दे किसी चीज़ से जिससे कि आपको याद हो जाए, कोई नाम हो सकता है, कोई चीज़ हो सकता है, कोई फेवरेट फूड हो सकता है, कलर हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग हो सकता है। सो 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप भी ज़रूरी है बाबा, ये रील स्क्रॉल करना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा और समय से सोना पड़ेगा। हेल्दी डाइट प्लस एक्सरसाइज, ये सारे वो तरीके होते हैं जहाँ पर आपकी मेमोरी अच्छी हो जाती है, प्लस एक फार्मूला होता है जिसे कहते हैं कि रेगुलर स्टडी प्लस सही तरीका इज इक्वल टू तेज़ मेमोरी और पक्का सिलेक्शन, ऐसा कहा जाता है। सो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने ही वाला है बाबू मोशाय, ये करके देखिए और उसके बाद बताइए कि हाँ आपको इसका लाभ मिला कि नहीं मिला, क्योंकि हम जो बताते हैं वो होता है गारंटीड, बस शर्त इतनी सी होती है कि उसको एक्शन में लाना पड़ता है, यानी कि अगर उसको आप करने लग जाते हैं तो वो होने भी लग जाता है। फिलहाल ले चलते हैं आपको अदनान साहब की तरफ, अदनान समी साहब की तरफ, कहने का सेंस ये है। सो आइए इनका ज़बरदस्त गाना सुनते हैं, दिल क्या करे, फ्रॉम द मूवी सलामे इश्क़।

0: क्या बात है जानिब, सॉन्ग बहुत प्यारा, ऑफकोर्स आपको भी पसंद आता होगा। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, आपके मॉर्निंग जॉक हर्जी नान। और देखते ही देखते वक्त ने इशारा कर दिया भाई, ये सुइयां जो है वो रुकती ही नहीं है, टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक। फिलहाल पेट्रोल के दाम भी कुछ ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं, अब चौथी बार बढ़ चुका है और वक्त भी थम नहीं रहा है। तो चलिए बढ़ते हुए वक्त के साथ आपके आए हुए मैसेजेस पढ़ लेते हैं और बताते हैं क्या कुछ लिखा है आपने चैट बॉक्स पर आकर के।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

लास्ट पढ़ेंगे मैसेज की बात जो आया है मिश्र ऑप्टिकल गोंडा LBS चौराहे से। अजय मिश्र जी का मैसेज, गुड मॉर्निंग टू यू। इसके अलावा मुकेश लिखते हैं, नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको पसंद आया। अकबर कुरैशी जी नवाबगंज गोंडा से हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू। नगेश्वर धाकड़ फ्रॉम मध्य प्रदेश, गुड मॉर्निंग टू यू। मानसिंह हैं, थैंक यू सर फॉर दिस अपडेट, थैंक यू सो मच टू यू कि आपको पसंद आया, गुड मॉर्निंग सर, हैव अ गुड डे, आपको भी गुड मॉर्निंग। इसके बाद जो है नगेश्वर लिखते हैं, सर जी हमारा भी सलाम इश्क कबूल हो। बिल्कुल कबूल किया गया है और बहुत अच्छे से कबूल किया गया है, रख लिया गया अपने पास प्रॉपर। प्रीति जी कहती मेमोरीज टिप्स, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। और नगेश्वर बताते हैं कि आज इतनी गर्मी है कि मटकी में भी पानी उबाल मार रहा है, क्या बात है, ये ज़रूर मध्य प्रदेश या राजस्थान का ही हो सकता है किस्सा, है ना। इसके अलावा नाइस इन्फॉर्मेशन, नाइस शो, थैंक यू सो मच कायनात को आपको पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। फ्रीक्वेंसी से सुनने वाले, रेडियो गार्डन से सुनने वाले और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन से सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। सो आज का शो कैसा लगा हमको कमेंट करके आप बताने वाले हैं, और हम फिलहाल विदा लेते हैं मंडे स्पेशल शो से। अब कल ट्यूसडे मॉर्निंग आपको मिलने वाले हैं आपके शो में वापस से, इसी शो में इसी जगह, कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नई बातों के साथ, एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए और हाँ, बने रहिएगा अपने 89.6 FM के शोज में, क्योंकि लगातार आने वाला है एंटरटेनमेंट का डोज़।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
5: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
6: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
8: समता, ओ समता, अरे कुछ तो बोलो, ये क्यों गोलगप्पे की तरह मुंह फुलाकर बैठी हो? देखो कितना सुंदर रास्ता है और बारिश के बाद पेड़ कितने सुंदर लगते हैं और कितनी हरियाली है।
9: अरे आज समता दी का मौन व्रत है, उन्होंने बोला है कि कल सुबह जब सूरज निकलेगा तभी ये बात करेंगी।
10: बना लो मजाक, खूब बना लो, हमको सब पता है कि सबकी मिली भगत है, सबको पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस हमको बताया जा रहा है कि गीता दीदी सरप्राइज दे रही है। ठीक है, कर लो मजाक।
11: अरे मेरी मुन्नी, रूठो ना। अरे भाई रूठो नहीं समता, बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, तब पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब तक किरण, हमारी समता रानी को एक प्यारा सा लोकगीत सुनाओ, देखना अभी गुस्सा उतर जाएगा इसका।

0: देखो देखो हमारी समता दी के चेहरे पर हंसी आ गई। मुंह छिपाकर कैसे हंस रही हैं? अरे अब चेहरा दिखा भी दीजिए, ऐसे मुंह छिपा के तो नहीं हंसा जाता।
1: सही कहा आपने, आपके गीत इतने मजेदार होते ही हैं, जो लोक गीत होते हैं तो हंसी तो आएगी ही। और एक बात, इतने सुंदर गीत आप लाती कहाँ से हैं?
2: यह गांव गांव घूमने और वहाँ के सुंदर शीतल वातावरण से मन में भाव आ जाते हैं। गांव की मिट्टी इतनी मोहक होती है, गांव की गूंज की टीम के कारण एक बार फिर से गांव से जुड़ने का मौका जो मिला है।
3: सही कह रही हो किरण, गांव की गूंज की हमारी टीम की ये कोशिश रहती है कि आप सब चाहे जहां पर भी जाकर बस गए हो अपनी किसी भी मजबूरी के कारण, पर अपने गांव की मिट्टी से जुड़े रहिए, उसे ना भूलिए।
1: अपने बच्चों को और अपने परिवार को कोशिश कीजिए कि तीज त्योहार में गांव लाइए, वहां के संस्कारों से, वहां के लोगों से मिलवाइए। देखिएगा आपके इस छोटे से प्रयास से आपके बच्चों के व्यक्तित्व का कितना विकास होगा।
0: आप लोग जब वापस अपनी मिट्टी अपने गांव से जुड़ेंगे तभी जानेंगे कि गांव की ताजी हवा और बिना प्रदूषित पानी में कितना फायदा होता है।
2: हम ये जरूर मानते हैं कि गांव में आपको कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, पर आप हमसे शेयर करिए, हमारी गांव की गूंज की पूरी टीम आपके गांव को और सुंदर बनाने में सहयोग करेगी।
3: और अगर आपका गांव बहुत सुंदर है तो इसकी बातें हमसे साझा कीजिए, उसकी फोटो हमें साझा कीजिए और हम उसे दूसरे गांव को सुंदर बनाने में आपके सुझाव का उपयोग करेंगे।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6393316429। एक बार फिर से नोट कर लें, 6393316429। और मेल आईडी है gyanasthaliradio@gmail.com। पर अपनी बात हमें बताइएगा जरूर।
0: किरण दी चलिए आपके प्यारे से लोकगीत के साथ सबसे अपील करते हैं, आपके लोकगीत लोगों के दिल तक जाते हैं।
4: हमरे तो

0: ये हम कहाँ आ गए? यह पेड़ कितना सुंदर है, जड़ें कितनी गहरी हैं, इसकी छाया कितनी ठंडी है। जया, एक अच्छी सी फोटो लेना। थोड़ा रुको, हम और जड़ों के अंदर चले जाएं।
1: समता, यह सेमल का वृक्ष है और गांव वाले मानते हैं कि इस पेड़ की उम्र पर दादा के उम्र के बराबर है। देखो इस पेड़ को। जब यहाँ की डीएम नेहा शर्मा जी ने देखा तो इसे संरक्षित कर दिया, तभी चारों तरफ से घेर दिया गया है।
2: अरे जरा ध्यान से इसकी गोल गोल जड़े तो देखिए, और जड़ों के बीच में कितनी जगह है। कहते हैं कि 25 मीटर में इसकी गोलाई है, और ये भी बताते हैं कि जनवरी और फरवरी के महीने में इसमें खूब सारे लाल सुर्ख फूल निकलते हैं, और फिर 4-5 किलोमीटर इसकी रुई उड़कर जाती है। पर इधर 4-5 सालों से इसमें फूल आने बंद हो गए हैं।

0: देखिए कितने लोग आ गए हमारी गांव की गूंज की टीम को देखकर। चलिए सब चलते हैं, पेड़ की छांव में बैठकर बातें करते हैं, कितनी ठंडी हवा आ रही है।
1: देवी प्रसाद पांडे इसी गांव के हैं, बता रहे हैं दूर दूर से लोग आकर कह रहे हैं कि पेड़ पर सेल्फी लेते हैं। सरकार 100 साल से अधिक उम्र के वृक्षों को विरासत वृक्ष घोषित करती है, जिसमें यह हमारे गोंडा का विरासत वृक्ष भी है।
0: किरण दी हो और ढोलक ना आए, यह तो हो ही नहीं सकता। देखिए कितने लोग आ गए और खट्टे खट्टे करौंदे भी लेकर आए हैं। पर किरण दी, ये हमको आपके गाने के बाद ही मिलेगा।
2: ससुरिया बड़ी चंचल चमचा से मारे, ससुरिया बड़ी

0: किरण एक और हो जाए। देखो ये लोग हमारे लिए करौंदे का खट्टा मीठा अचार भी लाए हैं। देखो कंडे में बिरजू भैया खेत से लाए हुए ताजे भुट्टो को भी सेकने में लगे हुए हैं।
1: अरे त्योहार

0: जानते हो तुम लोग, यह विरासत का पेड़ है। हमारी इतिहास और संस्कृति गवाह होते हैं और अपनी सुंदरता के कारण टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं, इसीलिए तो दूर दूर से लोग देखने आते हैं।
1: हाँ देखो, पास में टेटी नदी है, वहाँ पुराना रामपुर किला है जिसे लोग देखते हैं, बोटिंग करते हैं और पुराना शिव जी का मंदिर है, वहाँ दर्शन भी करते हैं।
2: ओह, अब समझे, इससे नाव वाले की, फूल वालों की, भुट्टे बेचने वालों की आमदनी होती होगी और इस गांव के बारे में लोग जानने लगे हैं, या सब इस सेमल के वृक्ष के कारण है।
3: अरे भाई, ये तो देखो कि हमारी जया कितनी सयानी जैसी बातें कर रही है। देखो यहाँ की सब्जियों की दुकानें कितनी सारी लगी हैं और रामपुर के बाजार में लोग कितनी सब्जियां खरीद रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विरासत के पेड़ों का पर्यावरण में बहुत योगदान है।
1: किरण दीदी, हम एक बात बताएंगे कि ये भुट्टा खत्म करने तक एक किरण दीदी का गीत तो हो जाना चाहिए।

0: विरासत के वृक्ष बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वायुमंडल को साफ करते हैं, ढेर सारी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। गांव के लोग बता रहे हैं, ढेरों पक्षियों को यहां घोंसला बनाते हुए देखा है और बहुत सारे चमगादड़ों का घर भी। सोचो कितने लोगों का घर और कितना खाना दे रहा है यह सेमल का पेड़।
1: सही कह रही हो समता। और एक बात तुम लोगों ने देखी है क्या, इसकी जड़ें कितनी विशाल हैं, इसीलिए यह कितनी मिट्टी को बांधे हुए है, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है।
2: पर हमारे शहरों में तो ऐसा कोई विशाल वृक्ष है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को बड़े घर, हाईवे, मॉल चाहिए, इसीलिए हम पेड़ काटते जाते हैं, किसी भी पेड़ को बड़ा ही नहीं होने देते हैं।
0: इतने सालों तक इन लोगों ने इस सेमल के पेड़ की रक्षा की और हम सब शहरी लोग तो बोंजार लगाते हैं और शान से बताते हैं कि यह 10 साल पुराना है और यह 8 साल।
2: समता दी, एक मजेदार बात और है, हर साल हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, फोटो फेसबुक पर डालते हैं और फिर पलट कर नहीं देखते कि वह पेड़ कहाँ गया, बच गया तो उसकी किस्मत।
1: इतने सब दुखी दुखी बातें क्यों करने लगे, कितनी अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं यहाँ से। और तुम लोगों को पता है सेमल के पेड़ को साइलेंट डॉक्टर भी कहते हैं। सेमल की छाल, त्वचा की झाइयां, मुहासे, काले धब्बे, खुजली, जलन सब दूर करते हैं। इसका उपयोग दस्त, अस्थमा, एक्जिमा, घावों को भरने में काम करते हैं।
3: सबसे विदा लेने से पहले क्या तुम लोगों ने कबीर दास का ये दोहा सुना है कि ये ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, और दिन दस के व्यवहार से झूठे रंग न भूल। मालूम है इसका मतलब क्या है, यानी कि मानव जीवन सेमल के फूल की ही तरह है। जिस तरह सेमल का फूल रुई बनकर सब जगह उड़ जाता है, मानव जीवन भी इसी प्रकार का क्षण भंगुर का है। इसीलिए इसे इस जीवन के झूठे रंग में रंग कर अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, समझे कि नहीं।

आज का सरप्राइज जिंदगी भर याद रहेगा। हम कभी भी मुंह नहीं फुलाएंगे, जहां कहिएगा चुपचाप चल देंगे, प्रॉमिस करते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कसम से। सब हंसते हुए।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: गुड आफ्टरनून एवरीवन भाई, वक्त हो चुका है 12 यानी आपके अपने शो ज्ञानस्थली लाइव का। भाई ज्ञानस्थली लाइव में हम आए हैं लेके आज बहुत ही अनोखे इमोशन कह सकते हैं, जी हाँ इमोशन, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए और न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बातें करते हैं, लेकिन हम लोग बात एक चीज़ की नहीं करते। क्या आपको पता है? चलिए मैं बता देती हूँ भाई। देखिए कभी भी हम लोग वो बोल देते हैं जो हमारे मुंह में आ रहा होता है, सब बोल, लेकिन जो दिल में आ रहा होता है वो हम कभी बोल ही नहीं पाते। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो कितना, मतलब ये तो सभी जानते हैं, क्या है ऐसा जो हम नहीं जानते? जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते, जो आपसे जुड़ी हुई हैं, आपके अपने मन, आपके इमोशन, आपकी फीलिंग से जुड़ी हुई है, पर शायद आप उसे हमेशा इग्नोर करते रहते हैं। कौन सी चीज़ें हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वेलकम करेंगे हमारी दो सहेली। एक का नाम सुहानी है, एक का नाम संध्या है। हेलो सुहानी एंड संध्या।
1: हेलो दीदी, कैसी हैं आप?
0: मैं तो बहुत ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं भी अच्छी हूँ, बस आपके लिसनर कैसे हैं?
0: अरे ये हमारे लिसनर कैसे हैं वो तो हमारे लिसनर ही बता पाएंगे। तो भाई देखिए, सुहानी जी आपसे पूछ रही हैं कि आप सब कैसे हैं, जल्दी से आइए चैट बॉक्स में और बताइए कि आप सब कैसे हैं। वेल देखिए, आज अभी हम बात कर रहे थे ये शो स्टार्ट करने से पहले कि हमारी ज़िंदगी ना बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सोचते हैं कि करें करें, फिर करते करते करते करते रह जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है और इसको बैलेंस कैसे करें, सबसे बड़ी बात। लेकिन ये जो चीज़ होती है, ये फीलिंग, इसको आज हम पहले डीपली समझेंगे। तो भाई आज का शो कुछ इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन अगर आप दिल से सोचें तो आज सुहानी आप क्या लेकर आई हैं, मतलब क्या बात करेंगे? लेकिन आपसे बात करने से पहले हम संध्या जी के पास चलेंगे। तो संध्या जी आप कैसी हैं?
2: हेलो दीदी, कैसे हैं आप?
0: मैं तो बहुत ठीक हूँ, और अभी मैं ये नोटिस कर रही थी कि भाई हमारी जो संध्या जी हैं, इनके ज़िंदगी में बहुत सारी कन्फ्यूजन है, मतलब इतनी कन्फ्यूजन कि ये बैठे बैठे रोने लग जाती हैं।
2: कुछ दीदी एकदम सही बोली आप।
0: अरे तो ऐसा क्या है जो आप सोचती ही रहती हैं?
2: ये तो नहीं पता, पर सच में ये तो है कि मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ और बातों में रोने लगती हूँ।
0: तो दोस्तों ऐसा सिर्फ इन्हीं के साथ है या आपके भी साथ है? ये चीज़ें जल्दी से आके चैट बॉक्स में बताइए। हमारे सभी लिस्नर को मैं बुला रही हूँ, क्योंकि भाई आज ये दोनों कुछ अनोखा ही लेकर आई हैं। मैंने भी थोड़ा सा सुना, पूरा नहीं, थोड़ा सा सुना, लेकिन देखते हैं कि आज ऐसा क्या है जो ये लोग लेकर आई हो, इतनी एक्साइटेड है आपके साथ शेयर करने के लिए।
1: आज की टॉपिक ये है कि हम लोग सोचते बहुत हैं कि ये करना है ये करना है, पर कह नहीं पाते। मन में इतना उतार चढ़ाव रहता है कि हम उसको बता नहीं पाते किसी से। वो बात आज मैं बताऊंगी।
0: अच्छा, तो ये तो मुझे लग रहा है कि सभी के दिल की बात है जो आप बोले आज। चलिए, प्रधानमंत्री आप ही है, प्रधानमंत्री हमारे हैं जो मन की बात करते हैं। आज आप दिल की बात करिए।
1: बिल्कुल करेंगे। आज का टॉपिक है एक मैसेज जो हम कभी भेज नहीं पाते हैं। ऐसा तो सबके साथ में होता है,
0: एक मैसेज जो हम कभी भेज नहीं पाते।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा कौन सा मैसेज है? I mean, हम लोग तो हर मैसेज भेज लेते हैं, मतलब टाइप करते हैं और सिंपली भेज देते हैं।
1: ऐसा नहीं है, कभी तो ऐसा हुआ होगा कि टाइप किया गया है पर भेजा नहीं गया है।
0: हाँ ये होता है कभी कभी, मतलब
1: होता है
0: ये तो, लेकिन
2: मैंने तो, मेरे साथ में तो ऐसे बहुत होता है। मैं टाइप करके एक पैराग्राफ पूरा बना लेती हूँ पर सेंड नहीं करती।
0: क्यों
2: है ऐसी कुछ बातें जो मतलब मन में तो चला करती हैं पर कभी उस तक पहुंचा नहीं पाती।
1: दिल कहता है बस अभी बोलती हूँ, दिमाग कहता है अरे अरे रुक जा ऐसा नहीं करना है।
0: तो भाई दोस्तों, आज तो ऐसा लग रहा है कि हमारे पुराने जख्मों पर ये नमक खरीदने आई हैं, या फिर हम कहें कि नमक छिड़क के मज़े लेने आई हैं।
1: ऐसा नहीं है, पर सबकी बातें हैं जो इंसान कह नहीं पाता, आज मैं कहूँगी।
0: बिल्कुल कहिए, बताइए क्या है ऐसी चीज़ें।
1: क्या आपने कभी नोटिस किया है
0: क्या
1: कि हम फोन उठाते हैं, चैट ओपन करते हैं, टाइपिंग स्टार्ट कर देते हैं।
0: हाँ हाँ
1: करते हैं ना
0: जी,
1: और उसमें टाइप करते हैं तुम कैसे हो, बहुत याद आ रही है, मुझसे बात कर लो, ये है वो है, ऐसे बहुत सारे मतलब वर्ड्स हैं जो हम लिख देते हैं
0: जी।
1: लेकिन क्या वो भेज पाते हैं?
0: नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हम अपनी फीलिंग्स को दबाने में ही खुश रहते हैं। हम सोचते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में जो हमें बोलना है लेकिन हम बोल नहीं पाते। अब ये हो सकता है हम हमारे फ्रेंड्स को लेकर के हो, पार्टनर को लेकर के हो, पेरेंट्स को लेकर के हो, या हमारी ज़िंदगी में कोई भी रिलेशन हो उसको लेकर के हम काफ़ी सारी चीज़ें सोचते हैं। इवन हम बता दें कि भाई कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो अपने बॉस से बहुत चिड़चिड़े से रहते हैं, उनके दिमाग में हर रात आता है कि आज इसको मैं 10 बात सुना के ही रहूँगा, टाइप भी कर देते हैं लेकिन फिर वो सैलरी सामने आ जाती है फिर उसे वो बैक कर देते हैं।
1: ऐसे ही इंसान पैराग्राफ लिख देता है इतना बड़ा
0: जी
1: कि खुद पढ़ के इमोशनल हो जाए, लेकिन कुछ समय तक स्क्रीन पे देखते रहना, ये लिखा ये है भेज दूंगी, समझ जाएगा। लेकिन भेज पाते हैं?
0: नहीं।
1: क्यों?
0: मुझे लगता है कि हम ह्यूमंस होते ही ऐसे हैं कि अपनी चीज़ों को सही से प्रैक्टिकल खूब बनेंगे, लेकिन जब बात इमोशनल की आएगी, अपनी जो दिल की बात है उस पर आएगी, तो कहीं हम लोग इग्नोर कर देते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं।
1: ये गलत बात है।
0: तो इसका क्या उपाय निकाला जाए, आप बताइए।
1: निकलेगा, मतलब निकालना क्या है बताते हैं। जैसे हम पैराग्राफ लिख देते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है पढ़ते पढ़ते बैक स्पेस दबाते हैं और सारी चैट डिलीट
0: जी।
1: लेकिन फीलिंग्स?
0: फीलिंग्स तो शायद वहीं रह जाती हैं।
1: कभी कभी हमारी ईगो हमको रोक लेती है।
0: ईगो?
1: हाँ।
0: कैसे?
1: मैं भेज दूंगी, वो मुझे समझेगा, ये आ गई, फिर से आ गई। कभी कभी ये डर भी रहता है कि शायद बुरा मान जाए। कभी कभी ये डर रहता है कि अगर उसने इग्नोर कर दिया तो?
0: हाँ, और हम कभी इग्नोर होना भी नहीं चाहते।
1: ये भी डर रहता अगर उसने गलत समझ लिया तो?
0: हाँ।
1: और कभी कभी हम ये सोच देते हैं कि अब शायद बहुत लेट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सच बताऊं तो लाइफ में सबसे हैवी चीज़ आपको लगती है क्या है?
0: भाई सबसे हैवी तो यही है कि सुबह उठ के नाश्ता और लंच बना के लाना।
1: अच्छा जी।
0: हाँ,
1: ये हैवी लगता है आपको?
0: हाँ ऑफ कोर्स, और बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल बैग बहुत भारी लगता है, और मुझे तो भाई पर्सनली घर का काम लगता है कि बहुत ज़्यादा भारी होता है, और जो लोग करते हैं वो बहुत ज़्यादा हिम्मती होते हैं।
1: सबसे हैवी चीज़ वो होती है, वो बातें जो आप अपने अंदर छुपा के रखती हैं।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही। संध्या जी, आपका क्या मानना है इस पे?
2: ये 110% सही बात है।
0: 110%? चलिए ठीक है, लेकिन हमारे दोस्तों यानी हमारे लिसनर्स का क्या मानना है, वो जल्दी से आके चैट बॉक्स में बताएं। भाई आज की जो बातें हैं वो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाली है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हमारे मन की होने वाली, हमारे मन को एक आईना दिखाने वाली है। एक्चुअल में हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, और कैसे इसको ठीक कर पाए। क्योंकि कहते हैं कि जो सप्रेस्ड इमोशन होते हैं, जो हम दबा ले जाते हैं अपने मन में, नहीं कह पाते, एक्चुअल में हमारे जो बॉडी में जो डिजीजेस होते हैं, बड़े बड़े जो हार्ट अटैक आ गया, हार्ट रिलेटेड कोई इशू है, ब्रेन रिलेटेड कोई इशू है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रीजंस होते हैं वो यही होते हैं। या तो आपने अपना ध्यान नहीं रखा है, या तो आप अपने फीलिंग्स को, इमोशन को आप दबा के गए हैं और दुनिया के सामने कुछ और ही दिखा रहे हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है और ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन भी है। तो कैसे आप इन सभी चीज़ों से, आपने अक्सर एक लाइन बहुत सुनी होगी कि अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ तो खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। एक्चुअल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सही हैं। हम कितनी बातें अपनी बोलते हैं, कभी कभी चुप हो जाते हैं, कभी कभी बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन हम बोलते नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं हमारे दिमाग में। आखिर वो रीज़न्स क्या हैं? क्या हमने कभी अपने आप को देखा है? देखिए आईना देखना तो हम डेली देखते हैं, लेकिन हमने अपने दिल को कभी आईना दिखाया है? मुझे नहीं लगता कि आपने कभी किया होगा, और मैंने भी कभी नहीं किया। लेकिन इस बातों पर अगर हम दिल से गौर करें तो हमें ये जानना चाहिए, समझना चाहिए, और हम दुनिया देखने तो आएँ इस धरती पर लेकिन कभी खुद को नहीं देखें। आपका क्या मानना है इस पर, जल्दी से आके चैट बॉक्स में बताइए, जल्दी से हमारे इस साथ में जुड़ जाइए, सफर में जुड़ जाइए। भाई चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे और बात करेंगे आपसे दिल की, यानी कि आज हो रही है हमारे दिल की बात।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंक। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञानस्थली लाइव। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही स्पेशल और साथ ही साथ इंजॉय कर रहे हैं कह सकते हैं लव स्पेशल सॉन्ग्स या फिर मिसिंग या फिर कह सकते हैं कि आज के शो के अकॉर्डिंग सॉन्ग सुन रहे हैं भाई, जो हमारे इमोशंस को और भी ज़्यादा खुरेद देता है। अब देखिए आज की जो बातें हो रही हैं वो आप कैसे समझ पाएंगे, मैं आपको सीधी सी भाषा में और कनेक्ट करके बताती हूँ कि कैसे। देखिए काफ़ी बार आप सब जो चैट बॉक्स यूज़र हैं जिनको मैं देखती हूँ, वो काफ़ी सारी चीज़ें आते हैं चैट बॉक्स में, मुझे दिखता है कि हाँ कौन इंसान कोई कुछ टाइप कर रहा है और अच्छा खासे टाइम तक आप टाइप भी करते हैं, लेकिन फिर आप क्या करते हैं, सेंड नहीं करते, ये सोच के कि हो सकता है हमारी रिक्वेस्ट ना प्ले हो सकता है मैम बुरा ना मान जाए, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, ये सही है कि नहीं सही है। ना जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चलती रहती हैं और आप वो मैसेज सेंड करना भूल जाते हैं या फिर सोचते हैं छोड़ो यार फिर कभी कर देंगे कुछ और, सिर्फ हाय लिख के बहुत पैराग्राफ लिखेंगे लेकिन सिर्फ हाय लिख के हेलो मैम लिख के आप छोड़ देते हैं। ऐसा ज़रूर आपके साथ हुआ होगा और कभी कभी ऐसा मेरे साथ भी होता है, मैं भी आपको रिप्लाई देना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं सोचती हूँ कि कहीं आप बुरा ना मान जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारे आपके बीच में भी है, हमारे आपके दोस्ती के बीच में भी है, रिलेशनशिप्स के बीच में भी है और घर वालों के बीच में भी है। एक्चुअल में ये इन चीज़ों को बहुत डीपली अगर समझें तो क्या होगा, सिर्फ यही कि हम अपने दिल की बात नहीं कह पाते, इग्नोर होने का डर रहता है या फिर और कुछ।
1: हाँ ऐसे मैसेज सिर्फ लव स्टोरी के लिए नहीं होते, कभी कभी हम अपने किसी दोस्त को आई मिस यू नहीं बोल पाते, तो कभी कभी हम पेरेंट्स को थैंक यू नहीं बोल पाते, किसी को सॉरी नहीं बोल पाते, पर हम वेट करते रहते हैं कि सही टाइम आएगा, सही मूड होगा। ऐसे वेट करते करते इतना लेट हो जाता है कि वो सही टाइम नहीं आता है और रिलेशनशिप एकदम से साइलेंट हो जाता है। तो अगर आप ऐसे मैसेज टाइप करते हैं तो उसको छुपा के मत रखिए, भेज दीजिए, क्या पता कि आपके भेजने से सामने वाला वापस आ जाए, घर वाले खुश हो जाए, मम्मी पापा को भी लगे हाँ बच्चे हमें समझ तो रहे हैं। कभी कभी हम घर वालों से भी कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते।
0: हाँ लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें कन्वे करना, सोच कि बता दे सोचते सामने वाला मतलब कुछ और ही ना सोच रहे, तो आपका क्या मानना है इस पर?
1: नहीं बता देना चाहिए क्योंकि बताने से ही तो पता चलेगा ना, नहीं बताएंगे तो फिर वो क्या वही समझेगा कि ये भी वैसे।
0: अच्छा
1: भी
0: ये तो आप बता रही हैं कि हमें बता देना चाहिए, लेकिन क्या कभी ऐसा भी होता है कि हमें नहीं बताना चाहिए?
1: बिल्कुल।
0: कैसे?
1: अगर सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको हर बार डिसअपॉइंटेड कर रहा है, तो फिर बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप उससे बताओगे वो ऐसे तैसे में लेके चला जाएगा, फिर आ गई बकवास करने, घर वाले समझेंगे इसको कोई काम नहीं रहता क्या, दोस्त कहेंगे ये पागल है, ये है, ये वो है, तो कभी कभी नहीं कहना चाहिए कुछ चीज़ें।
0: मतलब कभी कभी आपका चुप रहना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है।
1: कभी कभी ये चुप रहना भी आपके लिए अच्छा होता है।
0: अच्छा ये मैंने बहुत ही बड़े बड़े लोगों से सुना भी है, काफ़ी किताबों में भी पढ़ा है कि जब हम कुछ नहीं बोलते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ नहीं बोल रहे, हमारा कुछ ना बोलना भी बहुत कुछ बोल जाता है।
1: बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं हम ठीक हैं पर ठीक होते नहीं है ना।
0: देखिए मैं आपको बताती हूँ इन चीज़ों को आप भी कभी समझ पाएंगी कि कभी कभी हम देखते हैं कि हम भी ऑनलाइन बैठे हैं और सामने वाले पे भी ऑनलाइन शो हो रहा है, यानी कि वो भी ऑनलाइन हमारे साथ बैठा हुआ है। आप टाइप करते हैं, बहुत देर तक टाइप करते हैं, सोचते हैं कि भेजते हैं,
1: वो भी सोच रहा होगा आएगा,
0: हाँ कि मैसेज आएगा आएगा आएगा लेकिन आप भेजते नहीं हो उन चीज़ों को और सामने वाला पूछता भी नहीं है कि इतने दिन से टाइप कर रहे थे तो भेजे क्यों नहीं, क्या है। अगर आपको बहुत करीबी होगा जो आपको समझता होगा वो ही आपको लिख के देगा कि हाँ भाई इतने टाइम से टाइप कर रहा था तो क्यों नहीं आपने भेजा मेरे को। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके मन में चलता रहता है कि नहीं कुछ आएगा आएगा लेकिन नहीं आता, फिर वो सोचते कि अब मैं पूछूंगा भी नहीं कि क्या आ रहा है।
1: ईगो आ जाता है,
0: ईगो सामने आ जाता है, या फिर हम कहें कि इंसान आपसे बात शायद करना ही नहीं चाहता है तभी उसने पूछा ही नहीं। नहीं तो अगर आप अपने जो करीबी, आपके कहते हैं ना कि हमारे बचपन लंगोटिया यार जो होते हैं जिसे हम कहते हैं अवधि में, जो आपके बचपन के दोस्त होते हैं जो आपको समझते हैं, वो लोग हमेशा आपसे पूछ लेंगे कि नहीं भैया कुछ तो लिख रहे थे, क्या हुआ आप लिखोगे नहीं, क्या बोलना चाहते थे,
1: क्या कह रहे थे, डायरेक्ट फोन आ जाएगा,
0: डायरेक्टली फोन आ जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई समझता ही नहीं है, हम चाहता ही नहीं बात करना। ऐसा नहीं है कि आप बात करने के काबिल नहीं है या आप उस इमोशन को फील नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, बस ये है कि हाँ शायद आप जितने इम्पोर्टेंट है वो आप सामने वाले के लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है.
1: ऐसा आप नहीं, जिसको जितना इम्पोर्टेंट समझते हैं उसके लाइफ में आप उतने
0: नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप बेकार हैं या फिर इतनी आप बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी के लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखते. नहीं, आप इम्पोर्टेंस रखते हैं, अपने अपनों के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं. अब अपनों का मतलब ये नहीं है कि आपके जो ब्लड रिलेशंस है, अपनों का मतलब ये है कि जो आपके सुख दुख में काम आए, जो आपके जो दुख है वो आपका चेहरा देख के जान जाए कि अब इंसान दुखी और आपको खुश करने के पीछे लग जाए. उसका मेन फोकस ये हो जाए कि बस सामने वाले को मेरे को खुश करना है, ना कि वो जिनके पीछे आप रहते हैं जो आपको दुखी करके चले जाते हैं. वो आपके अपने नहीं होते हैं. ये अपना हो सकता है कि खून का ना हो, खून का रिश्ता उनसे ना हो, हो सकता है दोस्ती का रिश्ता, हो सकता है इंसानियत का रिश्ता हो, या कोई भी रिश्ता हो सकता है. हर चीज़ खून के रिश्तों से नहीं होती है. कभी कभी अपने भी धोखा कर देते हैं और कभी कभी दूसरे भी अपनापन करके आपकी ज़िंदगी को सुखद बना देते हैं.
1: बिल्कुल, कोई बात होती है जब अपनों से नहीं कह पाते लेकिन कोई बाहर वाला मिल जाता है जो हमें समझता है, हम उससे बोल देते हैं.
0: जी बिल्कुल. और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स कोई नहीं समझ पा रहा है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, और आप उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि अगर आप अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा दबा देते हैं, बहुत ज़्यादा सप्रेस कर देते हैं, तो वो आपके दिमाग में कई सारे विकार लेके आ जाता है, कई सारी प्रॉब्लम्स लेके आ जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, और कई सारी हार्ट रिलेटेड इशूज़ भी आपके ज़्यादा सोचने की वजह से या अपने इमोशन को दबाने की वजह से होते हैं. अब चीज़ ये है कि भाई, या तो आप इतनी बड़ी बीमारी लेके बैठिए या तो फिर अपने आप दिल की बातों को कह दीजिए. अब दिल की बात कहने के लिए दो तीन चीज़ें हैं. या तो आप लिखने लग जाइए, क्योंकि जो जर्नलिंग होती है, जो आप अपनी बस इमोशन को अपनी डायरी में लिखते ही रहते हैं. आपने नोटिस किया होगा कि पहले के लोग ये काम बहुत करते थे, और अब क्योंकि मिलेनियल्स को छोड़ के कि जो जेंजीज आ गई है ये भी ये चीज़ों को अपना रही है. अब ये हो सकता है कि वो अपने फ़ोन में नोट्स बना लेते हो, फ़ोन में जर्नलिंग कर लेते होंगे, या सिर्फ अपनी बातों को रिकॉर्ड करके सेव करके रख लेते होंगे और कुछ नहीं. इवन मैं भी कभी कभी ये करती हूँ कि जब मुझे कोई चीज़ बोलनी होती है, जस्ट कैमरा ऑन करके छोड़ दिया और उसमें बहुत सारी चीज़ें बोली, अपनी ही कैमरे के सामने रोने लग गई, बस उसे सेव नहीं करती हूँ कि वापस से देखूंगी तो वो इमोशन मैं फील करूंगी. लेकिन जो चीज़ें मैंने लिख रखी है, आज भी कभी कभी मैं अपनी कोई भी रैंडम कॉपी उठाती हूँ, कोई भी रैंडम पन्ना खोलती हूँ, वहाँ पे कुछ ना कुछ डेट डाल के लिख डालती हूँ कि भाई ये मैं फील कर रही हूँ, आज मुझे इतना बुरा लग रहा है, ये है वो है. इवन मेरे को मैं आपको अगर अपनी चीज़ें शेयर करूँ, तो लास्ट ईयर मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी ख़त्म करनी ही बेहतर है, बहुत बेकार है. और मैंने क्या किया, बस एक पन्ना उठाया एक कॉपी का और उसके बीचों बीच मैंने लिख दिया, डेट डाल दी उस दिन की, और उसमें मैंने सारी चीज़ें लिख दी अपनी. और वो पन्ना ही अगर मुझे ऐसा लग रहा है कोई भी पढ़ लेगा तो कोई कहीं मुझे कोई पीटे ना कि भाई आप मरने की बात क्यों कर रहे हो. तो उसको एकदम छुपा के कोने में रख दिया. लेकिन ऐसे ही जल्दी, मतलब अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मैं चीज़ों को सोच रही थी, मैं खुश थी अपनी ज़िंदगी में, और बस मुझे कुछ लिखना था, कुछ नोट्स बनाने थे, इसलिए मैंने दूसरी कॉपी उठाई और मैंने लिखा. मेरे को ये बिल्कुल याद नहीं था कि मैंने इसमें कभी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अचानक जब मैंने वो कॉपी खोली, मेरे सामने वो पन्ना आया, मैंने उसको पढ़ा, मुझे इतना खुशी हुई. ऐसा नहीं था कि मैं वो इमोशन, मतलब यार ये खुद खुश होता है कि देखो हम कभी इतनी गंदे इमोशन से भी जूझ रहे थे और आज का दिन है जब हम ये सोचे थे कि जिंदगी खत्म करनी है, और आज वो दिन है कि आज हमें जिंदगी हम जी रहे हैं, खुश हो रहे हैं. तो समय बीत जाता है, आपके इमोशंस को बस आपको एक्सप्रेस करना है. आप लिख सकते हैं, अपनों से बता सकते हैं. अगर आप दोनों ही नहीं कर पाते, दोनों से आप रिलीफ नहीं हो पाते और आपको सीरियस किसी अच्छे काउंसलर की ज़रूरत है, तो आप एक गवर्नमेंट की एक नंबर होता है जिस पर आप अपने आपको अपनी बातों को बता सकते हैं. वो कौन सा नंबर है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन चलते हैं पहले हमारे गेस्ट के पास कि वो उनके पास और कौन कौन सी बातें हैं. जी तो देखिए, अब मुझे लग रहा है कि हमारे गेस्ट भी सोच में लग गए कि हाँ ऐसा हमारे साथ होता है. और मैं ये आपको पर्सनली चीज़ें रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी बातों को बस आपको शेयर करनी है. कभी कभी आपने देखा होगा कि हम कहीं दूर ट्रैवल कर रहे होते हैं, किसी ट्रेन में होते हैं, किसी बस में होते हैं, तो हमारे जो पास का इंसान होता है, जो हमारे बगल बैठा होता है, या फिर हम किसी को नोटिस करते हैं ना, ऑब्जर्व करते हैं जब, तो वो अजनबी आपसे बहुत ज़्यादा बात करने लग जाएगा और अपनी सारी पर्सनल से पर्सनल डिटेल शेयर कर देगा. अब पर्सनल डिटेल का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बैंक अकाउंट नंबर, अपनी जो है बहुत ही जो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा पर्सनल होती है, जो किसी से शेयर नहीं करनी होती, आप वो शेयर करें. लेकिन जो अपनी लाइफ स्टोरीज़ है, अपने इमोशंस हैं, उसको काफ़ी लोग बयां करने लग जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा वर्क भी करता है. देखिए, काफ़ी लोग अपने इमोशंस को इसलिए नहीं बोल पाते कि वो सोचते हैं कि कहीं सामने वाला कुछ सोचे ना, कुछ बुरा ना सोचे, कुछ गलत ना सोचे, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें डांटे ना, जैसा ही मेरे दिमाग में आया था कि कोई सबको पढ़ के मेरे को पीटने ना लग जाए, ऐसी सारी चीज़ें आपके भी दिमाग में आती होंगी। लेकिन जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो जिन्हें ये पता होता है कि भाई आज इस इंसान के साथ मैं घूम रहा हूँ या ट्रैवल कर रहा हूँ, कल को ये नहीं मिलेगा और शायद मेरी लाइफ टाइम में फिर कभी भी नहीं मिलेगा, कभी हम लोग सेम बस में ट्रैवल नहीं करेंगे, तो हम अपनी सारी चीज़ें बता देंगे क्योंकि पता है कि वो इंसान चाहे जज करेगा या नहीं करेगा, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है
1: और ये बात हम तक नहीं आएगी, मैं बारे सोच क्या रहा है।
0: हाँ। तो अपनी चीज़ों को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, अपनी फीलिंग्स को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। हाँ, हो सकता है कि आप जिसके लिए फ़ील कर रहे हो आप वो ना बोल पाए, लेकिन आप जो फील कर रहे हैं उसको बोलिए, जिसके लिए फ़ील कर रहे हैं कोई मतलब नहीं करता। अगर वो इंसान कदर नहीं कर रहा है तो उससे बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन आप जिसके साथ जो आपको समझ रहे हैं अपने हैं, नहीं कोई इंसान है, आप लिख लीजिए, आप खुद किससे एक वीडियो बना लीजिए, और अगर नहीं है तो भाई कभी कभी देखिए कि हमारे जो पेट्स होते हैं वो भी हमारे बहुत अच्छे साथी होते हैं। इन बातों को और बढ़ाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना है हमारे साथ आपके अपने शो ज्ञानश्री लाइव में, जिसमें आज बात हो रही है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: यही इमोशन, इसी इमोशन की बात हो रही थी कि हम भगवान से, ऊपर वाले से, अपने ईश्वर से ये कहते रहते हैं कि भगवान हमें मिला दो, लेकिन हम क्या कभी खुद कह पाते हैं कि नहीं भाई आई रियली मिस यू, आ जाओ वापस, चाहे वो अपने फ्रेंड से कह रहे हो, पार्टनर से कह रहे हो, या फिर किसी भी इंसान से कह रहे हो, हम नहीं कर पाते। हम यहाँ तक कि हम बहुत सारे हमारा जो मन होता है, हमारे जो एक्शंस होते हैं, वो कभी हमारे बस में रहते ही नहीं। हम गाने लगाएंगे, स्टेटस लगाएंगे, स्टोरीज लगाएंगे, और टारगेट जो होता है हमारा, यानी वो इंसान जिसको दिखाना होता है, हम यही देखते रहते कि अरे उसने देखा कि नहीं देखा, उसने देखा कि नहीं देखा। अगर वो नहीं देख रहा है तो हमें
1: 2400 घंटे स्टेटस पड़ा रहेगा।
0: हाँ, अगर नहीं देखा, हम इंतज़ार करते स्टेटस लगा के कि वो इंसान देखा कि नहीं देखा, और जब नहीं देखता है तो हमें लगता है कि हमारा स्टेटस लगाना बेकार हो गया।
2: और एक चीज़ और नोटिस किया होगा आप लोगों ने,
0: क्या
2: कि स्टेटस मान लिया आपने, उसके लिए लगाया भी है और उसने सीन भी कर लिया है। हाँ? अब आप उसके रिएक्ट का वेट कर रहे हैं कि अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा।
0: हाँ, और कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि ये जो स्टेटस कल्चर है, इसने कहीं ना कहीं एक डिजिटल लड़ाई को फॉर्म कर दिया है, मतलब उसको एक शेप दे दी है। डिजिटल लड़ाई वो होती है जो, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो कभी हमारी मम्मी, जैसे देखिए बहनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। हमारे यहाँ तो अगर बहनें साथ में रहती है तो एकदम बाल नोच के एक दूसरे को पीट देंगी, और इसी तरीके से कई कभी कभी हमारी मम्मी और मौसी के बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारी मम्मी और मौसी साथ नहीं रहती, इसीलिए वो एक दूसरे को पीट नहीं सकती, तो वो लोग स्टेटस लगाने लग जाती है। और अगर स्टेटस उनकी दूसरी बहन नहीं देखा, हमें ब्लॉक कर दिया होगा, अब लोग इतने बड़े हो गए हैं, अब दोस्त, अब बहन भाई का प्यार नहीं रहा, ऐसी सारी चीज़ें मम्मी पापा बोलने लगते। लेकिन बस वही बहन अगर आपको समझ जाए तो यही चीज़ बहुत ज़्यादा प्यार में बदल जाती है, और यही चीज़ होती है कम से कहीं ना कहीं हमारे हर रिश्ते में। हम जब किसी को कोई चीज़ कहना चाहते हैं, कभी कभी ये होता है कि हम ही ज़्यादा सोच के कह देते हैं, कभी कभी ये होता है कि हमें कहना ही नहीं चाहिए, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि यार सामने वाला उस लायक है कि, देखिए हर इंसान आपकी हर चीज़ के काबिल नहीं होता है, हर इंसान आपके इमोशन के काबिल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपके इमोशन वर्थलेस है, आपके इमोशन बहुत ज़्यादा वर्थफुल है, लेकिन आप सामने वाला हो सकता है उसके सुनने के काबिल ना हो, उसको समझने के काबिल ना हो। आपका स्टेटस, स्टैंडर्ड, आपकी बातों का, आपके इमोशन का अलग हो, शायद बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जो आपके पर्सनल हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने इमोशन को उसी इंसान से एक्सप्रेस करें। अभी मैंने आपको बताया ब्रेक पे जाने से पहले कि काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ तरीके और हैं, क्या आप में से कोई बता पाएगा?
2: बिल्कुल
0: बताइए।
2: एकदम एक्यूरेट बता पाती या नहीं, पर जो मेरा एक्सपीरियंस है
0: जी,
2: कभी कभी इस फीलिंग को बैलेंस करने के लिए हम लोग खुद को मतलब अंदर अंदर परेशान करने लगते हैं
0: जी।
2: कभी कभी कोई बातें हैं जो कहना बहुत चाहते हैं, कह नहीं पाते हैं। अपनी फीलिंग को बैलेंस करना और इमोशन को दबाना ये सही बात नहीं होती, बल्कि सीखना ये होता है कि फील भी करना है, खुद को इमोशनली हर्ट होने से भी बचाना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम अब खुद को बहुत परेशान कर रहे हैं, खुद को हर्ट कर रहे हैं, तो सामने वाला इंसान को कोई इफेक्ट पड़े, बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो मेरा मानना ये है कि खुद को सही रखो।
0: क्या और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम अपना सकते हैं?
2: हाँ है, पता नहीं लेकिन सही है कि नहीं, लेकिन मुझे तो मैंने फील किया है कि मेरे लाइफ में तो ऐसा बहुत कुछ सही हुआ है।
0: कैसे?
2: जैसे कुछ इमोशन और एक्शन भी होते हैं जो अलग रखते हैं इन सब चीज़ों से।
0: मतलब इमोशन और एक्शन दो अलग अलग चीज़ें होती
2: हैं। हाँ, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, और जिससे बहुत फ़ायदा भी होता है। कभी कभी जो फील हो रहा होता है, ज़रूरी नहीं वो उसी समय एक्शन भी लिया जाए। कभी किसी की याद बहुत आ रही है, माना कि मुझे आपकी याद बहुत आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुरंत ही आपको मैसेज भेज दूँ।
0: ठीक है, ये तो ये चीज़ें आपने बताई बहुत सही क्या, और कहीं ना कहीं मैंने भी ये चीज़ें फील किया कि हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग आज भी कहते हैं कि बेटा कुछ करने से पहले 10 बार सोचना ज़रूर चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, अपनी बातों को कन्वे करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसी वक्त एक्शन ले लें, क्योंकि हो सकता है कि वो आपकी ओवर थिंकिंग हो, आपकी कभी ज़रूरी नहीं कि सामने वाला ही हर जगह पे गलत होता है, कभी कभी आप भी गलत हो सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देना है। अभी जैसा संध्या जी ने कहा कि आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए एक्शन के लिए, तो जब भी फील करें उसे 10 बार और सोचें कि नहीं, ये चीज़ इतनी ज़रूरी है क्या कन्वे करना। शायद हो सकता है कि सामने वाला सही हो, आप ही ज़्यादा सोच रहे हो, और आपकी ज़्यादा सोचने और ज़्यादा बोलने की वजह से वो सामने वाला हर्ट हो जाए। तो चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सोच समझ के और टाइम लेके ही भेजना चाहिए। तो भाई ये थी आज की शो। आशा करती हूँ कि आपने के ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, समझा होगा, और आइंदा अपनी बातों को कभी भी आप दबाएंगे नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, अपनी बातों को, अपनी इमोशन को कभी भी आपको दबाना नहीं है, बस उसे एक सही तरीके से सामने वाले से कन्वे करना है। नहीं कन्वे कर सकते हैं तो कुछ माध्यम निकालिए, चाहे लिख के, चाहे अपनों से, चाहे दोस्तों से, या किसी के साथ अपने दिल को खोलिए, जिससे कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा, और आपकी जो बात, जो आपके कहते हैं ना सीने पे जो भार है, वो कम हो जाएगा। इसी थॉट के साथ लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे आपसे कल लेके आपका अपना शो ज्ञानस्थी लाइव, जिसमें हम बातें करेंगे बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही प्यारी।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: अरे भाई वाह, आज तो हमारे गांव में कुछ अलग ही माहौल है। सुबह सुबह इतनी भीड़ और ये लाउड स्पीकर से आवाज, सभी लोग ध्यान दें। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर है। अरे ये HPV क्या होता है भाई, और इतनी भीड़ क्यों लगी है आखिर?
2: RJ कांछा, आज बड़ा अच्छा दिन है गांव के लिए भी और हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण है नहीं, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में विस्तार से बताने से पहले एक कहानी बताना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: गांव का नाम बड़की टोला है। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम। सावित्री देवी एक 12 साल की बेटी थी। गुड़िया पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्मीली। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ बन जाए, उसकी जिंदगी उससे बेहतर हो। एक दिन गांव में आशा दीदी आई और उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि ये टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले तो थोड़ा हिचकिचाई। उन्होंने अपने पति रामलाल से बात की।
1: अच्छा।
2: रामलाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उसे क्या जरूरत है टीके की। लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाव हो जाएगा। रामलाल कुछ सोच में पड़ गए
1: जी।
2: उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थी। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि ये टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी को जिंदगी भर की बीमारी से बचा सकता है तो हम क्यों पीछे रहें। अगले ही दिन सावित्री और रामलाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई थीं।
1: अच्छा।
2: शुरुआत में गुड़िया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां भी हिम्मत से टीका लगवा रही हैं, तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन 2 दिन में सब ठीक हो गया। धीरे धीरे गांव में लोग भी प्रेरित हुए। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामलाल पंचायत में भी इस विषय पर बात करने लगे।
1: अच्छा भैया, तो गांव में इस पर क्या प्रभाव पड़ा?
2: बताता हूँ
1: जी।
2: कुछ महीने बाद बड़की टोला में एक बदलाव साफ दिखने लगा। ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थी, लोग अफवाहों के बीच सही जानकारी पर भरोसा करने लगे थे। और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई थी।
1: क्या बात है।
2: सावित्री देवी अक्सर कहती थी, पहले हम सोचते थे कि ये सब शहरों की बात है, लेकिन अब समझ में आया कि हमारी बेटियों का भविष्य हमारे ही हाथ में है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
1: अच्छा भैया, ये HPV नाम तो बड़ा भारी लग रहा है, जरा खुलकर विस्तार से और आसान शब्दों में समझाइए।
2: देखिए आरजे कांचा
1: जी,
2: HPV का मतलब है ह्यूमन पेप्लोमा वायरस। नाम बड़ा लग रहा है पर बात आसान है। ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते रोका ना जाए तो महिलाओं में आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
1: मतलब ये सीधी सीधी जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है।
2: हाँ आरजे आकांक्षा, और सबसे खतरनाक बात क्या है
1: जी?
2: जानते हैं आप?
1: क्या सेहतिया जी, अब तो आप थोड़ा हमको डरा रहे हैं।
2: डरने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। कह रहा हूँ, इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण ही नहीं होता है। ना कोई दर्द, ना बुखार, ना कोई ऐसी परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है।
1: मतलब इंसान को पता ही नहीं चलता है।
2: बिल्कुल आरजे कांचा, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
1: अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो फिर इससे बचने का कोई तरीका है या नहीं?
2: हाँ, यही तो खबर है।
1: ओहो, क्या
2: यही अच्छी खबर है आरजे कांचा
1: जी?
2: जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
1: सच में?
2: जी हाँ।
1: पर कैसे?
2: HPV वैक्सीन से एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा सकता है।
1: जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे गांव के लोग भी अच्छे से समझ सकें।
2: ठीक है, एक उदाहरण से समझिए। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
1: चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर अंदर ना आए।
2: बिल्कुल, ताकि फसल सुरक्षित रहे। और ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आकर नुकसान करने से रोकता है।
1: ओ, मतलब ये बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देती है।
2: हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं है कि बीमारी हो जाने के बाद काम आए, और ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
1: अच्छा भैया, आप ये बताइए, तो फिर ये जो टीका है उसे किसे लगवाना चाहिए? क्या कोई खास उम्र है इसकी?
2: हाँ, इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आमतौर पर 9 से 14 साल की लड़कियों को ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
1: और अगर कोई इससे बड़ी उम्र की हो
2: तो भी चिंता की बात नहीं है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में भी ये टीका लगवाया जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी लग जाए उतना बेहतर है।
1: अच्छा सेहतिया जी, एक बात मेरे मन में आ रही है, ये तो लड़कियों का टीका हो गया, तो इसमें पुरुषों की भी कोई भूमिका है क्या?
2: यही तो सबसे अहम बात है। महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती है, इसमें पूरे परिवार की, खासकर पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
1: जरा विस्तार से बताइए।
2: देखिए आरजे कांचा
1: जी,
2: एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उसे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधा और सहयोग दे।
1: सही कहा आपने।
2: अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा या ध्यान नहीं देगा तो आधी लड़ाई वहीं हार जाएंगे। इसलिए पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: मतलब ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
2: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गांव मजबूत बनता है।
1: लेकिन सेहतिया जी, एक बात है कि गांव में तो तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। कोई कहता है कि ये टीका लगवाने से लड़कियों में कमजोरी आ जाती है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आगे चलकर माँ बनने में दिक्कत होती है।
2: देखिए आरजे कांचा
1: जी,
2: यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें हैं
1: जी
2: आपने सुनी है, न ये सच नहीं है बल्कि अफवाहें हैं।
1: मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है?
2: नहीं, मैं आपको एक एक करके साफ साफ कर देता हूँ।
1: जी।
2: पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगवाने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई ये है कि टीका लगने के बाद हल्का सा बुखार या हाथ में दर्द हो सकता है, जो एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है।
1: अच्छा, तो जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है, उसका क्या?
2: वो भी पूरी तरह गलत है। इस वैक्सीन का माँ बनने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक वायरस से बचाने के लिए होता है और कुछ भी नहीं है।
1: और एक बात, जो लोग अक्सर कहते हैं भैया कि अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की क्या जरूरत है?
2: देखिए, यही तो सबसे बड़ी गलत फहमी है।
1: अच्छा,
2: ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं, वैसे ही पहले से सुरक्षा देता है। जरा सोचिए आरजे कांचा
1: जी,
2: अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है तो क्या इंतजार करना चाहिए?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सेहतिया जी, एक बात बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
2: हाँ, धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हट जाते हैं। यही वजह है कि आज भी जैसे कैंप बहुत जरूरी है, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुँचे। जहाँ जानकारी नहीं पहुँचता है वहाँ ऐसे ही कुछ रानी जैसा केस हो जाता है। उस इलाके के पास एक और गांव था, छोटा पुरवा। यहाँ रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की ही उम्र की थी, हसमुख, चंचल और पढ़ाई में अच्छी। जब गांव में HPV का टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहाँ भी आई और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन अपनी बेटी को टीका लगवा लेना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था। उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाई, इससे लड़की कमजोर हो जाएगी, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज दब गई। रानी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मा मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती? कमला देवी के पास जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालात बिगड़ने लगी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बताया उसने पूरे परिवार को हिला दिया। ये सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब ये काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैर के तले जमीन खिसक गई। उन्हें वही दिन याद आया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, अगर उस दिन हमने टीका लगवा दिया होता तो शायद आज का ये दिन नहीं देखना पड़ता। इलाज शुरू हुआ लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर बढ़ता, खर्च, परिवार की चिंता और दर्द। रानी की बीमारी ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झकझोर दिया। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती है, अफवाहों पर मत जाओ, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन आवाज

0: ये कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे हमें इस बड़ी सी परेशानी से बचा सकता है।
1: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है।
0: छोटी सी तैयारी बड़ी बीमारी से बचाओ, बेटी का टीका, परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाओ। तो चलिए, जाने से पहले लेंगे सेहत की शपथ।
2: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
3: प्राथमिकता देंगे,
2: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
3: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
2: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
3: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
2: विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।

0: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
1: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
1: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
0: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
2: फाइलेरिया को हराएं, स्वस्थ।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
1: और जेंट्स के लिए
2: स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: सुपरहिट गाने इस चैनल पर ही है सुनहरे गाने और कुछ यादें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
5: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें, तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
4: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं, तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
5: अधिक व्यायाम न करें, तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
4: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
5: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
4: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
7: गोंडा शहर की धड़कन।
8: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
9: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आज समता और साथ में है आज अंशिका। क्या हाल है भाई आप सभी का? स्वागत है आपका आपके अपने शो जिसका नाम है
10: सुन सहेली
9: विथ आरजे समता एंड आरजे अंशिका। भाई क्या हाल है? हम तो कल नहीं आए थे क्योंकि कल था हमारा वीक ऑफ यानी संडे। तो संडे की छुट्टी के बाद, एक प्रॉपर छुट्टी के बाद, हम फिर से अपने काम में आ गए हैं। यानी कि थोड़ी बहुत रेस्ट करने के बाद में, थोड़ा बहुत अपने आप को कूल करने के बाद में, हम आज फिर से अपने काम पे लौट आए हैं। यानी कि फिर से हम एक हफ्ता फुल एनर्जी के साथ, यानी कि जिसको कहते हैं ना कि हम अपने दिमाग में एनर्जी, बॉडी में एनर्जी और बहुत सारा उत्साह भर करके
11: एनर्जी बूस्टर
9: ले करके आ चुके हैं, जिसके लिए हम लोगों ने पानी भी पिया, जिसके लिए हम लोगों ने तरबूज भी खाया, उसके लिए फिर बहुत सारा आराम भी किया। तो मतलब एक हफ्ता कैसे हम लोगों का फिर अच्छे से बीते। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपके अपने पसंदीदा शो को सुन सहेली में। हम दोनों आ गए हैं, लेकिन इस दोपहर के लिए भी आज कुछ विशेष जानकारी देनी है, क्योंकि आज से कहा जा रहा है कि 25 तारीख से 2 तारीख तक लग रहा है नौ तपा। यानी कि ये 9 दिन जो हैं, ये बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी को लेकर के आने वाले हैं, जिसके प्रिकॉशन में ये भी बताया जा रहा है कि बहुत ज़रूरी हो तभी आप अपने घर से बाहर निकलें, अन्यथा आप अपने घर से बाहर ना निकलें। एक इम्पॉर्टेंट बात और, कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं कि अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं विशेष काम के लिए, तो आपने अपने फेस को कवर करके रखना है, ग्लव्स हाथ में लगा लेना है, और महिलाएं खास करके अपने फेस को कवर कर लें। अगर जो कवर नहीं कर पाती हैं तो वो छाता ले लें। उसके बावजूद, मतलब कहने का सेंस ये है कि अपने सर को ढक करके घर से बाहर निकलें, क्योंकि इसमें जो अल्ट्रा यूवी किरणें हैं, ये जो हैं, ये हमारे पृथ्वी के थोड़े और करीब आ जाती हैं, जिसका असर हमारे सीधे ब्रेन पे पड़ता है, बुद्धि पे पड़ता है, यानी सर पे पड़ता है, जिसका कारण हीट स्ट्रोक भी हो सकता है और लू लग सकती है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ज़्यादा 9 दिन हमें प्रिकॉशन में रहना है कि अपने आप को कैसे हम हाइड्रेट कर रहे हैं। जैसा कि अगर प्यास नहीं भी लग रही है तो भी पानी पीने की आप कोशिश करें।
2: बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि जैसे कुछ लोगों के लिए कहा जाता है, मतलब सबके लिए नहीं मैम, कुछ लोगों के लिए कहा जाता है कि दिमाग बहुत गर्म है, तो वैसे ही दिमाग बहुत गर्म रहता है। और आपने अभी सुना कि गर्मियाँ भी पड़ने वाली हैं, तो गर्म दिमाग को और ज़्यादा गर्म ना हो जाए इसलिए कुछ प्रिकॉशंस। जैसे
9: यहाँ सेंस दिमाग गर्म होने का कुछ और है, यानी लड़ाई झगड़े वाला है, पर हम यहाँ उस दिमाग गर्म की बात नहीं कर रहे हैं।
2: हाँ मैं समझ गई थी, मैंने तो जस्ट कहा कि जैसे होता है ना कुछ लोगों के साथ, तो वैसा नहीं करिए। मतलब अपने दिमाग को गर्म है तो भी ठंडा रखें और ठंडा है तो और कूल रखें।
9: आपका दिमाग गर्म धूप को लेकर के ना होना चाहिए। ये अंशिका की बहुत ही खराब आदत है कि बात को कहां से कहां लेके चली जाती हैं। मतलब यहां धूप की बात हो रही है और इन्होंने वो लड़ाई झगड़ा और गुस्से वाले दिमाग की गर्म की होने की बात कर रही
2: है। मैंने तो जस्ट एक फनी वे में कहा।
9: हाँ फनी वे में कहा, लेकिन सेंस क्या था? मतलब विदाउट सेंस था कि यहाँ पर बात हो रही है हीट स्ट्रोक की और आपने बात कर ली कि किसी से लड़ाई हो रही है। दिमाग गर्म हमेशा ही लोगों का रहता है, इसीलिए उसको और ठंडा कूल करें। तो बर्फ का टुकड़ा बांध के चलो सर पे।
2: बर्फ का टुकड़ा नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा।
9: हाँ बर्फ का टुकड़ा बांध के चला करो, ठीक है? तो भाई ये बर्फ का टुकड़ा बांध के नहीं चलना है, वो भी धूप में, ये तो बिल्कुल और खतरनाक हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने अपने साथ पानी की एक बोतल, पर्याप्त पानी की बोतल अपने साथ में रखनी है। और जब आप धूप में निकल रहे हैं तो चिल्ड पानी बिल्कुल ना पिए, नॉर्मल पानी लेकर के चले साथ में। और जो लोग पैदल यात्रा करते हैं, मतलब अगर बहुत ज्यादा जैसे सब्जी लेने कोई जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है, तो उनके लिए खास हिदायत है कि अगर पानी की बोतल आप साथ में रख रहे हैं तो महिलाएं खास करके, वो पानी की बोतल बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल पानी होना चाहिए। क्योंकि ये 9 दिन अगर आपने संभाल लिए, क्योंकि इसमें हमारे पेट की गर्मी यानी जो पित्त वाला सेक्शन होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है गर्मी के कारण से। इसीलिए अभी आप लोगों को सबको यही लग रहा होगा कि एक रोटी भी खा रहे हैं तो पेट भरा भरा लग रहा है। क्या
2: जो आपने बोला उस पर मैंने कहा ऐसा फील हो रहा है।
9: मतलब एक रोटी खा रही हो कि चार रोटी खा रही हो?
2: नहीं मैं चार नहीं खा रही हूँ फिलहाल, तो एक भी खाना मुश्किल है, मतलब इतनी गर्मी हो रही है।
9: एक रोटी खाने के बाद पेट भरा भरा लग रहा
2: है। हाँ जैसे खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसी वाली सिचुएशन।
9: और अगर पानी पी रहे हैं तो पूरा पेट भर जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है।
2: यस मैम।
9: की भूख लग रही है प्रॉपर?
2: नहीं भूख तो लग रही है, मतलब ऐसे एहसास होता है कि हाँ भूख लगी है, बट जैसे खाना सामने होता है तो वो अंदर से मन नहीं होता है कि खाना खाए,
9: जा नहीं रहा है अंदर। हाँ। से जैसे मेरे साथ तो कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर रोटी भी अगर टुकड़े टुकड़े करके मुंह में डाल रहे ना, तो मुझे लग रहा है कि वो पानी का गिलास रखा रहा है कि वो पानी के साथ में निगल जाओ अंदर, ऐसे वाली फीलिंग आ रही है। और पानी जैसे पेट भरा हुआ है लेकिन गला सूख रहा है और मुंह में जैसे लग रहा है कि हाँ पानी की नीड है। तो भाई पानी प्रॉपर पिए, अगर आपको थोड़ा थोड़ा पानी पिए, मतलब पानी प्रॉपर इस समय आप लोगों को इन गर्मियों में आपको पानी तो पीना ही है। भले आपने खाना कम खाना है लेकिन पानी के साथ साथ और भी पेयजल, जैसे आप ले सकते हैं नीम का आप इसमें ले सकते हैं बेल का शरबत, और साथ ही साथ में आप इसमें ले सकते हैं रुआबजा, साथ ही साथ इसमें ले सकते हैं आप लस्सी और मट्ठा। ये सारी चीज़ें आपने अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेना है, जिससे आपका पेट रहेगा शांत, मतलब उसे गर्मी नहीं लगेगी तो आपको भूख भी लगेगी। तो ये थे कुछ गर्मी के लिए प्रिकॉशंस। आइए धूप के साथ में इस प्यारी सी धूप को हम फिर से प्यारी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब किसी को अच्छा अच्छा बोलो ना तो वो अच्छा होने लगता है, ठीक है? और अगर किसी को खराब खराब बोलो तो वो और खराब होने लगता है, तो इससे अच्छा है कि हम अच्छा अच्छा बोले। तो इस प्यारी सी दोपहर में उनका आह्वान करते हुए एक साथ एक ही फ्रेम में क्या बोलेंगे,
2: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स। और बिल्कुल भाई गर्मी जो है उसने तो ये दिखा दिया है, मतलब कि क्या कर सकते हैं हम, सिर्फ प्रिकॉशंस कर सकते हैं और सेफ रह सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जो भी अभी प्रिकॉशंस आपको बताए गए हैं उस पर आपको ध्यान देना है, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि गर्मियां बहुत हैं और इन प्रिकॉशंस को करना बहुत ज़रूरी है। और जो आने वाले जो दिन हैं उनमें हमें खुद को संभालना है, खुद को संभालेंगे तभी हम अच्छे से अपनी डेली लाइफ जो हमारी रूटीन है उसको हम चला पाएंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारा बहुत ही बेहतरीन सा दिन है, यानी कि हमारा लजीज वाला मंडे।
9: जी बिल्कुल, लजीज वाला मंडे है और लजीज मंडे के दिन हम लेकर के आते हैं बेहतरीन सी रेसिपीज का खजाना, तो जिसमें मास्टर शेफ की रेसिपीज होती हैं, कुछ हमारी तरफ से भी होती हैं। तो अभी हम लोगों ने धूप को लेकर के और गर्मी को लेकर के जो आज के दिन शुरुआत को लेकर के बहुत कुछ बता दिया है, तो हम लेंगे यहाँ पर एक छोटू सा म्यूजिकल ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे अपने प्रोग्राम की जो हमारी फर्स्ट औपचारिकता है, एक प्यारी सी पोयम और रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ ब्रेक लेना चाहिए।
2: बिल्कुल, तो चलिए लिसनर्स चलते हैं, बस हम यूं गए यूं आए इस प्यारे से सॉन्ग के बाद, सुनिए और इंजॉय करिए।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88404095 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका बेहद ही पसंदीदा वाला शो सुन सहेली, जो कि आज आपकी सहेलियां हाजिर हैं। और फटाफट से अभी हम आपको बताएंगे एक बहुत ही प्यारी सी, एक बहुत ही अच्छी सी पोयम। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी। ओके, तो चलिए अब जानते हैं कि आज मैम आपको पोयम बताने वाली हैं और उनके खजाने में आज हमारे लिए क्या है, मतलब क्या नया निकल करके अनमोल आने वाला है, ये जानते हैं सीधा मैम से।
3: तुम्हें कितने साल हो गए मेरे साथ काम करते हुए?
2: 2.5 साल के आसपास हो गए मुझे।
3: अच्छा, ओके ओके, 2.5 साल हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए तो शुरू करते हैं नारी का अस्तित्व, क्योंकि आज है खाना खजाना। तो खाना खजाने में नारी के अस्तित्व का बहुत बड़ा काम है। अभी बात हो रही थी मेरी मम्मी से खाना बनाने को लेकर के, कि आज सुबह ही मेरी उनसे थोड़ी सी कहते हैं ना कि माँ बेटी की वो चलती हाँ, रहती है, तो तू मैं
2: प्यार वाली।
3: बात क्या था, बात ये थी कि आज हम लोगों ने बनाए थे, मम्मी ने बनाए थे कुंदरू।
2: ओके,
3: कुंदरू की सब्जी। अब भैया को क्या कहते हैं नाश्ता गया और मैं गई थी मंदिर, तो मैं वहाँ से लौट रही थी, तो भैया ने हमसे पूछा कि सुनो आज सब्जी किसने बनाई थी सुबह वाली। तो मुझे लगा भाई अभी तारीफ करेगा
2: हाँ।
3: तो मैंने भी कह दिया चलते चलते कि मैंने बनाई थी। क्यों, क्या हो गया? कह रहा है इतना नमक और इतना तेल। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं बनाई थी, मम्मी ने बनाई थी। तो बोला कि यार मम्मी ने बनाई थी। हमने तो कह रहा है कि मम्मी की हाथ से तो कभी ऐसा नहीं होता है। हमने कहा नहीं, मम्मी ने बनाई थी। मैंने कहा क्या हो गया, खराब हो गई? बोले बहुत नमक था। फिर मैं गई तो मैंने कहा कि आज नमक क्या दो हाथ से डाले हैं आपने? बस मम्मी शुरू हो गई।
2: हाँ।
3: तो मैंने कहा कभी हाथ है, कभी हो जाता,
2: कभी हो जाता है।
3: जबकि वो बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि बड़ों के हाथों में क्या होता है कि स्वाद होता है, तो बहुत अच्छे से बनाती हैं। और कुंदरू मेरी फेवरेट सब्जी है, बहुत मेरी मतलब मुझे बहुत पसंद है कुंदरू। कुंदरू मुझे किसी भी रूप में मिल जाए, मतलब वो
2: मतलब रसेदार
3: हाँ, आलू के साथ रसेदार जैसे भी मिल जाए, मैं मुझे बहुत पसंद है, मैं खाती हूँ। तो हुआ ये कि फिर जब मैं छोटी थी तो हम लोग ने कुंदरू बचपन से ही खाए हुए हैं, तो मेरी बुआ मुझे और हम सारे बच्चों को चिढ़ाती थी, कहती थी कि जो कुंदरू ज्यादा खाते हैं उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। ऐसा सुना है?
2: नहीं, मैंने नहीं सुना है।
3: तो मेरी कौन सी बुद्धि भ्रष्ट है?
2: नहीं, आपकी तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होता है।
3: नहीं, मतलब ऐसा वो कहती थी कि कुंदरू ज्यादा, भाई लिसनर्स आप बताएं कि क्या कुंदरू खाने से मंद बुद्धि होता है इंसान? अगर मेरे जैसा मंद बुद्धि कोई होगा
2: नहीं, तो मतलब फिर समझदार कैसे होगा?
3: नहीं, अगर मेरे, अगर मुझे लग रहा है कि कुंदरू खाने से अगर मतलब मंद बुद्धि होती है, तो मुझे लग रहा है कि तब तो बहुत ज्यादा खाना चाहिए।
2: हाँ, ऐसा करते हैं लिसनर्स।
3: अंशिका को, अंशिका ने नहीं खाए इसलिए मंद बुद्धि।
2: हाँ, नहीं, मैं तो नहीं खाती हूँ।
3: देखा, मैं अब आप देख लीजिए, कोई कह रहा है कि कुंदरू खाने से मंद बुद्धि होती है, तो मैंने तो बहुत खाए हैं और अंशिका ने नहीं खाए हैं कुंदरू।
2: हाँ, नहीं, मैं तो नहीं खाती हूँ, जो कि रियलिटी है, मुझे मतलब नहीं अच्छी लगती।
3: तो यहाँ मंद बुद्धि कौन है?
2: लिसनर्स को फैसला करने देते हैं।
3: नहीं, मंद बुद्धि कौन है यहाँ पर? लिसनर्स नहीं करेंगे, मंद बुद्धि कौन है? आपको, आपको हर रोज डांटता कौन है मंद बुद्धि के लिए? मैं डांटती हूँ
2: हाँ।
3: आपको डांटती हूँ ना
2: हाँ।
3: तो ये एक्सेप्ट करो कि यस आई एम अ मंद बुद्धि।
2: मतलब आप मुझे एक्सेप्ट करवा के मानेंगे? ये एक्सेप्ट, देखिए लिसनर्स, ये एक्सेप्ट करो नहीं होता है
3: हाँ।
2: ये जबरदस्ती एक्सेप्ट करवाना होता है।
3: जबरदस्ती
2: क्या तुम करवाएंगे?
3: जबरदस्ती तुम करो या ना करो, तुम मंद बुद्धि हो, क्योंकि तुमने कुंदरू नहीं खाए हैं।
2: अच्छा, मतलब अगर कुंदरू नहीं खाए हैं तो मंद बुद्धि है?
3: मंद बुद्धि है।
2: अच्छा,
3: ठीक है,
2: इसका मतलब है कुंदरू खाना शुरू कर दें।
3: कुंदरू खाना शुरू कर दीजिए।
2: ओके,
3: तो आज से खाओगी तो आज से 30 साल के बाद तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी। जब तक,
2: तब तक मैं मंद बुद्धि नहीं रहूंगी।
3: तब तक,
2: और तब तक पता नहीं मैं बुद्धि वो यूज करने लायक रहूं भी या ना रहूं, या वो कंडीशन आ जाए, वो वाली मतलब झाड़ी लेके चलने वाली, तो पोता पोती होंगे।
3: 30 साल में नहीं होगी।
2: अरे अरे मैम 30 साल से थोड़ा 10-5 साल
3: पोता पोती कुछ बोल रही थी तुम।
2: नहीं मैं ये कह रही थी कि मतलब ऐसे ही ना हो कि बुद्धि बढ़ते बढ़ते काफी आगे तक।
3: नहीं है इनकी अभी वो पोता पोती के ख्वाब पहले से देख रही। देखो नागेश्वर
2: देखेंगे तभी तो।
3: नागेश्वर देखो हंस रहे हैं। नागेश्वर मैंने सही बोला है कि नहीं बोला है मंद बुद्धि वाला? आप मुझे इसका फैसला करके बताएं।
2: नहीं मैं ये कह रही थी कि ख्वाब देखते हैं तो ही बुरे होते हैं, देखेंगे तभी तो बुरे।
3: इनका ख्वाब है, इनकी दादी बनना इनका ख्वाब है भगवान। चलो तो आते हैं नारी के अस्तित्व की। हाँ, कि
2: कुंदरू से हट
3: कुंदरू से हटके। और लेकिन सच्चाई है कि जो कुंदरू खाता है उसकी मंदबुद्धि होती है। नहीं होती है
2: ऐसा नहीं। कभी कभी जैसे होता है ना कि बड़े जब कुछ बताते हैं तो हम उसको सुन लेते हैं, फिर मान लेते हैं, और फिर बाद में घर के बच्चे डिस्कस करते हैं, अरे ये ऐसे नहीं ऐसे होता, ये वैसे नहीं वैसे होता। तो मुझे लगता है कि मतलब होता है या नहीं होता है, लिसनर्स आप फैसला करिए। आज आपकी अदालत में नहीं, आपकी अदालत में नहीं, सुन सहेली की अदालत में आज जो विषय है वो है कुंदरू खाने से क्या होता है, मनबुद्धि होती है कि नहीं होती है, है ना, ये डिसाइड करना है।
3: चलिए, नारी का अस्तित्व घर की चौखट से आसमान तक हर मोड़ पर उसने संघर्ष किया। दर्द छुपाकर अपनी हंसी में उसने हर रिश्ते को प्रेम दिया। कभी बेटी कभी बहन बनती है, कभी माँ बनकर ममता बरसाती है। खुद की खुशियों को भूलकर वो औरों के सपने सजाती है। उसकी बाहों में है प्रेम का सागर, आंखों में है हौसला नया। मुश्किल राहों पर चलकर भी उसने कभी अपना धैर्य न खोया। वो कमजोर नहीं, वह शक्ति है। संसार को जो जीवन देती है, संसार को जो जीवन देती है, अपने त्याग और समर्पण से हर घर को स्वर्ग बनाती है, हर घर को स्वर्ग बनाती है।
2: वाह, बहुत ही प्यारी सी पोएट्री मैम लेकर के आई है। मतलब बहुत ही अच्छी, एक एक वर्ड्स को अगर आप सुनेंगे ध्यान से, मतलब मैं तो ध्यान से सुन रही थी, और कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि एक मतलब जो फीमेल होती है घर की, वही अपने घर को स्वर्ग बनाती है, और कई बार वही मतलब नर्क भी बना सकती है। बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम
3: नर्क कैसे बनते हैं, वो भी मैंने देखा है।
2: हाँ,
3: यू नो,
2: यस यस आई नो। तो कहने का सेंस सिर्फ इतना था कि मतलब जैसे मैम ने बताया, तो मैम बहुत ही अच्छी पोइट्री थी, और जैसे कि आपने उसको पढ़ा इतने अच्छे से, उसको ब्रीफ किया, तो कहीं ना कहीं जो ठहराव था, जो इमोशंस थे, वो समझ में आ रहे थे कि किस तरीके से एक जो मतलब घर की फीमेल होती है, पूरी घर की एक जिम्मेदारी, सबके सुख चैन का ध्यान रखना, सबको खुशी देना, कहीं ना कहीं एक पूरा उसी की मतलब कंधों पे वो जिम्मेदारी होती है, और वो एक बच्ची भी निभाती है जब वो पैदा होती है, फिर धीरे धीरे वो बड़ी होती है, तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत प्यार से वो सारी रिश्तों को लेकर के चलती है, उन्हें एक्सेप्ट करती है, उन्हें निभाती है।
3: बिल्कुल।
2: तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। लिसनर्स आप बताएं कि आपको कैसी लगी है ये पोएट्री, और मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि मैम को इतनी अच्छी अच्छी मतलब इतनी प्यारी प्यारी जो पोएट्रीज हैं, जो लाइन्स हैं, वो मिल कहाँ से जाती हैं। ये तो राज है,
3: ये मिलती नहीं है। हम रात को सोच के सोते हैं, और वैसे भी हम कुंदरू खाते हैं।
2: अच्छा, तो मतलब ये कुंदरू का असर,
3: ये कुंदरू का असर है।
2: तो अब तो लगता है कुंदरू 2-4-10 किलो लेने ही पड़ेंगे।
3: बिल्कुल नहीं, 10 किलो ना लो, तुम 2 किलो भी ले लोगी तो 4-5 दिन चल जाएगा आराम से।
2: तो आप नहीं तो ज्यादा क्वांटिटी में खाएंगे ना,
3: तीनों टाइम थोड़े खाना है आपको, एक टाइम दिन में खाना है।
2: अच्छा अच्छा, ऐसा भी है। तो यानी कि मतलब कुंदरू खाने चाहिए,
3: खाने चाहिए।
2: जो हमने अभी कहा था ना कि सुन सहेली की अदालत में जो है मुकदमा है, तो मुकदमे का फैसला ये निकल कर आता है कि कुंदरू खाने चाहिए,
3: खाने चाहिए। और नागेश्वर जी लिख रहे हैं कि क्या आज बेटी दिवस है क्या?
2: नहीं,
3: पता नहीं क्यों लग रहा है इनको।
2: वैसे बेटियों के लिए कोई स्पेशल डे नहीं होता है, मतलब ये मेरा मानना है, मैं ऐसा मानती हूँ।
3: भाई ऐसा है, बेटियाँ जिस घर में होती है ना, उनके लिए हर दिन एक नया दिन होता है।
2: बिल्कुल
3: ठीक है, तो बेटियों के लिए कोई भी दिन नहीं। अच्छा, आप हमेशा से होता है, कल ब्रदर डे था, ठीक है।
2: हाँ।
3: और एक मदर डे होता है, फादर डे होता है, हस्बैंड डे होता है, डॉटर डे भी होता है, पर मुझे लगता है कि डॉटर डे जो होता है ना, वो एवरी डे होता है, क्योंकि अगर हर घर में अगर एक बेटी है ना, तो वो घर स्वर्ग से भी ज्यादा मतलब सुंदर होता है। और कहा जाता है ना कि घर में एक छोटी सी बच्ची और एक बहन एक बेटी का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने मैम, और बिल्कुल सही बात है कि बेटियां बहुत जरूरी होती है। कहते हैं ना, बहन नहीं होगी तो भाई की कलाई पर राखी कौन बांधेगा, बेटी नहीं होगी तो पिता को एक जो सुख होता है वो कौन देगा, और मतलब बहुत सारे रिश्ते होते हैं, पत्नी नहीं है तो पति का ख्याल कौन रखेगा। कहने का सेंस इतना निकल करके आता है कि मतलब एक बहुत जरूरी स्तंभ होता है कहीं ना कहीं फीमेल्स फैमिली में। तो बहुत ही प्यारी सी पोइट्री के बाद अब उस गलियों से होते हुए हम चलेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट वाला एक सेगमेंट होता है, जो कि होता है रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी कि आज के दिन का कोई सच।
3: ओके,
2: आज के दिन का सच क्या है, क्या निकला है हमारे रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में, तो चलिए आपको बताते हैं। तो आज का हमारा जो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ है मैम, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फीमेल्स की ही एक लाइफ को बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं ब्रीफ करता है कि कोई आपकी लड़ाई आकर नहीं लड़ेगा, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी।
3: बिल्कुल,
2: ये हमारा आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ है। इसको मैं ये बताना चाहूँगी बस कि कोई अगर आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा, मतलब ये है कि आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, मतलब बुरे से बुरे सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं मैम, अच्छे से अच्छे सिचुएशन में आप हो, तो वो आपको खुद करना है। अगर अच्छी सिचुएशन होती है तो हम कितने खुश होते हैं, कितने प्यार से उसे डील करते हैं, उसी तरीके से अगर आपकी बैड सिचुएशन है तो वो भी आपको खुद डील करनी है, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। जैसे एक बात हमेशा कही जाती है मैम, स्पेशली महिलाओं के लिए, कि अरे अगर परेशान हो तो उनकी हेल्प ले लो ना, अरे कोई दिक्कत है तो पापा की हेल्प ले लो या इनकी हेल्प ले लो, तुम उनसे बात क्यों नहीं करती अगर तुम बहुत परेशान हो तो? तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं फीमेल्स में भी थोड़ा बहुत होता है कि अरे लाओ ये दिक्कत है तो इनसे शेयर कर ले या इनसे बातें कर ले या ये हो सकता है मुझे सही एडवाइस दे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप खुद सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमसे बेहतर ना खुद को हमसे बेहतर खुद को कौन समझता है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई समझ सकता है मैम। और अगर आप खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो वो एक हिम्मत आपके अंदर आएगी, और मैंने किसी को देखा भी है अपनी लड़ाई खुद लड़ते हुए, और वो भी बहुत हिम्मत के साथ, और वो हिम्मत के साथ आज भी मतलब लड़ नहीं रही है, वो वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगी अभी फिलहाल की सिचुएशन के लिए, उन्होंने वो लड़ाई लड़ ली है और मुझे लगता है आधी लड़ाई जीत भी ली या 70% जीत ली है मैम।
3: कौन है वो खुश किस्मत
2: है कोई? आज उसने ग्रीन दुपट्टा पहना हुआ है।
3: अच्छा, ओह माय गॉड, हाँ 75% एग्जैक्टली, यस कि मैंने 75%, पर ये तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने 75% अपनी लड़ाई खुद लड़ ली है और जीत भी ली है मैंने?
2: अब हो सकता है कि किसी को लगता है कि पास बैठते हैं उठते हैं साथ में रहते हैं तो नहीं जानते हैं, बट मुझे लगता है कि मैं इतना तो जानती हूँ क्योंकि मैंने वो देखा है, मैंने वो फेस किया हुआ है। तो कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि आपने जो भी लड़ाई लड़ी है या जो भी सिचुएशन आपने अपनी लाइफ में फेस की होगी, वो हो सकता है बहुत क्रिटिकल रही हो, मतलब एक टाइम हमें लगता है ना कि जब पीक पे चीज़ें चली गई अब हमसे नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं छोड़ दो हटाओ रहने दो, लेकिन किसी चीज़ को छोड़ना भी लिसनर्स उतना आसान नहीं होता है। मतलब मैं मैम का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगी, उनसे भी पूछना चाहूँगी कि मैम बताइए कितना मुश्किल होता है मतलब किसी भी सिचुएशन को फेस करना, एनी, अगर वो हैप्पी है या फैमिली है या कुछ भी है, एनीथिंग।
3: पहली बात तो जो लोग ज्ञान देते हैं ना कि मतलब लेट डाउन करो और गिव अप कर दो और मतलब आप अपने आप को आगे बढ़ा लो सब कुछ कर लो, बट ये सिर्फ किताबी बातें होती हैं, ये सिर्फ रील्स में ही आप देख पाओगे तो अच्छा लगेगा, बट रियल लाइफ में जो होता है ना, रील और रियल लाइफ में दोनों में बहुत अंतर होता है।
2: बिल्कुल,
3: तो जो रियल होता है उसमें आगे मूव कर पाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, बट अगर आप अपने आप को शीशे में जब भी देखते हैं सुबह, तो आप अपने आप को सिर्फ एक ही एक मैसेज देना चाहते हैं, हमेशा से देना चाहिए कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, संभलो और आगे बढ़ो। तो ये एक बहुत अच्छी वाली मोटिवेशन मिलती है खुद के लिए, जैसा कि मैं करती हूँ, कि कभी भी घबरा करके हार नहीं माननी चाहिए, बैठ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग आपको दुख देते हैं, जो लोग आपके आपको गिराना चाहते हैं, वो आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर कभी नहीं खुश होंगे। तो आप उनके लिए आगे बढ़ के दिखाओ, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं उनको आगे बढ़ के दिखाओ कि मैं आपके बिना भी खुश हूँ, और चाहे वो फैमिली ही मेंबर क्यों ना हो, साथ में भी रह रहा है तब भी वो आपको गिराने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो आप उनको दिखाओ हमेशा से खुश रहो कि मतलब आप लोग अगर हमारी लाइफ में नहीं हैं हम तब भी खुश हैं। तो एक पीक पॉइंट आ जाता है कभी ना कभी, दिल में एक टीस आ जाती है कि हाँ, मतलब लगता है कि वो एक कोना खाली,
2: वो पॉइंट फील हो जाता है,
3: एक कोना खाली है, बट मुझे लग रहा है कि अगर हम किसी से रियल लव करते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो चाहे वो फैमिली मेंबर हो, तो मुझे लगता है कि उस तख्ते पे फिर किसी को बैठाया भी नहीं जाता है, मतलब बैठाना भी नहीं
2: जी जी।
3: आपके लिए वो इंसान या वो घर का मेंबर, वो आपकी फ्रेंड इम्पॉर्टेंट होती है, जिससे आपने उसको अलग हो गए, ठीक है
2: जी,
3: लेकिन उस तख्त पे भी बैठाना जरूरी होता है, फिर आप आगे बढ़ो जो भी करो उससे मतलब नहीं है। बट मुझे लगता है कि ये कहना और ये चीजें होना ना एक किताबी वाली होती है, फिर मुझे ऐसा फील होता है। बट इट्स नॉट अ कहते हैं कि इजी वर्क, इजी वर्क नहीं होता है ये, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है अपनी अपने आप को आगे फेस करने के लिए, सामने सबके सामने दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है जिसको हम फेस करते हैं। बट यही पॉइंट निकल के आता है अगर हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ है कि अपने आप को भी देखो, खुश रहो, क्योंकि अगर आपका कुछ बिगड़ेगा और सामने वाला देख करके आपको खुश हो रहा है तो इसमें आपकी बेवकूफ़ी है, उनकी नहीं।
2: तो अभी आपने जाना कि कैसे मैम ने बताया और बहुत ही अच्छे से उन्होंने ब्रीफ किया और बताया।
3: और ये एक बात और कहना चाहूंगी कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं मोटिवेट करने का जो मेरा श्रेय है, ये मैं ऑन एयर कहना चाहती हूँ कि हाँ, मैं कुछ परेशान थी पिछले दिनों में, तो मुझे उसको मोटिवेट करने में एग्जैक्टली अंशिका का बहुत हाथ है। मुझसे बहुत छोटी है, मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं ना कि अगर एक डूबते को एक तिनके का सहारा, जब हम कहीं गिर जाते हैं या कुछ होता है तो हमें लगता है ना कि एक तिनका भी अगर मिल जाए और उसके सहारे अगर हम बाहर आ सकें तो हम उसका एक थैंकफुल कहना चाहते हैं। तो भले ही जो भी मतलब हम दोनों में रहा हो, बट वो सारी सिचुएशंस से बाहर निकालने का श्रेय मैं अंशिका को देती हूँ और ऑन एयर बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ।
2: वाओ, मतलब ये मेरी तारीफ है, मैं कितनी खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच।
3: और मैं तारीफ जल्दी नहीं करती हूँ, ये भी तुम्हें पता है।
2: नहीं, इसीलिए तो मैं खुश हूँ।
3: मैं किसी की तारीफ नहीं करती हूँ जल्दी, ये भी आपने सुना होगा कि मैं किसी को नहीं बोलती हूँ कुछ।
2: इसका मतलब मेरी तारीफ की
3: नहीं, मेरी नहीं की, मैंने आपकी तारीफ नहीं की, आपकी मोटिवेशन की तारीफ की।
2: हाँ तो ठीक है मैम, मोटिवेशन की तारीफ की है आपने, थैंक यू। मतलब मैम ये नहीं मान सकती है कि उन्होंने मेरी तारीफ की।
3: नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि मम्मी से हम कभी लड़ते हैं कि तुम मेरी कभी तारीफ नहीं करती हो, तो मम्मी मेरी मुझे यही कहती है कि मैं तारीफ करूंगी तो तुम्हें नजर लग जाएगी।
2: हाँ, इसीलिए मुझे नजर न लगे,
3: और हमेशा से लड़ती ही रहती हूँ इसलिए, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे उसमें है कि जिसको मैं दिल से चाहती हूँ वो मुझे छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा मेरे उसमें है। बट फिर मुझे लगता है, फिर मुझे दुख होता है, तो इससे अच्छा है कि मुझे लगता है कि हाँ, जो मेरे करीब हैं मैं उनसे बरकरार लड़ाई बरकरार रखती हूँ, चाहे वो मेरा पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो मेरी फैमिली लाइफ हो, चाहे मेरा वो कार्यस्थल क्यों ना हो।
2: यानी कि अगर आप किसी को मतलब दिल से मानते हैं तो उससे थोड़ी बहुत लड़ाई भी करते रहें।
3: Exactly, थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी वाली लड़ाई। अच्छा, बनी रहनी
2: अच्छी वाली।
3: हाँ,
2: अच्छी वाली। तो मतलब अच्छी वाली का क्या मोटिव है, मतलब सिर्फ वैसे ही लड़ाई करनी?
3: बाल वाल नोचना।
2: अरे बहुत ज्यादा हो जाएगा मैम, अगर किसी के सर में हो ही ना, मतलब आजकल आप देख रहे हैं बहुत झड़ रहे हैं, तो बहुत
3: बात कर रही हो क्या?
2: नहीं, मैं अपनी बात
3: है मेरे पास।
2: नहीं तो झड़ रहे हैं ना, सर में होंगे तब तो कोई नोचेगा ना।
3: चलिए, निकालने के लिए ऊंचाई वाली कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है। हम आते हैं एक ब्रेक के बाद, क्योंकि हो गई है बहुत सारी बातें, तो इसके बाद हम रेसिपीज को लेंगे और फटाफट बस हम यूं गए यूं आए। तब तक आप सुनते रहे इस प्यारे से गीत को, नगमे को, और आएंगे सीधे चैट बॉक्स में। स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: आरजे अंशिका। चलिए भाई फटाफट चलते हैं आज की रेसिपी के लिए, और आज की पहली रेसिपी बताएंगी अंशिका, देखते हैं क्या है उनके पास।
1: तो मेरे पास आज जो है वो बहुत ही

0: प्यारा सा नहीं, प्यारा सा नहीं, स्वादिष्ट
1: स्वादिष्ट
0: स्वादिष्ट
1: स्वादिष्ट नहीं स्वादिष्ट मतलब मैं पहले से ही पानी आ गया, इस वजह से वर्ड नहीं निकल रहा है।
0: स्वादिष्ट हाँ आ गया, वो स्वादिष्ट फल है और बहुत ही प्यारा सा फल है। हाँ
1: अच्छा, रेसिपी आज है कि फल
0: है? नहीं, फल की रेसिपी है।
1: फल की रेसिपी है
0: तो आज जो है वो है कि जो है गर्मियों में खाना तो पड़ता है बनाना।
1: हाँ बिल्कुल, खाने के सिवा नहीं। हम तो सोचते हैं कि भगवान ने ये सिस्टम जो बना दिया कि खाना खाओ, कुछ ऐसा ही सिस्टम शुरू से होता कि कुछ ड्रिंक वगैरह होती कि तीनों टाइम ड्रिंक से ही हम लोगों को उतना पोषण और सब कुछ मिल जाता, और वो ड्रिंक्स भी हम लोगों के यहाँ बनानी नहीं पड़ती,
0: बनी बनाई होती,
1: बनी बनाई होती। कितना अच्छा होता ना,
0: कितना, बट ऐसा हो नहीं सकता।
1: वही ना, मतलब खाना खाना है फिर
0: बनाना है,
1: बनाना है।
0: तो वही मैं कह रही थी कि खाना सभी को खाना हो तो पड़ता है बनाना, और आज हम आपको खिलाएंगे बनाना। आई मीन बनाने से मेरा मतलब है कि केला खिलाएंगे। बहुत ही अच्छी सी आज मैं खिलाने वाली हूँ आपको केले की बर्फी। लेकिन उसे खिलाने से पहले उसके कुछ बेनिफिट्स भी बताना चाहेंगे, क्योंकि हमारी घर की जो महिलाएं होती है ना, उनको सबसे पहला सवाल ये होता है कि बेनिफिट क्या क्या है। तो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि अगर किसी को वीकनेस होती है या फिर खून की कमी होती है, यानी कि आप एनीमिक हैं, होमोग्लोबिन की कमी है, तो बनाना ज़रूर खाना चाहिए। अगर केला और दूध आप साथ में लेते हैं तो इससे बॉडी में वो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से बूस्ट होती है।
1: पेट तो नहीं खराब होता है?
0: नहीं, पेट नहीं खराब होगा
1: दूध और केला।
0: हाँ, दूध और केला खाने से इम्यूनिटी बहुत अच्छी, जैसे छोटे बच्चे जब होते हैं घर में तो हम कहते हैं ना केला और दूध दो, उससे अच्छी एक पर्सनालिटी होती है, अच्छी वो होती है। तो आप खुद भी खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम
1: मतलब
0: नहीं
1: है, छोटे बड़े सब खा सकते हैं,
0: सब खा सकते हैं। लेकिन केला और दूध ऐसे खाली खाना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लगता है कुछ और मिला हो, कुछ टेस्टी सा बढ़िया सा। तो इसलिए आज केले की बर्फी मैं बनाने वाली हूँ, और ये मैंने सोचा है कि मैं इसको बनाऊंगी भी घर पे, मतलब अभी मैंने बनाया नहीं है, अभी मैंने सिर्फ इसको सोचा है। मैंने इसको नेक्स्ट ईयर बनाया था, लेकिन इस ईयर मैं फिर से इसको बनाऊंगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमें केले चाहिए। केले आप ले लीजिए 2 से 3 केले। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 2 से 3 केले आप ले लीजिए, आराम से उसमें बन जाएगी। अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप उस क्वांटिटी के हिसाब से मतलब केले को बढ़ा सकते हैं कि आपको कितना लेना है। केले ले लिया आपने, अब इसके बाद आपको लेना है दूध। दूध आपको लेना है 1/2 किलो। 1/2 किलो दूध ले लीजिए और खोआ ले लीजिए। दूध अगर आपने 1/2 किलो लिया है तो खोआ लेना है 250 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में चीनी या गुड़, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जो कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो गुड़ मत लीजिएगा, चीनी लीजिएगा, क्योंकि गर्मियों में जैसे कहते हैं ना गुड़ गर्म होता है, तो गर्मियों में गुड़ थोड़ा सा कम खाना चाहिए। अब आते हैं कि देसी घी ले लेनी है आपको, इलायची पाउडर, और इलायची पाउडर के साथ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, किशमिश, जो भी आपको पसंद है, पिस्ता वगैरह आप उसको ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इसमें अंजीर डालेंगे तो अंजीर भी बहुत अच्छी लगेगी। अब आते हैं कि बनाना कैसे है। तो सबसे पहले क्या करना है कि केले को छील लेना है आपको, और उसे अच्छे से हाथों से नहीं, आप चम्मच की सहायता से उसको बढ़िया से मैश कर लीजिएगा। मैश करने के बाद में क्या करना है, मैश करते वक्त ध्यान रखना है कि उसमें गांठें ना हो जाएं, क्योंकि जब हम मैश करते हैं तो कहीं कहीं लम्स रह जाते हैं, लेकिन उसको आपको अच्छे से मैश करना है। जब वो मैश हो जाए अच्छे से, वैसे इस पर मुझे एक बात याद आ गई, फनी बात ही याद आ गई कि मेरे यहाँ दीदी मेरी थी, तो उनको मतलब ऐसा मुझे ऑन एयर थोड़ा हंसी आ रही है कहते हुए, फ़नी लग रहा है, लेकिन उनको जो है ना उनकी नंद मैम थोड़ी पसंद नहीं थी, मतलब उनमें झगड़े ज़्यादा होते
1: थे। वैसे भी पसंद नहीं होती
0: है। नहीं, ऐसा सेंस नहीं है मेरा, मतलब जो भी सुन रहे हो ना लगाएं, लेकिन कहने का सेंस ये कि उनको पसंद नहीं थी वो।
1: अच्छा।
0: तो जब भी उनकी बात करो या कुछ उनके बारे में कह दो तो मेरी मतलब मेरी दीदी बताती थी कि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब मुझे उन पर बहुत गुस्सा कभी आता है मतलब घर पर, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जब आटा सानती हूँ ना, तो मैं आटा जब मतलब आटा गूँथते हैं तो आटा गूँथने के वक्त मैं उनको याद करती हूँ, फिर मैं आटा गूँथती हूँ। बहुत अच्छा आटा गूँथता है मेरा,
1: मतलब
0: गुस्सा आती है
1: जैसे, मतलब उसको हाथ से मार,
0: हाँ वो ऐसा फील करती है, और
1: ये
0: फिर
1: एक
0: वो
1: टेक्निक बता दी इन्होंने सारी बहुओं को,
0: नहीं नहीं
1: भाभियों को,
0: गलत।
1: अगर आप लोगों को नंदे नहीं पसंद है तो आप आटा गूंदने समय अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं, ये तो फनी में इसने बताया,
0: नहीं
1: है।
0: मैं तो फनी में ही बताया, डोंट बी सीरियस।
1: हाँ, लेकिन इसका एक साइंटिफिक रीजन मुझे भी याद आ गया है, एक स्पिरिचुअल को लेकर के। बीके शिवानी कहती हैं कि अगर आप रोटियां बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो जो फीलिंग आप उसमें डालेंगे ना, वैसी ही फीलिंग आप सबको परोसेंगे।
0: ओके,
1: इसीलिए खाना हमेशा से अच्छी फीलिंग से बनाना चाहिए।
0: हाँ।
1: अगर आप ये फीलिंग डाल रहे हैं कि आप अपने नंद को मार रहे हैं, तो वही वाली फीलिंग उन रोटियों में जाएगी।
0: अच्छा मतलब
1: तो इनके कहने पे मत आइएगा।
0: नहीं नहीं मेरे कहने, मैंने फनी कहा है, मैंने पहले ही कह दिया था कि आप लोग इसको अन्यथा में मत लीजिएगा, वरना पता चला कल नंदो की बाल लाइन लगे, किसने बताया था, निकालो जरा बाहर बताते हैं। तो ऐसा ना करें, मतलब मैंने तो जस्ट फनी वे में बताया, मतलब वो ऐसा कहती हैं कि वो ऐसा करती हैं, हालांकि मैं नहीं करूंगी, वो तो बाकी कैसी मिलेंगी वो तो बाद की बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि अब आपको उसके बाद क्या करना है, कि जब आपने अच्छी तरीके से उसको मैश कर लिया है, उसमें बिल्कुल लम्स नहीं है, उसके बाद आपको भारी तले की कोई भी कढ़ाई या जो भी आपके घर में कंटेनर हो वो आपको ले लेना है और देसी घी उसमें डाल देना है। अच्छे से जब देसी घी आपका गर्म हो जाए उसके बाद आपको उसमें मैश किए हुए केले डाल देने हैं और धीमी आंच पर उन्हें तब तक भूनना है जब तक उसका रंग जो है वो हल्का सा भूरा ना हो जाए या वो प्रॉपर घी ना छोड़ने लगे। जब वो प्रॉपर घी छोड़ने लगे उसके बाद आपको क्या करना है कि अब आपको भुने हुए केले में दूध जो आपका, जब वो भुना हुआ जो केले का बैटर है ना वो पूरा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आपको ये करना है कि आपको इसमें क्या करना है कि आप भुने हुए केले में आपको वो दूध और जो आपने रखा था खोआ उसे मिला देना है और हल्का सा मतलब आधे चम्मच से भी कम आपको मिल्क पाउडर अच्छी तरह से उसमें मिलाना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें अब बारी आती है कि हम चीनी डालेंगे या फिर गुड़ डालेंगे, ये और डिपेंड करता है। तो चीनी, मैं चीनी ही प्रेफर करूँगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा अलग सा टेस्ट तो हल्का सा एक टुकड़ा आप गुड़ डाल दीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि असली काम अब करना है आपको, वो ये है कि आपको इसे लगातार चलाते रहना है ताकि ये कढ़ाई में नीचे ना लग जाए, क्योंकि अगर हम देखिए केला जैसे आपने देखा होगा कि चिपचिपा होता है, मतलब बहुत लस्सी उसमें होती है, तो अगर आप इसे नहीं चलाएंगे तो ये नीचे लग जाएगा, जल जाएगा, ये तय है। इसलिए आपको उसको प्रॉपर चलाते रहना है, जैसे मिक्सी होती है ना, कुछ डालते हैं तो उसमें प्रॉपर चलता है, वैसे ही आपको प्रॉपर उसको चलाते रहना है। अब इसके बाद क्या करना है कि जब ये पूरा बैटर गाढ़ा हो जाए, मतलब आपको लगे कि हाँ वो अब थिक हो गया है, उसके बाद में आपको क्या करना है कि अच्छे से उसको कढ़ाई से निकाल लेना है, और वो जब आप कढ़ाई से निकाल करके किसी ऐसे कंटेनर में रख दीजिएगा जो कि बंद हो, ऐसे कंटेनर में आपको इसको रख देना है और करीबन रखना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जब आप इसको हटाएंगे, देखेंगे ना, तो ये पूरा डो की तरह दिखने लगेगा। अब आपको क्या करना है कि अब आपको इसमें इलायची पाउडर और आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं कटे हुए, मतलब बादाम है, काजू है, किशमिश है, वो सारे ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको कोई भी एक प्लेट ले लेनी है, मतलब अच्छी गहरी हो थोड़ी सी वो प्लेट, आपको प्लेट ले लेनी है और उसके नीचे थोड़ा सा घी लगा करके अच्छे से ग्रीसिंग कर देनी है, और उसके बाद ये बैटर पूरा आपको उसी पे डाल देना है और चम्मच की मदद से थोड़ा इसको बराबर कर दीजिएगा, और थाली मतलब प्लेट को हल्का हल्का हाथ से ऐसे थपथपा देंगे तो वो चारों तरफ से बराबर हो जाएगा। अब ये बराबर हो गया, अब आपको क्या करना है कि अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां भी डाल सकते हैं, गुलाब की पत्तियां डाल दीजिए और डालने के बाद इसे फ्रिज में रख दीजिए, लेकिन एक घंटे के बाद फिर निकाल लीजिए, मतलब पहले आप रख दीजिए फिर एक घंटे बाद फिर से निकाल करके चक्कू लीजिए और चक्कू से आप उसे जैसे जिस भी शेप में काटना चाहते हैं, मतलब हार्ट के शेप में काटना चाहते हैं या तिकोनी रखना चाहते हैं या जैसे भी नॉर्मल बर्फी की तरह रखना चाहते हैं वैसे उस पर आप कट्स लगा दीजिए, और कट्स लगाने के बाद फिर से इसे फ्रिज में रख दीजिए। अंदाज में अगर आपको दूं तो 6 से 7 घंटे में आराम से आपकी बर्फी जो है वो बन के अच्छे से सेट होके तैयार हो जाएगी। लेकिन एक प्रिकॉशन और बताना चाहूँगी कि जैसे आप प्लेट में रख रहे हैं ना, तो प्लेट के ऊपर कुछ ऐसा रख दीजिएगा जिससे वो पूरी बर्फी का जो बैटर है वो कवर रहे, क्योंकि क्या होता है ना कि फ्रिज में जैसे पानी, कई बार बर्फ मेल्ट होती है तो वो पानी जैसे हो जाता है ना, तो उससे जो है ज़्यादा गीला हो जाता है अगर हम खुला उसको छोड़ देते हैं। तो आप चाहें तो फॉइल पेपर लगा दीजिए ऊपर से, मतलब कुछ भी आप लगा सकते हैं, पेपर हो गया, बटर पेपर हो गया, बस इतना करना है कि उसको कवर रखना है, और 6 से 7 घंटे के बाद बढ़िया से निकालिए और बढ़िया ये केले की बर्फी इंजॉय करिए, और जिन्हें वीकनेस लगती है वो तो ज़रूर खाएं इसे। और लेकिन ऐसा मतलब नहीं है, मतलब किसी जैसे सुबह आप एक पीस ले लीजिए, फिर रात में कभी क्रेविंग होती है ना कि मीठा खाना है तब आप ले लीजिए, तो इससे आपकी जो है हेल्थ भी बनी रहेगी, और मीठा खाने की अगर आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है मैम, तो अगर आपको भी मीठा बहुत पसंद है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं।
1: ओके। तो ये जब आप बनाइएगा तब हमें खिलाइएगा।
0: बिल्कुल, ठीक है, अगर बनाऊंगी तो खिलाऊंगी।
1: हाँ, ठीक है, तो जब ये बनेगा तब हम सब में बटेगा,
0: कटेगा तो मतलब क्या
1: ऐसे कटेगा तो सब में बटेगा।
0: हाँ भाई
1: ठीक है। तो भैया चलिए ये खिलाने वाली हैं हम लोगों को बर्फी, तो फटाफट अभी हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे सीधे हमारी मास्टर शेफ की रेसिपीज को जानेंगे, देखते हैं आज वो क्या लेकर के आई है। तो चलिए हम चलते हैं एक प्यारे से गीत की ओर, और बस हम यूं गए यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: जी बिल्कुल नागेश्वर जी, आपका सुझाव सर आंखों पे। और लीजिए, मैंने आज से ही शुरू कर दिया है, तो जितनी भी फीमेल लिसनर्स हैं, आप कॉल करिए और अपनी रेसिपी को बताइए। जितनी भी हमारी फीमेल लिसनर्स हैं, आप जल्दी से कॉल करके अपनी कोई भी फेवरेट एक रेसिपी बता सकती हैं, और उसके बाद आपकी ही पसंद का एक सॉन्ग भी हम प्ले करेंगे। तो अभी मास्टर शेफ की एक रेसिपी चलेगी, तब तक आप कॉल करिए, और फिर उसके बाद में हम आपकी कॉल फिर से कनेक्ट करके आपकी रेसिपी को ज़रूर सुनेंगे।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली। हमारे लजीज मंडे में हम हाजिर हो गए हैं हमारी मास्टर शेफ यानी कि रंजना मैम के साथ। तो चलिए जानते हैं कि आज हमारी मास्टर शेफ हमारे लिए क्या लाई हैं और वो हमें क्या खिलाने वाली हैं।
5: भाई देखो, आजकल जो है आइसक्रीम का बहुत ठंडा चाहिए, हाँ, है ना, मौसम है, सब बच्चों को पसंद है, गर्मी इतनी चल रही है ना, कि उसमें ठंडक, ठंडी चीज अच्छी लगती,
4: हाँ,
5: है।
4: मन करता है कुछ ठंडा, हाँ, खाएं।
5: तो कभी कभी हम लोग के पास बहुत सारी चीजें नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी आइसक्रीम बनाने का मन करता है। तो आज हम आपको बचे हुए रस तो बच्चे जिनके घर में रहते हैं बिस्कुट रस रहते ही रहते हैं, बस उसी की एकदम सरल सी रेसिपी आइसक्रीम की बता रहे हैं।
4: रस से आइसक्रीम?
5: बिल्कुल। तो अब आप लोग जो है कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिख लीजिए।
4: जी मैम।
5: तो सबसे पहले जो है 5-6 रस जो भी आपके पास बचे हुए है वो आप ले लीजिए, अलग रख लीजिए।
4: जी।
5: फिर कढ़ाई एक ले लीजिए, उसमें 2 टेबल स्पून पानी डालें, और उसके बाद उसमें जो है वो 2 प्याले फुल क्रीम दूध डाल दीजिए।
4: जी मैम।
5: अगर फुल क्रीम नहीं है तो आप थोड़ा ज़्यादा दूध लेके तब गाढ़ा कर लीजिएगा। तो पानी हमने इसलिए डाला, पानी डालने से दूध नीचे चिपकता नहीं है तली में, इसलिए हमने आपको जो है 2 टेबल स्पून पहले पानी डला दिया है।
4: जी।
5: अब उसमें जो है 1 कटोरी जो है अलग से ले लेंगे दूध पाउडर, मिल्क पाउडर जानती हो बाजार में आता ही है।
4: जी मैम।
5: वो 1 कटोरी हम, या आधा कटोरी जो भी होगा, अगर आपके पास 1 कटोरी 1 कटोरी, अगर आधा कटोरी है तो आधा कटोरी आप मिल्क पाउडर डाल देंगे, और मध्यम आंच रखते हुए उसको उबाल आने देंगे। जब जैसे उबाल आएगा 1 या 2, अगर घर का दूध है उसमें फुल क्रीम नहीं है तो 2-3 उबाल आने दीजिएगा, और अगर फुल क्रीम दूध है तब आप जैसे ही उबाल आए वैसे ही क्या करेंगी, आप जो आपने रस्क रखे हुए हैं वो उसमें डाल देंगी।
4: जी मैम।
5: और 5-6 काजू भी डाल देंगी, क्योंकि हम और कुछ नहीं डाल रहे तो स्वाद तो अच्छा आना ही चाहिए ना।
4: बिल्कुल।
5: 5-6 काजू डाल देंगे, ज्यादा हो 7-8 कर दीजिए, पर इससे ज्यादा नहीं।
4: जी मैम।
5: और 2 टेबल स्पून चीनी डाल देंगे।
4: जी।
5: 1 आता है टीस्पून 1 टेबल स्पून।
4: जी मैम।
5: तो टेबल स्पून जो है वो आप चीनी डाल देंगे। अब उसको जो है अलग से, अब एक कढ़ाई लेंगी, उसमें 1/2 कटोरी चीनी डालेंगे।
4: 1/2 कटोरी।
5: हाँ। और 1 चाय का चम्मच बस पानी उसमें छिड़क देंगी, आंच मध्यम रखेंगी, और चीनी को पिघलने देंगी। इसको हम लोग कैरेमल कहते हैं, ज्यादा कर दो तो भूरा हो जाता है, हल्का करो तो हल्का सुनहरा सा रहता है। तो हमको बस सुनहरा ही संग रंगना है। अब इसे जो है फिर ठंडा करेंगे, जैसे ही जम जाएगा और इसको हम उबलते हुए दूध में डाल देंगे
4: जी,
5: तो इससे रंग भी बदल जाएगा और स्वाद भी अच्छा हो जाएगा
4: जी मैम।
5: अब क्या करेंगी कि मिक्सी में जो है तीन चार छोटी इलायची डालेंगी और जो हमने ये बैटर तैयार किया है रस्क का, दूध पाउडर का और दूध का
4: जी मैम,
5: ये खूब गाढ़ा हो चुका होगा इस समय, इसको मिक्सी में ठंडा करेंगे थोड़ा, फिर मिक्सी में डाल देंगे। मिक्सी में डाल के इलायची के संग इसको पीस लेंगे। अब इसको जो है बाहर निकाल लेंगे एक बाउल में। बाउल में निकालने के बाद हम क्या करेंगे, क्रीम मलाई आपके यहाँ अगर है तो ठीक है, नहीं 70-72 रुपए का छोटा क्रीम का डब्बा मिलता है, वो आप ले लेंगी, अमूल क्रीम या जो भी हो वो आप इसमें डाल देंगी। अगर घर की क्रीम मलाई डाल रही है तो आप आधा से एक प्याला जो आपके घर में हो वो आप इसमें डाल देंगी
4: जी।
5: और खूब अच्छे से चला देंगी। चलाने के बाद अब आप क्या करेंगी, अगर आपके पास आइसक्रीम कोन है तो ठीक है, नहीं है तो आप छोटे छोटे जो कागज के गिलास मिलते हैं
4: जी मैम,
5: है ना,
4: वो जो पानी वगैरह
5: पानी वाले छोटे छोटे
4: डिस्पोजल,
5: हाँ वो रख सकती है। अगर आपके पास कुल्हड़ है तो कुल्हड़, छोटी छोटी मटकी है उसको तो पानी में आप खूब धो लीजिए। गिलास को तो आप भिगोएंगी नहीं, बस सूखे कपड़े से पोंछ देंगी। पोंछने के बाद आप अंदाज से वो उसमें जो आप जो तैयार बैटर है वो उसमें डाल देंगी। जब आप उसमें डाल देंगी तब उसमें चाहिएगा तो एक एक आइसक्रीम स्टिक मिलती है वो डाल दीजिए, नहीं सादा पकड़ ऐसे रख दीजिए
4: जी मैम।
5: और अब आप इसको कम से कम 6-7 घंटे इसको फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में
4: जी मैम।
5: देखो तो अच्छे से जम जाएगी। और ज़्यादातर ये काम आप शाम को करिए, तो रात भर फ्रिज में रहन दीजिए, सुबह निकालिए या दोपहर में निकाल के तब बच्चों को दीजिए।
4: रात में बना करके हाँ, अगर रख दिया जाए हाँ, तो वो अच्छे से सेट हाँ, हो
5: बहुत अच्छे से। फिर आप जैसे निकाल रही हल्के हाथ से दोनों हथेलियों के बीच में उसको गिलास को चलाइए और गिलास को फाड़ दीजिए
4: जी,
5: और फाड़ करके प्लेट में निकाल लीजिए। प्लेट में निकाल के आप बच्चों को चम्मच के संग सर्व कर दीजिए। और अगर आपने चम्मच निकाल लगा रखा उसमें स्टिक वाला तो आप ऐसे ही पकड़ा दीजिए। देखिए बहुत कम सामान में बहुत अच्छी ये आइसक्रीम बनके तैयार हो जाती है, सामान भी इसमें कुछ ज़्यादा लगना नहीं है
4: जी मैम।
5: तो एक बार ज़रूर बनाइए, खुद खाइए और सबको खिलाइए।
4: जरूर वाह, मैं तो जरूर बनाऊंगी और ट्राई करूंगी, क्योंकि देखिए लिसनर्स क्या होता है ना कि गर्मियों में हमें चाहिए ही होता है कि कुछ ठंडी चीज़ मिल जाए, और ठंडी चीज़ में आइसक्रीम मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। तो चलिए इस मीठी मीठी ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग भी सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। बस यू गए यू आए, स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, हम वापस आ गए हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के बाद। तो चलिए अब सीधे चलते हैं हमारी मास्टर शेफ के पास और जानते हैं कि नेक्स्ट रेसिपी कौन सी
2: है। देखो, सुबह उठते ही बड़ी परेशानी होती है, बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं दूध दूध पी के, बाकी सब बड़े रहते हैं। अब आज क्या बनाए,
1: नाश्ते में क्या बनाए।
2: कभी इडली बनाती हूँ, कभी पोहा बनाती हूँ। तो घर में जेंट्स ज्यादातर, जो टीन एज वाले बच्चे हैं, वो ज्यादातर ये क्या बना दी है ना? तो आज आपको हम बहुत मुलायम बन, जैसे बाजार में मिलते
1: जी
2: हैं
1: जी,
2: उसी तरह का आपको हम तवे पे घर पे बनाना सिखाते हैं। बहुत कम सामान लगेगा और बहुत जल्दी बन जाते हैं। एक बार आप बना लेंगी तो देखिएगा बार बार बनाएंगी। तो चलिए सामान लिख लीजिए
1: जी मैम।
2: आटा एक कटोरी, गेहूं का आटा जो है घर वाला, वही आप एक कटोरी ले लेंगी। थोड़ा सा नमक ले लेंगी, मुश्किल से आधा चाय का चम्मच
1: जी मैम।
2: एक ईस्ट का पैकेट आता है,
1: ईस्ट,
2: हाँ, जैसे इनो इनो आता है वैसे ईस्ट का पैकेट आता है, वो आप एक पैकेट ले लेंगी। अब आप क्या करेंगी, थोड़ा सा गुनगुना पानी लेंगी और ईस्ट और नमक को आटे में मिला के गुनगुने पानी से आप एक डो तैयार कर लेंगी। अच्छे से सान करके रख लीजिए मुलायम मुलायम। जब मुलायम हो जाए तब आप उसको आधे घंटे के लिए कम से कम ढक के रख दीजिए ताकि वो थोड़ा सा फूल जाए
1: जी मैम।
2: अब जितनी देर तक आप खाली हैं उतनी देर तक आप क्या करेंगी, एक मध्यम आकार का प्याज लेंगी जो खूब महीन महीन चौकोर टुकड़ों में काट लेंगी। बीन्स अगर आपके पास है तो खूब महीन बीन्स काट लीजिए, अगर शिमला मिर्च है तो वो काट लीजिए, जो भी हो आपके पास उन सबको लगा दी, काट के अलग रख लीजिए। एक पैन आप गैस पे चढ़ा दीजिए, पैन पर चढ़ाया फैला या तो तवा चढ़ाइए, ठीक है, मतलब कढ़ाई नहीं लेंगी आप। अब आप क्या करेंगी, जो आपने आटा सान के रखा था ढक करके, उसको उस पर अपने जो बोर्ड है उस पर रखिए और उसको सानिए फिर से
1: जी।
2: अब आप देखिएगा खूब मुलायम मुलायम सा वो बहने वाला हो जाएगा, जैसे आपने खमीर अमीर देखा है वैसे हाँ, ही हो जाएगा। तब आप जो है उस पर आटा छिड़क लीजिए इस पे बेलने वाले बोर्ड पे और उसको धीरे धीरे करके आप एक लोया जैसे लंबा सा बनाते हैं रोल, वैसे में आप फैला लीजिए। अगर आपको लग रहा है हाथ में ज़्यादा चिपक रहा है तो आप तेल भी लगा सकती हैं, लेकिन जहाँ तक है आप सूखा आटा ले लीजिए, उस लोई पे भी लगा दीजिए, अपने हाथों पे भी ले लीजिए। उसके बाद जब एक मोटा सा हो जाए तब आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, लगभग 1.5 से 2 इंच चौड़े टुकड़ों में आप पूरे लोई को काट लीजिए। काटने के बाद आप हाथ में उसको लीजिए तो तुरंत वो गोले से बन जाएंगे
1: जी,
2: जैसे टिकिया क्या बनाते हैं वैसे गोले गोले बनते हैं, वैसे बन जाएंगे। अब आपने जो पैन चढ़ा रखा है उसमें आप तेल डालिए थोड़ा, अब तेल आपके ऊपर है, रिफाइंड डालिए, चाहे डालडा डालिए, चाहे देसी घी डालिए, बहुत अच्छा हो तो बटर डालिए, कुछ भी डाल दीजिए। और उसके बाद ये जो गोले आपने बनाए हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे रख दीजिए, उस पे रखने के बाद आप उसको ढक दीजिए ऊंचे वाले ढक्कन से
1: जी मैम।
2: 5 मिनट आँच आप मध्यम ही रखिएगा, तेज मत करिएगा
1: जी,
2: क्योंकि पकना। उसके बाद फिर आप उसको पलट देंगे, जो बन आपके हैं देखिएगा लाल लाल कितने अच्छे हो गए। फिर से आप उसमें रिफाइंड या बटर या जो भी है डालडा, जो भी डालना है घी, वो आप डाल देंगी और फिर से 5-10 मिनट सेकने देंगी। अच्छा, एक बात तो हम भूल गए, जो ये आटा था उसको में आपको ये जो प्याज और वो काटना काटा था
1: बीन्स
2: वो नहीं मिलाई थी ना, वो आपको मिला देना चाहिए क्योंकि हमने तो पहले ईस्ट डाल के डो बना रखा
1: जी जी।
2: उसके बाद हमने आधे घंटे के लिए ढक के रख दिया था। अब आप जब दोबारा आप इसको आटा मल रही हैं तो बीन्स और प्याज भी या शिमला मिर्च डाल दीजिएगा और तब डाल के लोई बनाइएगा, तब काट लीजिएगा, तब हाथ में लोई बना बना फ्राइंग पैन में रख दीजिएगा। रखने आप देखिएगा क्या फूल फूल सुंदर से हो जाएंगे। आप उसको तोड़िएगा, चाहे किसी भी सब्जी बन की तरह से खाइए
1: जी मैम,
2: चाहे आप इडली की तरह सांभर से, नहीं तो सिर्फ सॉस से खाइए, देखिएगा कितना अच्छा नाश्ता बना। आप एक बार बना लेंगी तो बार बार खाएंगी। चलिए तो बनाइए और खाइए।
1: जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, और बहुत ही अच्छी लगी लिसनर्स मुझे तो दोनों ही रेसिपीज, मतलब घर में बंद बनाना आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, मैं भी ट्राई करूँगी। तो चलिए चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, बस यूं गए यूं आए, स्टे ट्यून्ड।

0: भाई नागेश्वर जी, आपको आपने एक पहल करी, लेकिन उस पहल को हमने आज फॉलो भी किया, बट कोई नहीं आया, मतलब किसी का कॉल नहीं आया, ना आशु जी, ना ही प्रीति जी, ना ही गीता जी। तो बताइए हम लोग और क्या और कैसे इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करें, क्यों अंशिका?
1: बिल्कुल, आपकी जो भी और भी सुझाव हैं, जो भी आप बताना चाहते हैं, मुझे जरूर बताएं, ताकि हम और अच्छे से इस प्रोग्राम को डिजाइन करें।
0: लेकिन अभी तक कोई कॉल करके नहीं आया।
1: हाँ मैम, कॉल तो नहीं आई।
0: तो फिर कैसे होगा बताइए। तो कोई बात नहीं, चलिए और इसी हम प्रोग्राम के डिजाइन को हम नेक्स्ट मंडे स्टार्टिंग में ही करेंगे।
1: हाँ, कॉलिंग मतलब हाँ, शुरू में ही रखेंगे ताकि आप कर सकें।
0: हाँ बिल्कुल, तो नेक्स्ट मंडे से भाई आप कॉलिंग प्रोग्राम हो जाएगा, खास करके हमारी फीमेल लिसनर्स कि आप कॉल करें और अपनी एक रेसिपी को जरूर से हम तक पहुँचाने का काम करें, ताकि हम आपको भी उस दिन एक फेवरेट सॉन्ग सुनाने का मौका भी देंगे।
1: तो भाई बोनस भी होगा, और बोनस के साथ आपके किचन से बढ़िया बढ़िया हमारे लिए रेसिपीज भी होंगी, बट वो सब होगा नेक्स्ट मंडे। और फिलहाल के लिए हम चाहेंगे आपसे इजाजत, क्योंकि टाइम हो गया है।
0: बिल्कुल टाइम हो गया है, और हमें दे इजाजत, हम मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर,
1: बाय बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: अरे सुना?
9: क्या?
8: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
9: वाओ!
8: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
10: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
11: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
10: और जेंट्स के लिए?
11: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
10: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा। और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
11: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
9: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
12: मतलब?
9: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
11: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: जी हाँ दोस्तों, वक्त हो चला है आपके फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम का और मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त आर्यकांक्षा, जो लेके हाजिर है आपका पसंदीदा प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा। और हाँ जी, आपने बखूबी से ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो गाना 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। लेकिन इस धड़कन को और हम धड़काएंगे और आगे बढ़ाएंगे आपके नगमों के द्वारा। उससे पहले कुछ कहना चाहेंगे तो फरमाना ये है हमें आपसे कि कल है भैया एक और जेठ का मंगल और उसके साथ में है गंगा दशहरा। जी हाँ, दोनों ही पर्व एक साथ में मिल रहे हैं और माता गंगा से बस थोड़ी सी हमें प्रार्थना करनी होगी कि हे गंगे, हर हर गंगे करते हो, थोड़ा सा जल इधर की ओर भी बरसा दीजिए, मतलब कि वर्षा वृष्टि कर दीजिए और थोड़ी सी गर्मी से हमें राहत मिल जाए। अगर इतना नहीं कर सकती माते तो बस कुछ ऐसा करिए कि मौसम थोड़ा सा खुशनुमा हो जाए। भाई गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हीट स्ट्रोक की संभावनाएं क्या, हीट स्ट्रोक पड़ने भी लगा है और इसमें अपना और अपने अपनों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अगर आपको प्यास लग रहा है तो काम के चलते पानी को दरकिनार बिल्कुल मत करिए, वाटर बॉटल अपने साथ रखिए और खाली सादा पानी मत रखिए, क्योंकि ऐसा भी फील हो रहा है कि हम पानी पीते जा रहे हैं, हमारी प्यास नहीं बुझ रही, हमारा पेट भर जा रहा है। तो कुछ उसमें डाल के रखिए अलग से, जैसे कि नींबू पानी आपको आपके हेल्थ को जो सूट करे, पुदीना पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, या कुछ और जो आपको अच्छा लगता हो, जैसे कि सौंफ का पानी, अजवाइन का पानी, जीरा पानी, कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगे आपके हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से। तो वो चीज़ शरबत हो गया, किसी भी चीज़ का हो सकता है, दही का हो गया, तो ऐसी चीज़ों का आप सेवन करते रहें निरंतर, ताकि आपका सेहत सुरक्षित रहे। और सेहत सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है, आपके अपने सुरक्षित है, आपका कल सुरक्षित है और हम सब सुरक्षित हैं। फिलहाल इसके साथ में बढ़ते हैं आज के अपने कार्यक्रम के साथ में, और कार्यक्रम का सबसे पहला गीत जो मैं लेने वाली हूँ वो होगी हमारी आमिर कुमार जी की डिमांड। डिमांड में आया हुआ गाना है भैया, इनका कहना है कि सावन में लग गई है आग, लेकिन आग तो यहाँ भाई जेठ में लगी हुई है और शायद इसीलिए जेठ को जेठ बोला जाता है, क्योंकि जेठ से जिस तरह से बहुए मतलब उनकी भाइयों की मतलब धर्म पत्नियाँ दुपट्टा करती हैं, घूंघट करती हैं, उसी तरह से आज के मौसम में, इस जेठ के मौसम में हम सभी अपने सर पर गमछा, टोपी या चुन्नी या जो भी कुछ हमारे पास में अवेलेबल होता है कैरी करके चलते हैं, घूंघट करके चलते हैं, थोड़ा सा बच के चलते हैं। तो या बच के चलेगा, मौसम ही कुछ ऐसा है, और हो सकेगा तो ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहिएगा, घर से कम ही निकलिएगा। लेकिन हाँ, कल है गंगा दशहरा, ये भूलिएगा नहीं, और जहां जहां लंगर वाला, तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही जी हाँ, वो प्रोग्राम भी आप ले सकते हैं। और हाँ, बालाजी जो हमारे बहराइच रोड में मंदिर पड़ता है उस पे तो कल का वार्षिक उत्सव है, तो जो भी पहुंच सकते हो अपनी श्रद्धा अनुसार वक्त निकाल कर जरूर जाइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आज के पहले सॉन्ग की ओर, और ये सॉन्ग है हमारे अमित जी डिमांड का, और गाना वही वाला।
1: तो आग लगेगी

जी तो सावन में फिलहाल आग लगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जेठ की दोपहरी में घनघोर वाली आग लगी हुई है और उस पर चर्चा भी चल चुकी है हमारी चैट बॉक्स में। तो चलिए आज हम सबसे पहला ये काम करते हैं कि आप सभी के मैसेजेस को लेके फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सॉन्ग की ओर। तो हमारे पास में जो मैसेज आया वो हमारे नागेश्वर ढाकर जी रतलाम की गलियों से, भाई सुरेंद्र यादव जी, कमल नैन जी और सब सावन जी अपने नीले वाले लिंक के साथ हाजिर है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। और मुस्तफा जी भी आ गए सऊदी अरेबिया से, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। शुभ दोपहर आरजे आकांक्षा जी, ऐसा बोला गया सबलू जी के द्वारा, बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई बोरेवली से आकांक्षा मैम गुड आफ्टरनून, राधे राधे राधे राधे आपको भी कमल जी। और नागेश्वर धाकर जी, हम पूरे दिन पानी पीते रहते हैं तो पानी खत्म हो जाएगा। ओहो हो क्या बात भैया, कहाँ का वाटर सप्लाई है आपका, जरा हमें बताइए। हम आपके पास में स्पेशल जल निगम से कह करके आप तक हम पानी पहुंचवाना चाहेंगे। और इसके बाद में अगर नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो कैफ मोबाइल जी गोंडा से कह रहे हैं, भैया हम पंखा कूलर वाले हैं, थोड़ा बिक जाने तो वो तो आपका ज़रूर बिकेगा, लेकिन हम चाहते कि थोड़ा सा मौसम और अच्छा हो जाए। इतनी तपिश वाली जो धूप है, ये मतलब हीट स्ट्रोक क्यों पड़ा, पहले तो गर्मी पड़ती थी,

अब हीट स्ट्रोक होने लगा, सोचने वाली बात है, और इसका जिम्मेवार भी हम इंसान ही है, कोई और नहीं है। तो जाहिर सी बात है, सोचना पड़ेगा, एक वक्त आएगा कि हमको विवश होकर सोचना पड़ेगा। तो वो वक्त है, उससे बेहतर है कि पहले ही आप सोच लें, और हर महीने हो सके तो जहाँ तक एक ऐसा पेड़ जो छाया देने वाला हो ऐसी जगह पर लगाएं, भले आपके पास जगह ना हो, जहाँ पर वो पनपे, वो बढ़ सके। इसके अलावा दीपक जी हैं हथियागढ़ से, ओके मेरा हाथ ही आएगा एक दिन, लकड़ी का मुझे मालूम है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, गुड आफ्टरनून आपको भी दीपक जी। और जेठ महीना ऐसा ही है तो अच्छो अच्छो को घूंघट कर ही देता है। जो लड़कियां घर में कभी भी घूंघट नहीं करती, वो बाहर निकलती हो सबसे पहले घूंघट कर लेती है, ये बात सही है वैसे आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शन अंसारी जी जुड़ गई हैं, ओके सीतापुर से, थैंक यू सो मच। और मेरा निकनेम याद रखने के लिए भी, और मैंने पढ़ लिया उसके लिए धन्यवाद। और इसके बाद में अब हम बढ़ेंगे, सारे पेड़ पौधे हम काट रहे हैं तो क्या होगा, वही बात है ना, बिल्कुल सही कहा आपने, और आपका गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और डिमांड है हमारे पास में सऊदी अरेबिया से आई हुई, यानी कि मुस्तफा जी की। एंजॉय करिए, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ।

समय बस एक ही तमन्ना है कि एसी मिले ना मिले और कूलर मिले ना मिले, बट ये जो मौसम है उसमें थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए, मतलब हीट स्ट्रोक का जो प्रभाव है थोड़ा सा कम हो जाए, तापमान में थोड़ी सी गिरावट आ जाए, और ताकि थोड़ा सा ठंडा ठंडा फील कर सकें हम सभी, आप सभी। और दीपक जी का हाथियागढ़ से कहना है कि आज से नौतपा नक्षत्र लगा है। ज्योतिष के अनुसार सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब नक्षत्र लगता है। इस नक्षत्र का होना और गर्मी का होना प्रकृति के संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। नीना जी भी हमारे बीच में आ गई। नमस्कार जी, आप कैसी हैं जी? अपना हाल चाल दस से दीजिएगा जी हमारी चंगू जी। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई है शहनवाज जी की ओर से, जो हमें सुनते हैं कहाँ से? जी हाँ, अहमदाबाद से। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को और फिर आते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड के साथ।

हाँ जी, तो ये डिमांड थी हमारे प्यारे लिसनर सहनवाज जी की, और अभी हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि 3 से 4 के सफर की बारी है और 21 मिनट वैसे ही हमने बिता दिया है और खाली 2 से 3 मात्र अभी फरमाइशें हुई हैं। मेरे पास बहुत सारी फरमाइशें आई हैं, तो अगर आप एक बार कॉल करते तो प्लीज़ दोबारा कन्फर्मेशन के लिए कॉल मत किया करिए, मेरा 2 मिनट 1 मिनट आपसे बात करने में चला जाता है। प्लीज़ समझिए और अंडरस्टूड करिए इस प्रॉब्लम को। मेरी भी प्रॉब्लम होती है, आप लोगों की प्रॉब्लम होती है कि आपका गाना नहीं प्ले होता, मेरी प्रॉब्लम होती है कि मुझे आप लोगों का कॉल भी उठाना होता है और आपके गानों को भी प्ले करना होता है। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे प्यारे कमल नैन जी की ओर से आई हुई। चलिए सुनते हैं 3 से 4 के सफर में ये प्यारा सा नगमा, और अगर आपको भी कॉल करना है तो कॉल कर सकते हैं आप 6393316429 पर।

भाई कोई किसी को चाहे या ना चाहे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन हो। इसलिए कल हमने आप सभी से निवेदन भी कर लिया है कि गंगा माता से थोड़ी सी प्रार्थना कर लीजिएगा अपनी अपनी साइड से, हो सकता है थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है रईस साहब की रईसियत से निकल करके, और साथ ही साथ में हमारे सुखी राम जी की डिमांड। चलिए इस डिमांड को कंप्लीट करते हैं और फिर आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेकर के हम अपने प्यारे सबलू सावंत जी और सुरेंद्र यादव जी की, जो कि हैं गौरा चौकी से। फिर नेक्स्ट लिसनर कौन होंगे, अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहिए। लेकिन अगर आपके बारी अभी तक नहीं आई, मतलब आपने कॉल नहीं मिलाया, तो कॉल मिला लीजिए, फोन उठा लीजिए, और नंबर वही है 6393316429, यानी कि 6391 और 29।

क्या बात है भाई, नीला दुपट्टा पीला सूट जिसने भी पहन रखा होगा आज तो पक्का है कि बम फूटेगा इतनी गर्मी में और गुस्सा दिलाने वाली कुछ ऐसी पंक्तियां आई है। फिलहाल उम्मीद है कि आप लोगों की गर्लफ्रेंड्स नहीं होंगी या कोई समन स्पेशल नहीं होगा जो सुन रहा हो इस गाने को। चलिए फिलहाल रई साहब की रईसे से निकला हुआ ये गाना और साथ ही साथ में हमारे सुखी राम जी की ओर से आपने ये गाना एंजॉय किया और अब हम बढ़ेंगे अपने प्यारे बम्बई बोरे वाली वाले सबलू सावंत जी की डिमांड की ओर।

ये प्यारा सनंग में अभी आपने एंजॉय किया हमारे प्यारे लिसनर यानी कि मुंबई से सुनने वाले हमारे सभी सावंत जी की डिमांड पे। और हमारे साथ में कुछ और लिसनर जुड़ गए हैं, जैसे कि हमारे अब्दुल मुजीम साहब जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से। माना होगी तो वफा कौन करेगा, यूं ममता का हक अदा कौन करेगा, या खुदा सलामत रखना सदा सबकी माँ को, वरना हमारे जिंदगी की दुआ कौन करेगा। बहुत ही उम्दा लाइन्स थी, एक बार फिर से पढ़ूंगी मैं। माना होगी तो वफा कौन करेगा, यूं ममता का हक अदा कौन करेगा, या खुदा सलामत रखना सभी की माओं को, वरना हमारी जिंदगी की दुआ कौन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन प्यारी सी लाइनों के लिए अब्दुल मुजीम साहब। और इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज की अगर मैं बात कर रही तो आप सभी हैं, और पिंटू जी भी आ गए हैं, यूपीएससी लवर बालपुर से ही हमें सुनते हैं। गुड आफ्टरनून आपको भी पिंटू जी, और वाकई बहुत गर्मी है, और भाई नीना जी ने तो आइसक्रीम भी भेज दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट मैसेज की अगर बात करते हैं तो हमारे एक एमपी से प्यारे हमारे बहुत ही डिसेंट से लिसनर हैं एड्स कुमार साहब, एमपी रीवा से हाजिर हो चुके हैं। काफ़ी दिनों बाद आपकी उपस्थिति दर्ज हुई है, बहुत अच्छा लगा आपको देख करके, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, इमोशनल सॉन्ग ऐसा कहना है दीपक जी का हाथियागढ़ से। आप सभी ने भी काफ़ी रेटिंग की है, सभी का धन्यवाद देती हूँ। और मनी शर्मा जी भी आ गए हैं खुरासा गोंडा से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मनी जी। उम्मीद है कि आप भी कुशल मंगल के साथ होंगे। और ओके, ऐसा कहना है कि भैया नीला दुपट्टा पीला सूट इसलिए पहन रखा है क्योंकि काला दुपट्टा गीला हो गया पसीना पोंछते पोंछते। क्या बात है, ऐसी गर्मी आ गई है, तपेश वाली। वाकई एमपी और राजस्थान में कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आपकी आरजी एकदम नई वाली आई हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार साहब। कुछ भी, प्रमोद कुमार जी आ गए हैं लुधियाना से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभी हम बढ़ते हैं बजरंग बली की, हाँ जी, एक प्यारी सी भजन की ओर, जिसकी डिमांड की गई हमारे सुरेंद्र यादव जी के द्वारा गौरा चौकी से। फिर आएंगे हम निशा जी की डिमांड के साथ में, जो कि हमें सुनती हैं पटेल नगर गोंडा से।

हाँ जी, जय जय सीताराम। अभी आपने ये प्यारे से भजन का रसन पान किया है हमारी सुरेंद्र यादव जी की डिमांड पे, जो मैं सुनते हैं गौरा चौकी से। गौरा चौकी से सुनने वाले सभी लिसनर्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि आई हुई है डिमांड मेरे पास में पटेल नगर से निशा जी की। आइए एंजॉय करते हैं चिंटू जी के फेवरेट सॉन्ग को।

वैसे इजहार मोहब्बत तो आंखों से ही होती है और शुरुआत भी आंखों से ही होती है, पहली दफा दीदार जो होता है किसी का। फिलहाल बहुत प्यारा सा गाना है निशा जी की डिमांड पे और हमारे पास में दो मैसेज भी आया हुआ है। सुरेंद्र यादव जी का कहना है दिनांक 26/5/26 को हमारे गौरा चौकी में हनुमानगढ़ी मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन है, सभी श्रद्धालु उसमें आमंत्रित है और साथ ही साथ में पूरे ललक धाम में यानी के बालाजी जो मंदिर पड़ता है बहराइच रोड पे, वहां पे भी कल गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में वार्षिक उत्सव हो रहा है, आप सभी वहां भी सादर आमंत्रित है, जो जहां जा पाए जाइएगा जरूर।

दया दया दया दया रे, जल्दी जल्दी खाओ छोला पूरी भाई। अरे कल ऐसा वचन आप कह सकते हैं लाइन में लग के, अगर किसी को खिलाना हो तो लंगर का प्रसाद पर लाल के लिए। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और डिमांड है हमारे पास में सभी हज की ओर से, फिर रमेश कुमार जी होंगे, और उसके बाद होंगे हमारे मनी शर्मा जी, जिनका सॉन्ग आज डेडिकेशन में आया हुआ है प्रबल मिश्रा जी के लिए। आज पंडित जी ने कोई डिमांड नहीं की, लेकिन इनके भाई साहब ने इनके लिए एक डिमांड कर दी है। तो बने रहिए और एंजॉय करते रहिए अपने भेजे हुए सभी फरमाइशी सॉन्ग्स को। और अगर आपको भी कोई फरमाइशी ट्यून करवाना है, बेशक आप कॉल कर सकते हैं 6393316429 पर।

जन्म। भाई बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है और सभी हाजी की डिमांड हमेशा से आला रहती है। और जो मनी जी की डिमांड है उसको हम भाई अपने कुमार भाई साहब को यानी कि एमपी रीवा वाले कुमार जी को डेडिकेट करना चाहेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि बहुत दिनों बाद इनके दर्शन हुए हैं। फिलहाल आप लोगों की कॉल्स भी आ रही है, आप एंजॉय करिए इस सॉन्ग को। मैं जस्ट इस सॉन्ग के उस पार आके आपसे मिलती हूँ दोबारा से।

ना जाने है भाई, हम दीवाने हो गए हैं आप लोगों के चैटिंग्स के, और उसमें भी इतना बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया हमारे कुमार साहब ने। कहते हैं कल मेरा भी जन्मदिन था, मतलब है नहीं था, आप सभी लोग आमंत्रित हैं। गजब की बात है, क्या बात है। रामकृष्ण नंदन जी भी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं। भाई अलाहाबाद से अपना हालचाल जरूर बताइएगा, आप कैसे हैं जरूर मैं जानना चाहूंगी आपका हालचाल। और पिंटू जी सॉन्ग तो आपने भेज दिया लेकिन मैं ऐसे नहीं प्ले कर सकती, आपको रूल पता है, प्लीज कॉल कर लीजिए 6393316429 पर। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे प्यारे लिसनर रमेश जी की जो हमें सुनते हैं महाराष्ट्र से। चलिए इनकी डिमांड को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेके हम मनी जी की, जो की डेडिकेशन में आई हुई है प्रबल मिश्रा जी की। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक सॉन्ग, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली वाला सॉन्ग।

बात है, बहुत ही खूबसूरत सी डिमांड थी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में। रामकृष्ण नंदन जी ने अपना हाल चाल दे दिया है, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू अपना हाल चाल बताने के लिए। और प्यारे पिंटू जी, आपसे हम बस इतना ही कहना चाहेंगे जी कि जी आपको कॉल करना ही पड़ेगा जी, हाँ जी, और आपको कॉल मिलाने के बाद ही आपका गाना प्ले होगा। अब आपको शर्म आ रही होगी तो आप लज्जे लाज के छज्जे की तरह लुका के आप बात मतलब कर सकते हैं, बट मुझे लगता है जेठ निकल जाए तभी आप कॉल करिए, तब आप घूंघट के बाहर आ सकते हैं, इसलिए घूंघट की आड़ आपकी खत्म हो जाएगी। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे मनी शर्मा जी की ओर से आया हुआ है हमारे प्रबल जी के लिए, और हमने इसको डेडिकेशन में किया है हमारे कुमार साहब के लिए, यानी हमारे एमपी रीवा वाले भाई साहब को डेडिकेट करती हूँ मैं। एंजॉय करिए इस ट्रैक को, और इसके बाद आएंगे नेक्स्ट ट्रैक लेके हम खुशी जी का, जो हमें सुनती है महाराजगंज गोंडा से।

जी हाँ, और जो सॉन्ग खुशी जी का होगा वो बेहद रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत प्यारा सॉन्ग है, और अगर आप किसी भी मूड में हो उसको ट्यून कर दे तो आपका मूड एकदम से क्या ही बताऊँ, आप सुन के खुद ही अभी रेटिंग करने वाले, मुझे बखूबी पता है। उसके बाद होंगे हमारे निब्बर जी, फिर होंगे हमारे एहसान जी, और अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहिए। वक्त शेष मेरे पास में है केवल और केवल 18 मिनट, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा सॉन्ग्स को प्ले करूँ। एंजॉय करिए।

अब हम जो सॉन्ग प्ले करने वाले हैं वो हमारे पास में आई है खुशी जी की ओर से, महाराजगंज गोंडा से। और ये गाना हम अपनी प्यारी नीना जी को डेडिकेट करने वाले हैं, क्योंकि भाई उनकी ओर से कॉल आया था और उन्हें कहा अपनी पसंद का कोई भी गाना, तो इससे बेहतरीन तो कोई गाना हो ही नहीं सकता है। और जो भी हमारे फेवरेट फेवरेट फेवरेट वाले लोग हैं, यानी हमारे सभी लिसनर्स के नाम ये गाना, बहुत खूबसूरत सा रोमांटिक सॉन्ग है, एंजॉय करिए। रेटिंग खास चाहिए।

भाई जब से हमने किसी से मुलाकात की हमें व्हाइट रसगुल्ला इतना फेवरेट हो गया कि हर एक खाने के बाद में हम अब डेरी मिल्क छोड़ के व्हाइट रसगुल्ला खाने लगे हैं। गाना बहुत ही प्यारा है, आप सभी का फीडबैक भी मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। पिंटू जी की कॉल भी आ गई है, चलिए उठा ही लेते हैं, इन्होंने अपना लाज छोड़ के हमको कॉल मिलाया। तब तक आप एंजॉय करिए इस प्यारे से गीत को।

अपने दिल का क्या करे, बड़े ही कठोर होना पड़ना है हमें हर दिन। कोई ना कोई फरमाइश जरूर से छूट जाती है, लेकिन आज मैंने कोशिश की है कि मैं उन नगमों को लूं जो कई दिनों से रह जाती थी। खैर, आज हम बढ़ेंगे अब नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे प्यारे, जी हाँ, कौन से साहब हैं ये साहब हैं हमारे निब्बर जी। जी हाँ, रेलवे क्रॉसिंग से आइए, एंजॉय करते इस ट्रैक को। उसके बाद एहसान जी की डिमांड होगी, और फिर हम किसका सॉन्ग लेते हैं ये भी हम खुद ही सोच में पड़े हुए हैं। काफ़ी सारी डिमांड है, और वक्त केवल और केवल 12 मिनट।

0: की खिदमत।
1: हाँ जी, और निबर जी की डिमांड पे आपने अभी ये गाना सुना, और रीना शर्मा जी भी हमें सुन रही हैं, इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर रखा हुआ है रुड़की उत्तराखंड से। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि हमारे पास में है एहसान जी की। एहसान जी के सॉन्ग के बाद नेक्स्ट सॉन्ग हम किसका लेंगे वो हम आपको तभी बताने वाले हैं। फिलहाल ये गाना एंजॉय करिए।
2: नाज भी है

आकांक्षा की खिदमत में सलाम किया है हमारी मंगू जी ने, यानी कि नेहा जी ने बहराई से। आपको भी आदाब और खैर मद्दम। आपका सब कुछ चंगा सी जरूर दसिएगा। फिलहाल एंजॉय करिए इस प्यारे से गीत।

हाँ जी, और एहसान जी के इस प्यारे से नगमे के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने प्यारे लिसनर याने के ओके प्रेम मौर्या जी का भी आ गया मैसेज। ओके, थैंक यू सो मच आपका भी। और अब बढ़ते हैं मिश्रा ऑप्टिकल से अजय मिश्रा जी की डिमांड की ओर, और आपको भी गुड आफ्टरनून मिश्रा जी। व्हाट अ सॉन्ग भाई, इमरान हाशमी का कितना भी कोई भी कैसा भी गाना हो ना, सुनने में मजा देता है।

What a soulful song, you know, मजा ही आ गया सुन के इसको। और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। मुझे माफ करिएगा अजय जी, गाना बहुत प्यारा है, यकीन मानिए मैं खुद नहीं खुद को रोक पा रही, लेकिन वक्त की कमी के कारण मैं आगे बढ़ूंगी, दो तीन गाने और लेना चाहूंगी इसलिए। तो चलते हैं हथियागढ़ से आई हुई डिमांड की ओर, और उसके बाद नेक्स्ट डिमांड पिंटू जी और हमारे देवी प्रसाद जी की होगी, लेकिन इस गाने को मैं कंप्लीट करूंगी, अधूरा नहीं छोड़ सकती।

क्या बात है, आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट वाइड डिमांड के साथ में और फिर आते हैं बताते आज किन किन के गाने छूट गए, यानी हमारा माफीनामा जारी होगा इस गाने के बाद।

जी दोस्तों, तो आज जिन जिन की डिमांड रह जाएंगी वो हैं समरीन जी, और उसके बाद में हमारे रितेश जी जो हमें राधा कुंड से सुनते हैं, फिर होंगे हमारे नेक्स्ट लिसनर जिनका नाम होगा शादाब जी, और उसके बाद राजू सलमानी जी यानी हमारे रॉबिनहुड जी फ्रॉम आवाज विकास कॉलोनी गोंडा, राम नरेश तिवारी जी और क्षमा जी माफ करिएगा, और रीतलाल जी जो हमें सुनते हैं अलाहाबाद से, और इन सभी की डिमांड आज रह जाएगी। साथ ही साथ में अनुभव पांडे जी भी हैं जो हमें सुनते हैं गायत्रीपुरम गोंडा से। ये गाना आप सुन रहे हैं हमारे हथियागढ़ के लिसनर दीपक जी की डिमांड पे। उसके बाद आज की लास्ट डिमांड होगी हमारे पिंटू जी की बालपुर से और हमारे देवी प्रसाद जी की, दोनों का सेम सॉन्ग।

हाँ जी, बहुत ही फीलिंग फुल वाला सॉन्ग था, रोमांटिक सॉन्ग अभी आपने एंजॉय किया। और आज की लास्ट डिमांड के और आगे बढ़ते हैं और अब आपसे लेती है अलविदा आपकी आरजी आकांक्षा। कल फिर से मिलेंगे इसी शो में, इसी फरमाइशी कार्यक्रम के साथ में और आपकी जज्बातों के साथ में, आपके हालचाल के साथ में। बस इतना याद रखिएगा कि खाना पीना बिल्कुल मत छोड़िएगा क्योंकि हीट स्ट्रोक वाकई बहुत ज्यादा है और आपका होना हमारे लिए और आपके अपनों के लिए बेहद जरूरी। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन को सुंदर बनाती है, तो अपना ख्याल रखिएगा और इस सुंदरता को यूं ही बरकरार रखिएगा। टेक अ वंडरफुल केयर ऑफ योर्स। बाय बाय। हाँ जी, बाय बाय।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: अरे सुना?
6: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
3: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गॉडली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गॉडली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोड़ा शहर की धड़कन, आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके शाम के स्पेशल शो गोधुली में। आपको पता है कि जब भी हम गोधुली में आते हैं, गोंडा की एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी को साथ में लेकर के आते हैं। आज जो पर्सनालिटी मौजूद है, दरअसल उनका नाम आपने कई बार सुना होगा और शायद कभी कभी तो देखा भी होगा, लेकिन आज हम उनके बारे में बहुत ही अच्छे से जानने वाले हैं, यानी काफी बातचीत हमारी होने वाली है उनके रिगार्डिंग और उनके काम के रिगार्डिंग। दरअसल आज जो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद है, वो समाज के चौथे स्तंभ से आते हैं, यानी उसकी एक ईंट का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में आज मौजूद हैं मिस्टर दिवाकर प्रताप सिंह, रिपोर्टर एट दैनिक भास्कर। सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं हमारे इस स्पेशल शो में।
2: थैंक यू बॉस,
1: थैंक यू सो मच। और जैसा कि हमारे श्रोताओं को हमने बोल दिया है कि भाई आज हमारे बीच दैनिक भास्कर के रिपोर्टर दिवाकर प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सभी को अंदाजा इस बात का है कि रिपोर्टर्स जो होते हैं वो सवाल करते हैं। आज एक ऐसी सीट पे हमने बैठाया जहां पे आज मैं सवाल करूंगा और आप जवाब देंगे, और सबसे पहला सवाल मेरा आपके ही बारे में, चूंकि हमारे श्रोतागण आपके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जान जाए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा और परिवार के बारे में आप बताएं।
2: जी, मेरा नाम दिवाकर प्रताप सिंह है। बेसिकली मुझे लोग जानते हैं पूरे जिले में तो पत्रकारिता बूते ही जानते हैं
1: जी।
2: तो पहचान जो मिली यहीं से मिली, इसलिए पत्रकारिता को मैं बहुत बहुत दिल से दुआएं देता हूं, बहुत ऊपर रखता हूं, और उसकी समझ ले पूजा मैं करता हूं, करना भी चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है। तो मेरा यहाँ से करीब 28 किलोमीटर दूर उमरी बेगमगंज गांव है
1: जी,
2: वहीं मेरी पैदाइश है, और घर में हमारे पिताजी, माताजी, हमारी पत्नी और दो बच्चे, इतने लोग हैं। मम्मी हमारी स्वास्थ्य विभाग में जॉब करती थी, बीते 2021 में रिटायर हुई हैं। पापा भी स्वास्थ्य विभाग से ही जुड़े हुए थे, तो पूरा घर का जो एटमॉस्फेयर है वो स्वास्थ्य विभाग मेडिकल से ही जुड़ा रहा है। हम भी वहीं जाना चाहते थे, लेकिन अब किस्मत कर करके कहां कहां से यहां ले आई।
1: एग्जैक्टली। तो स्वास्थ्य विभाग में मम्मी और पापा है, कहीं सुबह आपको गुनगुना पानी पीने के लिए मजबूर तो नहीं होना पड़ता है?
2: नहीं, लेकिन सेहत को लेकर काफी वो
1: हिदायतें दी जाती
2: exactly.
1: तो मुझे पहले ही लग गया था कि भाई मम्मी और पापा एक तो वैसे ही हिदायतें देते हैं,
2: हाँ।
1: और स्पेशली जब स्वास्थ्य विभाग से हो तो हाथ साफ करते रहना है, टाइम से पूरी नींद लेना है, और खाने में क्या खाना है, स्पेशली ये चीजें बहुत होती हैं। चलिए, बहुत इंटरेस्ट आने वाला आपसे बातचीत करने में, चूंकि आप खुद एक रिपोर्टर हैं और आपने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिपोर्टिंग पे लगाया है, लेकिन उससे पहले चूंकि हम आते हैं आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, और उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया, फिर आपकी हायर एजुकेशन की तरफ हम जानना चाहेंगे।
2: जी, प्रारंभिक शिक्षा हमारी हुई थी तुलसीपुर से, जो कि अब बलरामपुर जिले में है, पहले गोंडा में ही हुआ करता था, गोंडा बहुत बड़ा जिला था
1: जी।
2: तो हमारी माताजी की पहली पोस्टिंग वहीं पे हुई थी, स्वास्थ्य विभाग में ही, तुलसीपुर में। तो मैं क्लास फर्स्ट से लेके हाई स्कूल तक वहीं से पढ़ा हुआ। वहां के बाद मम्मी ट्रांसफर होके गोंडा आ गई। तो पहले गोंडा, अब ये समझ लीजिए गोंडा का नाम कैसा था, कि पापा हमारे राजी नहीं थे कि मैं गोंडा रुकूं। हाई स्कूल मैं वहां से निकला पास आउट करके, वो भी उस टाइम की बात है, उस दौर में जब नकल अध्यादेश हुआ करता था, 98 की बात है।
1: ओके।
2: तो 98 में 28% रिजल्ट था पूरे ऑल ओवर उत्तर प्रदेश का।
1: माय गॉड।
2: और हमारे यहाँ हमारे बैच में 232 लड़के थे, उसमें से शायद 34 या 36, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन 40 के अंदर ही थे, इतने पास हुए थे, बाकी सब फेल
1: हो गए थे। ओके।
2: उसमें से 5 लड़के फर्स्ट क्लास थे, जिसमें एक नाम हमारा भी था, और अच्छा लगता है अब सोच के कि पहले और अब में बहुत फर्क। तो वहां से फिर पिताजी ने कहा कि इनको गोंडा नहीं रुकना है, तो इंटरमीडिएट में दाखिला उन्होंने कराया हमारा फैजाबाद ननिहाल में।
1: ओके।
2: तो ननिहाल में ही मौसी जी का जो गार्जियनशिप थी वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थी, अब मैं तो सोचता हूँ कि होनी भी चाहिए कभी कभी। तो वहाँ से इंटरमीडिएट किया हमने, फिर वहाँ इंटरमीडिएट करके फिर उन्होंने फैजाबाद नहीं रोका पापा ने, क्योंकि फैजाबाद में एक ही डिग्री कॉलेज हुआ करता था उस टाइम पे, काम साकेत,
1: साकेत राइट,
2: जो बदनाम हुआ करता था पॉलिटिक्स के लिए। तो वहां से उठा हटा के उन्होंने कहा कि ये पढ़ेंगे सुल्तानपुर के एनआई में, जहाँ का वो उसमें मशहूर था अपनी अनुशासनशीलता के लिए, डिसिप्लिन वहाँ का बहुत अच्छा था।
1: ओके,
2: वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं होती थी। तो वहाँ पे दाखिला मिला, एंट्रेंस दिया हमने, बीएससी में दाखिला मिला। तो जेडबीसी मेरा ग्रुप था, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, लास्ट ईयर बॉटनी केमिस्ट्री से हमने फाइनल किया, बीएससी पास आउट किया। उसके बाद एक साल का थोड़ा टीएसडी था मेरे साथ, फिर आगे किस्मत चली, पीजी हमने बनारस से किया एमएससी में, वो एनवायरमेंटल साइंस से था।
1: ओके, तो चूंकि हम आपसे इसी बात के दौरान एक बात और जहन में आ रही है, क्योंकि कई बच्चे ऐसा होता है जो खुद ही चूज कर लेते हैं कि उनको करना क्या है, और ज्यादातर ऐसा भी देखा जाता है कि जो पेरेंट्स गाइड करते हैं उस अकॉर्डिंग वो करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका कोई अपना एम्बिशन था और पिताजी का उसमें लेकर के उनका क्या मानना था।
2: ये बहुत अच्छी चीज आपने कही कि जैसे आप, हमने आपको बताया कि घर का पूरा माहौल स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा था।
1: Exactly.
2: तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अपने आप में हो ही जाता है
1: जी।
2: खुद भी आप देखते होंगे। तो मेरा भी मन था कि जैसे सब लोग अगर मेडिकल फील्ड में हैं तो हम भी उसी में जाएं, डॉक्टर बनने का मन था। तो इंटरमीडिएट के बाद माम ने पापा से कहा कि हमको एक साल दे दीजिए, हमको दे दीजिए, हम तैयारी करेंगे। पापा भी वहाँ थोड़ा सा पहले का बैकग्राउंड था, क्योंकि मैं पहला बच्चा था, आप ये सबसे बड़ी चीज है, मैं अपने घर में पहला बच्चा था जो ग्रेजुएशन कर रहा था।
1: ओके,
2: ये सन 2000 की बात है। मैं अपने घर में पहला बच्चा था, जबकि हमारे घर में बहुत पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन सब इंटरमीडिएट के बाद छोड़ देते थे।
1: ओके, इवन
2: पापा हमारे भी, वो भी इंटरमीडिएट तक ही पढ़े थे। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। ग्रेजुएशन उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी
1: जी,
2: और बीएससी करना है। तो खैर साइंटिस्ट साइंस से ग्रुप से थे, तो बीएससी में हमारा खुद का इंटरेस्ट था, तो उसके चलते मैं बीएससी में चला गया। लेकिन हमारा मन था कि हम पहले मेडिकल की तैयारी करें, एक साल हम दें, मौका दें, तैयारी करें, उसके बाद फिर पढ़ते हुए फिर कंपटीशन में बैठेंगे। लेकिन मौका चूक गया, थोड़ी सी वो टीस अभी है।
1: वो टीस आज भी बाकी है थोड़ा सा। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपने बताया, चूंकि हम भी मानते हैं जिस तरह के एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं वैसे ही आप बनने की सोचते हैं, घर में स्वास्थ्य विभाग में मम्मी पापा दोनों लोग, तो कहीं ना कहीं माहौल होता है। और मेरे ख्याल से उस वक्त सीपीएमटी हुआ करता रहा
2: जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीपीएमटी होता था, एएफएमसी होता था, और आपका पीएमटी होता था
1: जी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपने बताया कि उसके बाद आपने ग्रेजुएशन अपना मुकम्मल किया, और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर क्या इरादा था, क्योंकि आपको आना तो था मेडिकल सेक्टर में बट मौका नहीं मिल पाया, देन फिर आपके जहन में क्या आया कि आपको क्या करना चाहिए।
2: ग्रेजुएशन करने के बाद, क्योंकि हमारा ग्रुप था जो फाइनल हमने किया था बीएससी, तो बॉटनी केमिस्ट्री से
1: जी,
2: तो फिर कहा कि अब हमने सोचा कि अब थोड़ी सी इससे ही इसी में आगे बढ़ते हैं, तो मेडिकल में नहीं जा पाए तो रिसर्च में चलते हैं।
1: क्या बात है मिलती जुलती फील्ड।
2: तो फिर बायोकेमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी कैंपस में हमने एंट्रेंस डाला, 26 सीटें थी
1: जी
2: उस टाइम पे, 21वीं रैंक हमारी थी एंट्रेंस में, 7 या 8 हजार बच्चों ने एग्जाम दिया था उसके, और साथ में ही हमने कहा क्योंकि हाँ ये इस, मैं भी इस पे बाद में आऊंगा कि एक ऑप्शन हमने लेके चला था बाद में कि अगर नहीं यहाँ होता है एमएससी में तो हमने यूपीएम कैट, उस समय होता था यूपीएम कैट से एमबीए होता था।
1: ओके,
2: कि अगर यहाँ नहीं सिलेक्शन होता है तो एमबीए करेंगे,
1: बैकअप प्लान
2: उस समय एमबीए का बहुत ज्यादा क्रेज, तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से या क्या कहें, किस्मत को नहीं मंजूर था। तो एमएससी में भी एंट्रेंस में आ गया हमारा, क्लियरेंस आ गई, यूपीएम कैट में भी आ गया।
1: क्या बात है,
2: काउंसलिंग लेटर दोनों आ गया। उसी दौरान हमारे यहाँ, मतलब हमारे एक दोस्त थे, उनके भाई की शादी थी
1: जी,
2: तो वहाँ हम लोग गए थे, काफी एंजॉय किया। तो दोस्तों की शादी में नाचना गाना होता है।
1: Exactly.
2: तो नाचते गाते तो वहाँ से आए तब तक ठीक थे, लेटे रूम पे वहीं सुल्तानपुर में, शाम को उठे तो कमर में बहुत ज्यादा दर्द था, पेन किलर लिया, फिर वो सुबह फिर दर्द फिर लिया, करते करते ये 2-3 दिन गुजर गए। तो घर पे फोन करके पापा को बताया, तो वहाँ भी डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर वो डायग्नोस नहीं कर पाए। तो फैजाबाद फिर नजदीक था, फैजाबाद भी दिखाया, यहाँ अपने यहाँ 2-3 डॉक्टर अच्छे थे लेकिन डायग्नोसिस सही नहीं हो पाई।
1: ओके,
2: तो ठीक उसी टाइम पे उसी साल एक डॉक्टर यहाँ, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा जिंदगी भर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अपने रिटायर हुए थे शायद उस साल या उसके एक साल पहले, डॉक्टर सी एम आर सिंह चौधरी।
1: ओके,
2: ऑर्थोपेडिक्स थे, वो लखनऊ से मंगलवार और शुक्रवार आते थे। तो ऐसे ही एक ने बताया, मेडिकल स्टोर वाले ने, जहां से दवा मिल रहा था। तो मैं दर्द से इतनी तकलीफ में करा रहा था कि मैं परेशान था, यहाँ तक कि कभी ख्याल था कि मेरा होगा क्या। तो उसने बताया, तो हम लोग, पापा को पता चला तो पापा ने बताया हम क्या एक बार उनको भी दिखा लेते हैं। तो उन्होंने हमको देखा, पूरा 10 से 15 मिनट पूछताछ की, तो उनके दिमाग में कुछ आया, तो उन्होंने खाली एक एक्सरे कराया, एक ब्लड टेस्ट कराया। 2 घंटे के बाद पूरी डायग्नोसिस उनकी आ गई। तो उन्होंने कहा पापा से कि ऐसा है कि बेटे को थोड़ा सा अब आपको रेस्ट कराना पड़ेगा। पूछे क्यों? क्योंकि बेटे की लंबर रीजन में, बैक में, इसको टीबी जनरेट हो गई, ट्यूबरक्लोसिस। L4 L5। तो उन्होंने कहा कि फिर ये कल आप शुक्रवार को, अगले मंगलवार को दिखाया, शुक्रवार को आइए, हम इनको प्लास्टर बांधेंगे। तो शुक्रवार को नहा वहा के गए। मतलब इवन आप ये समझ लीजिए, रिक्शे पे अगर मैं बैठता था, रिक्शा अगर कहीं छोटे से गड्ढे से भी गुजरता था तो वो दर्द सहा नहीं जाता,
1: सहा नहीं जाता।
2: तो वहां फिर उन्होंने प्लास्टर किया, 4 महीने में 2 बार, एक बार चढ़ाया 2 महीने के लिए, फिर 2 महीने के लिए, 4 महीने प्लास्टर रहा। लेकिन उन्हीं की उस डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से 4 महीने बाद प्लास्टर खुला तो मैं बिल्कुल फिट था।
1: क्या बात है।
2: उस टाइम पे जब मैं बीमार था, मेरा वजन 54 हुआ करता था इसी हाइट पे, और जब प्लास्टर खुला तब 76 था। हाई प्रोटीन डाइट होती थी, क्योंकि उन दवाओं को हजम करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट ना खाओ तो दवाएं बहुत रिएक्शन करती थी।
1: एग्जैक्टली।
2: तो वो फिर जब इन्फेक्शन खत्म हो रहा था तो शरीर में भी बॉडी में भी लग रहा था, तो फिर फिट हो गए धीरे धीरे। लेकिन फिर वो उस दौरान, उस इलाज के दौरान जो खोया हमने, वो शायद जिंदगी फिर दोबारा नहीं दे सकती, क्योंकि वो 2 अपॉर्चुनिटी में से कोई एक भी अगर मुझे मिल जाती तो शायद मैं यहाँ आपके सामने नहीं बैठा होता। फिर उस दौरान डिप्रेशन में भी रहा, मैं किसी को बोल नहीं पाता था क्योंकि पापा से डरता था, पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो थोड़ी बहुत अगर बात हो पाती थी ज्यादा तो मम्मी से ही हो पाती थी, पापा से खुल के बोल नहीं पाते थे। हाँ, ये थोड़ी तकलीफ है कि अगर उस टाइम पे थोड़ा सा सपोर्ट मिला होता तो और अच्छा होता।
1: मतलब ये कहीं ना कहीं लगा कि शायद कुछ गैप भी रहा है, क्योंकि अगर हम पहले की बात करें तो बहुत कुछ बेहतर तो था हमारी जनरेशन में, लेकिन एक जो गैप होता था वो डर शायद थोड़ा सा ज्यादा हुआ करता था,
2: ज्यादा हुआ
1: और अपनी बातों को कह नहीं पाते
2: थे।
1: एग्जैक्टली। और आज वो चीज हमें अच्छी लगती है कि जो पेरेंट्स है वो कहीं ना कहीं बहुत फ्रेंडली हो गए।
2: हाँ।
1: इवन आप खुद अपने बच्चों के लिए हो गए।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: बेशक। तो ये कहीं ना कहीं आपने जिस तरह बताया कि एकदम पीक टाइम पे आपके साथ इस तरह का इंसिडेंट होना, वो 4 महीने का लॉस, वो सिर्फ 4 महीने का लॉस नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा लॉस,
2: बहुत बड़ा लॉस था
1: रहा आपके साथ में। लेकिन उसके बावजूद आपने जो अपॉर्चुनिटी मिस की उससे अलग फिर अलग काम किया। तो मैं अगर आपकी लाइफ को देखूं तो काफी राइट एंड लेफ्ट करके चल रही है अभी तक की जो जर्नी की बात हुई है, और मुझे ऐसा लगता है एक रियल लाइफ शायद ऐसी होती है, क्योंकि हम जो प्रिडिक्ट करते हैं वो हो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल होती है लाइफ, और वो चीज आपकी कहीं ना कहीं बातचीत में नजर आ रहा है। क्योंकि अब छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल एड ब्रेक का वक्त हो गया है, आने के बाद हम आपकी जर्नी के बारे में पूछेंगे, पत्रकारिता के बारे में, कि सब कुछ करने के बाद एट द एंड आप एक पत्रकार कैसे बने, कहां से सफर शुरू किया, सबसे पहले कौन सा काम किया पत्रकारिता में, और पत्रकारिता को ही क्यों चुना, ये सारी बातें करेंगे ब्रेक के उस पार। तो अपने लिसनर से कहेंगे कि सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: डिलीशियस
8: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
7: और क्या क्या है खास?
8: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
7: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर।
9: खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवर नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
1: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान। आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। और आज हमारे साथ में दैनिक भास्कर के रिपोर्टर मिस्टर दिवाकर प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। एक बार वापस से हम आपका वेलकम करते हैं।
2: थैंक यू।
1: और चूंकि हम जर्नी की बात आपकी कर रहे थे और जैसा कि अभी तक आपने बताया, मैं बहुत सारी चीजें अभी शायद बोल पा रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ से रिलेट कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई कोई पार्ट में मैं अपने आप को ही देख रहा था आपकी लाइफ में भी। और ये बहुत सच्ची बात होती है कि जब कोई अपनी लाइफ के बारे में बताया और आप खुद को वहाँ विजुलाइज करे, ये बहुत रियल होता है, बहुत जेन्युइन होता है। थैंक यू सो मच टू यू। तो अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि ये सारी पढ़ाई हो गई, अपॉर्चुनिटी आपकी आई, आप क्रैप नहीं कर पाए, कुछ आपके साथ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने, लेकिन एट द एंड आपने कहीं ना कहीं तो शुरुआत की होगी, जॉब की होगी। तो पहली शुरुआत आपकी जॉब करने की, अर्निंग करने की कौन सी थी, कहां से थी?
2: पहली शुरुआत मेरी जॉब की हुई थी बनारस से, जिसमें मैं एक फार्मा कंपनी में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुआ था। अब इसको लक कहें या कुछ और, पहली बार इंटरव्यू मैंने फेस किया जिंदगी में। और कंपनी का सेल्स मैनेजर बैठा हुआ था, मेरे साथ कम से कम 20 लड़के थे, मैं पांचवें या छठे नंबर पे गया था। उसके बाद उसने इंटरव्यू रोक दिया।
1: ओके।
2: कहा कि मुझे और लड़कों को देखना ही नहीं है। तो इलाहाबाद और बनारस का हेडक्वार्टर खाली था। बेटा कहाँ जाओगे? तो बनारस तो इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन मैंने इलाहाबाद का नाम बहुत सुना था। तमन्ना भी थी इलाहाबाद में रह के पढ़ने की, लेकिन वो शायद इसमें तो नहीं लिखी थी। मैं सर इलाहाबाद कर दीजिए। कह नहीं नहीं मैं तुमको बनारस भेजूंगा। मैं कहियो ये क्यों सर? कह नहीं वो अच्छी जगह है, तुम्हारी जो एनर्जी है उसके लिए वो अच्छी जगह है। क्या ठीक है, कोई काम करना ही है।
1: Exactly.
2: 100 किलोमीटर इधर 100 किलोमीटर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बनारस पहुंचे, काम किया। वो उस कंपनी का बहुत डल हेडक्वार्टर हुआ करता था, उसको 2 महीने के अंदर हमने निकाल के यूपी में टॉप पे लाया था।
1: ओके।
2: और एक क्वार्टर बीता तो उसके बाद पूरे यूपी में सेल्स में टॉप था मैं।
1: वाओ, क्या बात है।
2: हमारे साथ एक लड़का और था, तो सबकी सेल्स काउंटर टॉप पे हमारी सेल्स थी। तो मजा आया वहां से, काम करने का मजा तो आया, लेकिन वही पीछे की एक टीस बनी रही। वो चिंता नहीं छोड़ती थी। उसी के चलते फिर हमने एक साल बाद फिर MSc ज्वाइन किया।
1: ओके।
2: PG कंप्लीट किया, लेकिन फिर वो एक बार जब कमाना शुरू कर देता है आदमी, जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है, आगे सपने देखना शुरू कर देता है, तो पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल होता है।
1: एग्जैक्टली।
2: और मुड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप मुड़ोगे तो आपको केवल रिग्रेट फीलिंग होगी, रिग्रेट की फीलिंग आएगी, को आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा।
1: एग्जैक्टली।
2: और आदमी को खुद मोटिवेट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कहीं रील देख के, किसी का वो स्टेज शो देख के, इससे आप मोटिवेट नहीं होगे। आप जब तक जिंदगी में खुद मोटिवेट नहीं होगे, खुद के अंदर जज्बा नहीं रखोगे, तब तक नहीं होगे। खुद कभी नहीं हारना चाहिए। आदमी उसी दिन हारता है जब खुद शीशे के सामने खुद से हार जाता है।
1: एग्जैक्टली। और इसीलिए शायद कहते हैं भी हैं कि खुद को जीत लिया तो सबसे बड़ी बात,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: खुद से हार गए तो फिर कोई जीत मायने नहीं रखती है। ये बिल्कुल सच बात है। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि आपने उसके बाद जो है वो MRship के लिए अप्लाई किया, आपने उसमें परफॉर्मेंस भी दी, अच्छा किया। चूंकि किसी भी काम में टॉप को ले जाना आसान नहीं होता, लोग बहुत बहुत साल लगा देते हैं, नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है कि आपने कुछ स्पेसिफिक कोई चीज फॉलो की थी, या बचपन से आपके अंदर कोई ऐसी प्रतिभा है कि आप चीजों को जिसको भी करते हैं उस पे कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, है क्या? एक्चुअल में मैं जानना चाहता हूँ उसके पीछे की वजह क्या है।
2: होता क्या है कि जैसे हमारे अंदर उस काम को करने के लिए एक्साइटमेंट कितना है,
1: एग्जैक्टली,
2: वो ज्यादा इम्पैक्ट देता है। तो जब मैं गया तो सबसे बड़ा अंदर से एक वो फीलिंग आ रही थी, नहीं यार मैं तो नौकरी करने लगा। है नहीं कि नौकरी करने लगा, वो अंदर की फीलिंग जो आई पहली बार कि नौकरी करने लगा, पहली सैलरी जब आई हमारे अकाउंट में तो उसकी फीलिंग अलग थी। और उस बार जब पहली सैलरी मेरी आई थी, मैंने पहला काम यही किया था, एक साड़ी मम्मी के लिए मैंने खरीदी थी बनारस से, वो मम्मी आज भी रखी हुई है,
1: पहली सैलरी की। हाँ। साड़ी, क्या बात है।
2: और उसके वही वो कहना कि आपको आप खुद मोटिवेट होना पड़ेगा, कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे अजनबी शहर था, अजनबी लोग थे।
1: Exactly.
2: कोई समझने वाला था नहीं, आपको खुद सब कुछ करना है, आपको कैसे सुबह तैयार होना है, शाम को कैसे जाना है, कैसे आना है, सब कुछ मैनेज करना है खुद, और खुद को अपने लिए तैयार रखना है।
1: एग्जैक्टली। क्योंकि मुझे भी ये अंदाजा इस बात का है कि जब आप

0: ही कमजोर लोगों के पक्ष में बोलने का काम। तो वहां से यहाँ का सफर, मतलब ये क्या जहन में आया, किसी चीज ने आपको इंस्पायर किया, किसी ने आपको कहा कि आप पत्रकारिता में आइए, या कोई ऐसी घटना जिसके बाद आप इस डायरेक्शन में आ गए?
1: वहाँ बनास में ही जब मैं जॉब किया करता था उसी दौरान हमारे एक मित्र थे, तो वहां से एक सांध दैनिक मतलब इवनिंग न्यूज़पेपर निकलता है काशीवार्ता
0: जी,
1: तो उसमें वो थे, तो वहाँ एक उसमें लेख रहता है मेडिकल्स, तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आपको जानकारी काफी है तो क्या आप लिखना पसंद करेंगे? हमने क्या, तो उन्होंने कहा कि चिकित्सीय कॉलम आता है, तो हमने देखा तो इंटरेस्ट आया मुझको तो लिखने लगा। तो हर हफ्ते में एक दिन एक डॉक्टर से बातचीत करके, सारे डॉक्टर में कॉन्टेक्ट के थे, बैठ जाता था उनसे, ये नहीं बताता था कि ये मैं आपको लिखूंगा, आप पढ़ेंगे, छपेगा, कुछ नहीं, मैं केवल उनसे बातचीत करता था आधा घंटे बैठ के, और उसी पे अपनी पूरी इंटरव्यू उनकी लिख के दे देता था, छपता था, तो काफी अच्छा लगता था। तो वहां से धीरे धीरे लिखने का जो जिज्ञासा थी वो जगी और उसको मजा आया फिर करने में। और घर वहां से लौटने का भी, मम्मी की तबीयत अचानक फिर खराब रहने लगी, बिगड़ने लगी, उनकी चिंता उनको ज्यादा बढ़ाने लगी, अकेला बच्चा था घर का। तो लास्टली 2008 में मैं वहां से घर आ गया। तो घर आ गया तो अब बीच में हमने 2006 में एक कंपनी में भरी मीटिंग में कुछ सेल्स डाउन हुई थी, कुछ 1.5 साल के अंदर मैंने प्रमोशन भी ले लिया था, ये सबसे बड़ी बात थी।
0: ओके
1: 2004 में ज्वाइन किया, 2005 के जुलाई के आसपास मैंने प्रमोशन भी ले लिया था। तो वहाँ पे एक बच्चे को, एक जो हमारा एमआर था उसके चलते सेल्स डाउन हुई थी, तो आगरा में मीटिंग थी, मैंने थोड़ी सी कड़वी जबान बोल दी, तो वही टेबल पे मैंने इस्तीफा फेंक दिया, चला आया था।
0: ओके
1: फिर वहीं पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया मेडिकल में।
0: वहीं बिजनेस भी स्टार्ट किया, क्या बात है।
1: फार्मा कंपनी स्टेबल की रजिस्ट्रेशन कराया, फार्मा कंपनी का 2 प्रोडक्ट रजिस्टर्ड कराए, और 2 हेडक्वार्टर भी शुरू किए आजमगढ़ और बनारस, लड़के भी अपॉइंट किए। फिर धीरे धीरे करते 2 साल और बीते, कमाई भी ठीक ही ठाक हो रही थी उस दौरान भी। अपनी एक गाड़ी, एक डेवो सीएलओ आती थी पहले, वो खरीद ली थी, सेकंड हैंड थी लेकिन अपनी थी। एक जमीन भी खरीद ली थी, लेकिन फिर वाइंड अप किया तो इधर उधर करते करते वहां उसको हटा दिया। और जब वाइंड अप करते हैं आप, कभी भी कोई कंपनी वाइंड अप होती है या कोई आप सेटअप वाइंड अप करते हैं तो आपका नुकसान ज्यादा होता है।
0: एग्जैक्टली
1: क्योंकि लोगों को पता चल जाता है ये बंद कर रहे हैं तो
0: गर्ज है आपकी,
1: वो पैसा दबा देंगे आप। तो नुकसान हुआ, लेकिन अब मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता थी तो आ गए। अब यहाँ आए तो दिमाग में कीड़ा मेडिकल का ही था, तो यहाँ आए फिर हमने कहा कि अब इसको पूरा कैसे किया जाए, जो अंदर की खुन्नस लगी हुई है उसको पूरा कैसे किया जाए। तो यहाँ फिर आके हमने फिजियोथेरेपी शुरू किया।
0: ओके
1: डिप्लोमा किया फिजियोथेरेपी में। तो फिर 2009 आते थे फिर शादी हो गई, तो मम्मी की मेन टेंशन वही थी कि लड़का बाहर है बिगड़ ना जाए। तो 2009 में फिर करके जल्द शादी हो गई, 2010 में फिजियोथेरेपी कंप्लीट हो गई, फिर हमने क्लिनिक स्टार्ट कर दी।
0: ओके
1: अपने गाँव पे ही
0: एज फिजियोथेरेपिस्ट।
1: हाँ गाँव पे ही, गांव पे क्लिनिक स्टार्ट कर दी। फिर 2011 में ये हुआ, तब फिर जॉब की सीकिंग शुरू हो गई कि जॉब कैसे लगे। तो 2011 में फिर हमने बीएड भी किया 2011-12 में सेशन में, लेकिन फिर उस टाइम थोड़ा सा वो था कि 1 साल में लेट हो गया, नहीं तो जॉब लग जाती बीएड में प्राइमरी टीचर में। फिर यहाँ भी इंटरेस्टिंग है मीडिया में आने का, गोंडा में हमारी एक छोटी सी हमारे घर पे प्रॉब्लम थी, उसको वहाँ लोकल रिपोर्टर जो थे वहाँ पे हमने 10-15 दिन दिया कि भैया इसको छाप दीजिए। रोज में देखता अखबार नहीं छपी। बस वहीं से दिमाग घूमा, पता किया हमने, तो पता चला कि हिंदुस्तान में उस पर्टिकुलर हेड उमरी बेगम में हेड हुआ करता था, अभी भी है, हिंदुस्तान में रिपोर्टर की जगह खाली है, यहाँ कोई नहीं। अब कोइंसिडेंट देखिए, मैं आया गोंडा, यहाँ पे हिंदुस्तान में जो ब्यूरो चीफ थे वो बनारस के निकले, मिस्टर आशुतोष पांडे जी, बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने फिर जानकारी ली, मैं ये बताया कि मैं बनारस से आया हूँ, तो उनको इंटरेस्ट आ गया, तुरंत बिठाया कि अब एक पन्ना लिख के दो हमको, लिख के दिया। तो उन्होंने पूछा हाँ इससे पहले कहीं लिखा है, तो उन्होंने बताया कि आपके वहाँ काशी वार्ता में। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने कह दिया अब कल से तुम आपसे खबर भेजो वहाँ पे। शुरू किया खबर, जब शुरू हो गई छपने भी लगी, और जो खबर मैं लिख के आया था एक प्रैक्टिकल के तौर पे वो सुबह छपी मिली हमको, तो अच्छा लगा कि जो काम मैं 20 दिन से कर रहा था दूसरे को कह रहा था वो मैंने खुद किया और दूसरे दिन आ गया, तब इंटरेस्ट आया। लेकिन पत्रकारिता को लेकर लोगों के समाज में अभी भी जो है जो छोटे शहरों में या छोटी जगहों पे बहुत ज्यादा
0: भ्रांतियां हैं,
1: अच्छी नजरों से नहीं देखते
0: जी।

0: पापा ने बहुत हम तो डांट पिलाई, ये क्या है अब पत्रकार बनोगे, ये करोगे वो करोगे। तो पहले गांव पे थे, हमको कोई पहचानता नहीं था क्योंकि बचपन से बाहर रहते थे, तो ये होता था ये उनके लड़के हैं, उनके पोते हैं, ऐसे लोग जानते। तो जब लिखना शुरू किया, दो चार दिन बीते, दो हफ्ते बीते, फिर एक एक खबरें निकलने लगी अच्छी अच्छी, तो ये लिख कौन रहा है, तो पता चला। फिर उसी दौरान हमने मई जून में शुरू किया था, जुलाई में बाढ़ आ गई। तो हमारा जो इलाका है उधर का, वो बाढ़ से बहुत प्रभावित होता है, तरबगंज और करनैलगंज
1: जी।
0: तो हमारे गांव से करीब 8 किलोमीटर दूर पे घाघरा है, तो बाल वहाँ बहुत बांधा कटने की और ये सब बहुत होती दिक्कतें। तो उस दौरान हमने वो जो शौक था वो काफी चरम पे था, तो क्लिनिक भी करते थे, ये भी करते थे। अब आप सोच ली, शाम को मैं 5 बजे निकलता था बाढ़ पे जाके, बाढ़ के क्षेत्र में जाता था बाइक से, वहाँ बंधे पे पूरी फोटोज वगैरह जो हमको समझ में आती थी लेता था, और वहाँ से सीधी बाइक स्टार्ट होती थी 40 किलोमीटर दूर से, और यहाँ आता था, फोटो देता था, खबर देता था, और फिर पहुंच जाता था वापस घर 7:30 तक। तो अगस्त में लगातार 10 दिन हमारी खबर फोटो फ्रंट पेज पे आ दी, तो वो बड़ा मजा आया देख के। अगर खबर आई तो दिवाकर सिंह, खबर नहीं आई तो केवल फोटो है तो उसमें दिवाकर सिंह का नाम लगा हुआ है, तो वो देख के मजा आया। और उसी दौरान एक खबर हमारी फ्लैग छपी थी, जो जिसको आप लोग अखबार में ऊपर की लीड होती है फ्रंट पेज की सबसे ऊपर,
1: जी जी,
0: उसको फ्लैग बोलते हैं।
1: ओके,
0: वो फ्लैग की खबर छपी थी, एक स्कूल था वैसे बाढ़ के दौरान, कवरेज के दौरान हमको देखा छप्पड़ में चल रहा था बाढ़ बंधे के किनारे। तो उसने ऐसे पूछा बच्चों से, तो कहा प्राइमरी स्कूल है, हमने कहा प्राइमरी स्कूल छप्पड़ में चल रहा है, तो एक लड़का वहाँ पढ़ाता मिला, हम कहे आप कैसे, कहे नहीं वो हमको मास्टर जी ने रखा है यहाँ पे, महीने का 2000 देते हैं, हम यहाँ पढ़ाते हैं। हम कहे मास्टर जी कहाँ है, कहे वो तो फैजाबाद रहते हैं। तो हम कहे ये स्कूल कहाँ का है, कहे ये कोयलावर माझा जो नदी के उस पार, वो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का था।
1: ओके,
0: और वो स्कूल चल रहा था गोंडा में। अब मैं आया, खबर लिखा, प्रभाई जी को बताया, यार खबर तो अच्छी है, खबर उन्होंने पढ़ी रखी, फोटो को सेव कर ली, 2-3 दिन खबर नहीं लगी, हमके लगता है हमसे कुछ गलती हो गई। तो हमने कहा सर क्या हुआ, खबर में कुछ कमी थी क्या, कहे नहीं बेटा कमी नहीं है, काम हो रहा, संतुष्ट नहीं हुआ मैं। लेकिन फिर वही खबर जब अगले दिन हमने फ्लैग छपी देखी, हेडिंग उसकी थी फैजाबाद का विद्यालय चल रहा गोंडा के तटबंध पर, यही हेडिंग थी, इसी हेडिंग से खबर ऑल ओवर इंडिया छपी, मतलब हिंदुस्तान के जितने एडिशन होते थे और हिंदुस्तान टाइम्स जो इंग्लिश वर्जन है इसका, सब में छपी थी वो खबर।
1: क्या बात है।
0: अब सुबह हमारे फोन घनघनाने लगे मोबाइल, कहीं सहारा समय वाले का फोन आ रहा है, कहीं GTV का फोन आ रहा है, कहीं आज तक का फोन आ रहा है, भैया क्या छाप दिया है, क्या छाप दिया है। और जो टीचर वहाँ, मुझे नहीं पता था, 3 टीचर वहाँ पोस्टेड थे स्कूल में, तीनों नहीं आते थे, वो बच्चा रखा था उसको, वो पढ़ाता था, 10th या 11th में था बच्चा, वो पढ़ाता था। अब उनमें से एक टीचर था जो ठाकुर था, उसने रिलेशन निकाल के हमारे पास फोन किया। शुरुआती दौर का आदमी, मुझे क्या पता, भैया हमको तो नहीं पता, हमें तो खबर दिखी, हमने लिख दिया, पता चला 2 घंटे बाद कि वो तीनों के तीनों सस्पेंड, BS से भी सस्पेंड।
1: ओके,
0: जांच बैठ गई, जांच में ये पता चला वो विद्यालय का बजट 3 बार निकाला गया और कागज में बह गया, इतना बड़ा ब्लंडर था वो।
1: ओके,
0: मतलब खबर निकालते समय मुझे नहीं पता था कितनी बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर थी। वो प्रभारी जी ने, जो हमारे पांडे जी थे, उन्होंने पूरा पड़ताल कराई जब उसकी, तब तो बहुत बड़ी खबर है। तो वहां पे उसको स्टेट हेड ने उसको रोक लिया था कि इसको पूरी पड़ताल करके, क्योंकि 2 जिलों की खबर थी, तो पड़ताल करके तब लिखी जाएगी। तो वहां से तो बिल्कुल हमको जैसे टॉनिक मिलता है, मिल गया। ऐसे ऐसे 3-4 खबरें निकाली, फिर वहां जो लखनऊ में बैठे थे लोग, उनके नजर में थोड़ा नाम आना शुरू।
1: ओके,
0: तो उन्होंने कहा कि अब इस लड़के को जिले पे लाना है, लड़के में दम है। तो अब जिले, क्योंकि उस दौरान पैसा बहुत कम होता था, तो क्या सरवाइव कैसे करेंगे, तो आए यहाँ पे, आना भी था, मन भी था, सरवाइव कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा साइड में हमारा मेडिकल का काम है, क्लिनिक करते हैं, तो डॉक्टर साहब यहाँ RN पांडे नर्सिंग होम है, डॉक्टर राजेश पांडे जी, उनसे बात हुई, तो फिजियोथेरेपी यहाँ उनको जगह खाली ही थी, अच्छा बंदा चाहिए था उनको, उन्होंने मिले हमसे, सेटिस्फाई हुए, उन्होंने मौका दिया। तो फिर हमने कहा अब इतना है मिल जाएगा कि हमारा खर्चा चल जाएगा, परिवार हमारा चल जाएगा, तब आ गए गोंडा।
1: ओके,
0: लेकिन पत्रकारिता चलती रही, क्योंकि गोंडा इसने ही पहुंचाया था, इसको छोड़ना नहीं था। तो मजा आने लगा था, गोंडा आके तो और मजा आ गया।
1: तो गोंडा आकर के आपको मजा भी आया और कहीं ना कहीं आपने अपनी फील्ड में एक बार वापस से साबित किया कि आप जिस काम को छूते हैं उसे मुकम्मल करते हैं। ये बड़ी बात भी और बहुत बेहतर बात भी है। अब चूंकि आपने जो निभाया, जो किया, वो तो हमारे सामने है, वो हमने जस्ट सुना, लेकिन इसके अलावा एक रिपोर्टर का एज रिपोर्टर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, काम क्या होते हैं, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के उस पार वापस से आएंगे, बातचीत जारी रखेंगे। सुनते रहिए गोंडा वाला एफएम रेडियो, ज्ञानस्थल 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
0: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
2: ब्रेक के बाद एक बार वापस से आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं आपके अपने स्पेशल शो गोधुली में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, आपके होस्ट मौजूद है आरजे अदनान। और आज इस स्पेशल प्रोग्राम के स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं दैनिक भास्कर के रिपोर्टर मिस्टर दिवाकर प्रताप सिंह जी। वापस हम आपका वेलकम करते हैं इसी शो में। थैंक यू सो मच। और चूंकि मेरा अगला प्रश्न जो है वो मैं बोल के गया था ब्रेक पे जाने से पहले, कि आपको आने के बाद ये बताने की कोशिश करना है कि भाई ये रिपोर्टर का काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है।
6: बेसिकली रिपोर्टर का काम ये होता है कि आप कहीं भी, पहली चीज आप देखिए कि हम समाज को क्या दे सकते हैं, पॉजिटिविटी। जैसे कई आप ही देख लिए, अखबार भरे पड़े होते हैं, सुबह आप देखेंगे तो मर्डर हो रहा है, लूट हो गई है, रेप हो गया है, तो ऐसे अखबार खोलते हैं तो तबीयत अच्छी नहीं लगती।
2: बेशक।
6: तो मेरे ख्याल से तो अब जरूरत है इस टाइम को कि मीडिया को पॉजिटिव होने की, क्योंकि आप समाज में जितनी निगेटिविटी फैलाएंगे, मैं किसी से जितनी निगेटिव बातें करूंगा तो वो चीजें उसके ऊपर हावी होती जाएंगी।
2: बेशक।
6: तो अभी सबसे बड़ी जरूरी है कि समाज में पॉजिटिविटी हमारी जरिए किस तरह से फैले, ये हमारी जिम्मेदारी।
2: एग्जैक्टली।
6: प्लस जो हमारी जॉब है, हमारी जॉब है खबर करना, तो खबर में हकीकत क्या है, कहाँ तक उस हकीकत को सामने लाना है जिससे समाज का जो सौहार्द है, जो भाईचारा है, वो बिगड़े ना, माहौल ना बिगड़े, ये भी जिम्मेदारी बहुत, क्या बोलते हैं, बहुत संवेदनशील मसला होता है पत्रकार के लिए।
2: बहुत सेंसिटिव है, सही है।
6: तो उसको बहुत जिम्मेदारी के तौर पे करना चाहिए।
2: ओके। एंगल होता है बहुत जरूरी होता है, किसी भी घटना को अगर यूं ही तो नहीं देखते ना, एक एंगल तो आपको लेना पड़ता
6: है। बिल्कुल।
2: तो ये एंगल होता क्या है, और एक पत्रकार किसी भी घटना को प्रथम दृष्टया जब देखता है तो किस एंगल से देखता है?
6: उसमें देखता है कि पहले कि वो घटना सीधे सीधे है क्या।
2: ओके।
6: घटना है क्या और इसके पीछे कारण क्या है।
2: जी।
6: मान लीजिए कहीं कोई क्राइम हुआ है, तो प्रथम दृष्टया तो क्राइम सीन क्या है, क्राइम क्या है, वो तो बाकी सब पुलिस का काम है, लेकिन अपना है कि क्राइम की तह तक जाना कि ये हुआ क्यों है, किसने किया है, का कारण क्या है, आगे क्या कार्रवाई हो रही है। वही ना कि 5W, कब, क्यों, कहां और कैसे, ये सबसे जरूरी है। और इस बेसिक पे जब चलेंगे आप, तो आप गलती की संभावना बहुत कम,
2: 5W1H की अगर फॉर्मूले पे फॉलो करते हैं।
6: बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तब आप भी सेटिस्फाई होंगे और खबर तभी बनेगी।
2: Exactly.
6: खबर कंप्लीट तभी होगी जब ये पूरे कंटेंट उसके अंदर होंगे। क्योंकि जो सुबह खबर पढ़ेगा वो आपको, आपका जो खबर होगा उसको सही मान के पढ़ेगा, तो ये आपको खुद बिल्कुल पुष्ट होना पड़ेगा कि जो हम लिख रहे हैं वो सत्य है। 99.9% बिल्कुल पुष्ट हो गए तभी कलम चलनी चाहिए। अगर 1% भी उसने उसमें है दिक्कत, तो उसको आपको नहीं लिखना है।
2: चलिए, ये तो आपने जो बात बताई ये बिल्कुल जायज मुझे लगी, क्योंकि शायद प्रिंट मीडिया के साथ प्रॉब्लम कह दे या उसकी स्ट्रेंथ कह दे कि एक बार जो छप गया सो छप गया, तो इसलिए गलती की गुंजाइश ना ही के बराबर होती है। लेकिन फिर भी मान लीजिए इंसान है, छप भी गया, तो फिर प्रिंट मीडिया की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से अपने माफीनामा देता है या क्या प्रोसीजर अपनाता है प्रिंट मीडिया अगर बाय चांस 0.1% ही हो गई गलती? तो
6: नहीं, गलती अगर हो जाती है तो चाहे वो हमसे हुई एक इंसान के तौर पे या संस्थान के तौर, क्योंकि संस्थान जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमारे अगर अखबार में खबर छपती है
2: जी,
6: अगर वो गलत है कहीं से भी
2: जी,
6: वो प्रूफ नहीं होती है कि सत्य है, संस्थान पूरी पड़ताल कराता है, अगर वो सत्य नहीं है तो माफीनामा जारी होता है, बिल्कुल जारी होता है, वो छपता है उसमें और उसका माफीनामा संस्थान के तौर पर छपता है।
2: यानी संस्थान भी मानता है कि उससे ये भूल चूक
6: हुई,
2: किस वजह से हुई है।
6: हाँ।
2: लेकिन कहीं ना कहीं
6: कभी कभी होता है कई जगहों पे
2: जी
6: कि खबर भी सही होती है, पॉइंट भी सही होते हैं, आपका इनपुट भी सही होता है, सब कुछ सही है, लेकिन किसी की गर्दन फंसी होती है। मैं आपको बताऊं, मैं हिंदुस्तान के बाद अमर उजाला में रहा, अमर उजाला के बाद अब दैनिक भास्कर में हूँ, हिंदुस्तान में 10 साल हमने दिया
2: जी।
6: अब अखबार का नाम नहीं लूंगा, तीनों अखबार में से एक अखबार था, उसमें एक बड़ी खबर पड़ी छपी थी
2: ओके।
6: तो यहाँ बालिकाओं को लेके, बालिकाओं के ऊपर कुछ शरारती तत्वों ने छीटा कसी या छेड़खानी ऐसा कुछ किए थे, बड़ी खबर थी
2: जी।
6: तो जिले के एक जिम्मेदार अधिकारी की गर्दन फंस गई थी, खबर पुख्ता बिल्कुल सत्य थी, उसमें एक रत्ती भर भी गलती नहीं थी, उनकी पहुंच ऊपर तक थी, अखबार के मालिक तक कहीं से बाई पास उन्होंने पहुंचा, वो दबाव बनाया, लेकिन जब वहां पता लगी खबर बिल्कुल सही है तब उन्होंने बीट रिपोर्टर को बुलाया, क्योंकि उनकी नौकरी पे सवाल आ गया था, उनका सस्पेंड होने वाले थे ऐसा कुछ था। तो फिर उसी खबर का अगला अंक जो जारी हो थोड़ा सा मोल्ड करके जारी की छापा गया, क्योंकि उनकी नौकरी पे
2: बात बनाई थी।
6: तो वहां गलती संस्थान की नहीं थी, रिपोर्टर की भी नहीं थी, लेकिन अब जिम्मेदारी वहां भी बनती है हमारी कि अगर आदमी को गलती का एहसास हो गया है, इवन भाई पुलिस तो गलती करती नहीं है या डीएम गलती करता नहीं है, प्रशासन गलती करता नहीं है, लेकिन अगर कहीं गलती हो गई जिम्मेदार, तो जैसे घर का कोई परिवार गलती करता है तो मुखिया को जिम्मेदार माना जाता है।
2: एग्जैक्टली।
6: तो अब गलती हुई, उन्होंने एहसास किया, तो फिर उसको हटा देना ज्यादा बेटर है। तो कहीं कहीं करना पड़ता है, कोऑपरेट करना पड़ता है, कहीं कुछ करना पड़ता है।
2: एग्जैक्टली। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इस बात के मद्देनजर रखते हुए कि कोई ये जो मैसेज जा रहा है
6: जी,
2: वो समाज की विपरीत नहीं जा रहा बल्कि किसी को सेव करने के लिए जा रहा
6: है। जैसे उस खबर के बाद छपा गया कि जब कार्रवाई क्या हुई
2: जी,
6: तो अब उनकी पॉजिटिविटी आ गई।
2: एग्जैक्टली।
6: अभी उनकी अगले दिन खबर कमी छपी थी, अब उनकी पॉजिटिविटी, कार्रवाई क्या हुई।
2: एग्जैक्टली।
6: तो अब वहां से उनको बल मिल गया, तो उनकी नौकरी बच गई, उनकी पोस्ट बच गई, यहाँ जिला बच गया, सब कुछ बच गया।
2: तो भाई बड़ी बात अभी एकदम स्टार्टिंग में आप कही थी कि सेंसिटिविटी वाली जॉब है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है और बहुत सेंसिटिव होता है। यानी कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा आपको लॉयल होना है, ईमानदार होना है, आपको पक्षपात नहीं करना, अलग से आप बायस नहीं हो सकते, आप न्यूट्रल रह करके ही आप पत्रकारिता कर सकते।
6: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: ये आपकी बातों से एकदम फैक्ट समझ में आ रहा है। अब चूंकि ज्यादा वक्त तो नहीं बचा है, लेकिन मैं अपने श्रोताओं को हम ये भी बता दे कि दिवाकर जी जो है वो महज पत्रकार नहीं है, महज फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, महज MR नहीं रह चुके हैं, बल्कि एक बहुत अच्छे और सफल बिजनेसमैन भी है, एंटरप्रेन्योर भी है। तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को नहीं पता है, तो प्लीज अपने बिजनेस के बारे में बताएं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, उसमें क्या काम होता है, उसके बारे में थोड़ा सा।
6: जी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, हमारे पास अब पहले एक थी, अब दो फर्म हो चुकी हैं
2: जी।
6: पहले शुरुआत में 2020 में कहते हैं ना कि कभी कभी लोग आपदा में टूट जाते हैं, कई लोग बंद, कभी कुछ लोग बन जाते हैं।
2: एग्जैक्टली।
6: तो कुछ में एक नंबर हमारा भी था।
2: ओके।
6: तो कोरोना का वही 2020 का दौर था, कोरोना के टाइम पे छटनी काफी हो रही थी हर जगह पे
2: जी।
6: तो हमें संदेश अंदेशा आया कि दिक्कत होने वाली है, तो अचानक जहाँ हमारा ऑफिस था, ऑफिस के बगल ही एक जगह थी, तो जगह अच्छी लगी, तो अचानक दिमाग में आया, वो बिजनेस का वो सोच रहे थे काफी दिन से कि सही जगह मिले तो कर ले, टाइम नहीं सूट कर रहा था।
2: ओके।
6: तो उस टाइम पे आगे अपनी इनकम को जारी रखने के लिए भी सोचना था, क्योंकि परिवार बढ़ रहा था, बच्चे बड़े हो रहे थे,
2: बेशक,
6: और आगे सब कुछ अंधेरे में चल रहा था कि आगे होगा क्या, नहीं पता था
2: exactly.
6: हम सबको
2: जी।
6: तो बस वहीं से एक स्टार्ट हुआ बिजनेस। तो होता क्या है, शुरुआत करता है आदमी तो थोड़ा सा लक और ये सब कुछ देखता है, तो पत्नी के नाम पे हमने स्टार्ट किया, पहली फर्म हमने डाली, तो उनको हमने आगे किया, फर्नीचर शॉप ही थी।
2: ओके।
6: फर्नीचर का काम शुरू किया रिटेल में। तो 2022 आते आते काम आप लोगों के दुआ से काफी ठीक चल निकला, मेहनत काफी हुई और वहाँ भी जो पत्रकारिता के दौरान हमने नाम कमाया था उसका काफी लाभ मिला।
2: लाभ मिला उस इमेज का।
6: और इमेज हमारी ऐसी थी कि पूरे जिले में आज तक कोई आपको हमारे पीठ के पीछे ये नहीं कहा कि ये बंदा बेईमान है या किसी को इसने गलत किसी के साथ किया, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो उसका काफी फायदा मिला और अब जाके वो 2022 में फिर हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली फर्नीचर की और नई फर्म भी डाली। अपने ब्रांड नेम हमारा डॉक्टर फर्नीचर वाला करके है, डॉक्टर कहीं छुटा नहीं,
2: वो कसक इस तरह से निकाली जा रही है।
6: तो हमने अपना ब्रांड नेम डॉक्टर फर्नीचर वाला किया।
2: क्या बात है।
6: उससे फिर अब उसी के बैनर के तले काम शुरू है, चल रहा है और कभी 8,000 रुपए पे काम करने वाला बंदा आज तकरीबन महीने में 1,25,000 रुपए लोगों को बांट।
2: चलिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कही, ये चेंज आया। लेकिन ये सुन लेना तो आसान है, मुझे लगता है इसके पीछे एक पूरी यात्रा है और वो यात्रा सीधी सीधी नहीं बल्कि बहुत उतार चढ़ाव वाली यात्रा है। तो उतना तो शायद बता पाना भी मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन हम ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग इस टाइम युवा हैं, बहुत सारे लिसनर्स इस वक्त भी आपको सुन रहे हैं और बिजनेस का आइडिया बहुत लगाते हैं, तो फर्नीचर ना सही कोई भी वो काम अगर स्टार्ट करते हैं तो पहले बात तो मेंटल लेवल पे किस तरह की रेडीनेस होनी चाहिए, दूसरी बात है एक बिजनेस को चलाने के लिए किन किन चीजों की सच में जरूरत होती है, क्योंकि मैंने देखा युवा एट द एंड कैपिटल पे आके रुक जाते हैं और जबकि कई सारे सोर्सेज होते हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, हम शायद उधर अप्रोच भी नहीं करते, हम देखते भी नहीं है, हम सीधे कहते हैं किसी दिन जब लाइफ में पैसा आएगा तो हम करेंगे। भाई जब पैसा आ जाएगा तो फिर और भी बहुत सारे काम हो जाएंगे।
6: बिल्कुल,
2: तो ये क्या है, मतलब इसको किस तरह से आप देखते हैं, इसके बारे में बताएं।
6: देखिए, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था मेरे पास भी पैसे नहीं थे, सेविंग्स के कुछ 50-60 हजार रुपए रखे थे, बोल रहा हूँ शायद आपको मजाक लगे, 50-60 हजार रुपए रखे थे। वो जहाँ शोरूम हमें स्टार्ट करना था वहाँ हमने उसको पहले 50,000 में से 25,000 हमने उसको टोकन मनी दी कि आपका शोरूम हम ले रहे हैं, जुलाई से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पक्का नहीं था कि कोरोना चल रहा था, शायद मार्च में लॉकडाउन लगा था, 2 महीने लगातार लॉकडाउन था, तो फरवरी में हमने उसको टोकन मनी दी थी। फिर अब जब कोरोना लॉकडाउन लग गया तो पैसे की आमद और कम हो गई।
2: एग्जैक्टली।
6: तो लेकिन अब यह है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि काम होना था, इधर उधर से दोस्तों से रिश्तेदारों से, खासकर दोस्त ही काम आते हैं, एक दो या फिर एक आध रिश्तेदार।
2: एग्जैक्टली।
6: बाकी आप तकलीफ में हो ना तो सारे दोस्त रिश्तेदार सब कन्नी काट जाते हैं।
2: एग्जैक्टली।
6: तो वहां से स्टार्ट हुआ, फिर वहां पे अपना रिलेशन था पहले बैंक में जहां मेरा अकाउंट था, उन्होंने कहा कि आप अपना GST दीजिए, तो योजना उस समय चली थी केंद्र सरकार की मुद्रा योजना, तो स्टार्टिंग फेज में ही वहां से हमारी फाइनेंशियल हेल्प हुई, वो फिर उसी से हमने डेवलप किया और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, वो पूंजी को कैसे डबल करना है, डबल को ट्रिपल करना है, उस पे दिमाग लगाया। आपको गवर्नमेंट बहुत फैसिलिटी देती है, बस थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए।
2: इवन
6: कभी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप आधे अधूरे में स्टार्ट कीजिए, ये नहीं कि हमने बस दुकान खोली, सामान रखा, स्टार्ट कर दिया। सिस्टम में आइए, पहले आप GST रजिस्टर्ड कराइए। आप जब तक रिकॉग्नाइज नहीं होंगे तब तक आपको बैंक कैसे पैसा देगा,
2: या गवर्नमेंट की जो
6: गवर्नमेंट कैसे मिलेंगे।
2: एग्जैक्टली।
6: तो आप पहले GST लीजिए, GST के बाद अपना अकाउंट खोलिए, लेन देन कीजिए, या शुरुआत में ही आपको पैसा चाहिए, लेकिन GST सबसे जरूरी है। GST, आधार, पैन, अपने पेपर हमेशा 18 साल अगर आप पूरे हो गए तो सारे पेपर जरूर कम्प्लीट करिए। और मैं सभी को ये कहता हूँ, अगर आप साल का 1,00,000 रुपए भी कमाते हैं तो उसका रिटर्न आप फाइल कीजिए, ITR फाइल कीजिए।
2: Exactly.
6: भविष्य में कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा।
2: एग्जैक्टली.
6: Exactly. अपनी कमाई को छुपाइए मत, जो कमाते हैं उसको दिखाइए, बताइए कि मैं इतना कमाता हूँ। लोग क्या करते हैं कि अरे हमारी इनकम अगर हम बता देंगे, ITR फाइल कर देंगे तो सरकार ये कर लेगी, कुछ नहीं करेगी, बल्कि आप सरकार के लिए नंबर एक के बंदे हो जाएंगे आप, क्योंकि वही पेपर आपसे मांगे जाएंगे, तब आप पीछे पीछे भागोगे तो होगा नहीं।
2: एग्जैक्टली. जब लोन चाहिए होता है तो ये पेपर्स
6: बिल्कुल
2: बहुत जरूरी होते हैं और सिविल भी इसीलिए चेक की जाती है। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं आपको लीगल होना है पहली चीज, दूसरी बात है कि ये प्रोसीजर है, क्या कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है।
6: और बिजनेस में सबसे जरूरी चीज है कि आप सिविल जो कहते हैं, सिविल तो सरकार ने बनाई है, बाकी समाज में सिविल तो पहले से बनी है।
2: एग्जैक्टली.
6: लेन देन का तरीका आपका क्या है, आपको लायबल होना पड़ेगा, जुबान की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो हो सकता है कि आपको शुरुआती दौर में बैंक के पास जाने की जरूरत ही न पड़े।
2: एग्जैक्टली.
6: तो आपको बाहर से ही मदद मिल जाएगी, हो सकता है कोई होलसेलर आपको आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको माल दे दे लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, आप काम शुरू कर दें। बस ये डेडिकेशन होना चाहिए, किलर स्टिंक्ट जो होती है वो होनी चाहिए कि हमको करना है।
2: ओके,
6: तो जब आप उसके साथ काम करेंगे तो जीरो से आपको उठना जरूर है, उठेंगे जरूर, मेहनत करना पड़ेगा। मैंने शोरूम पे शुरुआत में 1 महीने अपने शोरूम पे मैं खुद झाड़ू लगाया हूँ, कोई दिक्कत, हमको शर्म नहीं आती थी। घर पे मैंने कभी नहीं लगाया, लेकिन शोरूम पे लगाता था।
2: एग्जैक्टली। तो इसी बीच में एक सवाल और ज़हन में मेरे आ रहा है कि आपने इतने काम किए, इतना अच्छा सब में किया
6: जी,
2: फिर पत्रकारिता से जब बिजनेस चुनने की बात आई तो आपने फर्नीचर को ही क्यों चुना? क्या पहले से कोई आपके कांटेक्ट में थे जिनसे आपका लेन देन आसानी से हो सकता था, या आपको लगा कि इसका काम अभी गोंडा में काफी एस्पिरेंट है, यहाँ बहुत जरूरत है?
6: जी जी।
2: क्या सोच के किया आपने?
6: सबसे पहले तो आप बिजनेस जब शुरू करते हैं कोई भी
2: जी,
6: तो उसमें आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से आपकी लोकेलिटी के मुताबिक जो बिजनेस आप चूज करने जा रहे हैं
2: जी,
6: उसकी लाइफ कितनी है पहले इसको ध्यान में रखिए।
2: मार्केट रिसर्च बोल
6: सकते हैं, मार्केट रिसर्च थोड़ी सी
2: जी।
6: तो उसमें हमको लगा कि जो फर्नीचर का सेगमेंट है वो लंबा चलेगा।
2: ओके,
6: आदमी घर बनवाना बंद नहीं करेगा, कोर्स में फर्नीचर चाहिए होंगे, ऑफिस बंद नहीं होंगे, शोरूम्स खुलेंगे और उसमें फर्नीचर चाहिए होंगे, तो हर सेक्टर में फर्नीचर का जो सेगमेंट है ये चलेगा और ये लगातार चलेगा, बंद नहीं होगा। आदमी एक घर बनवाया है, दूसरा बनवाएगा, एक फ्लोर बनवाया है, दूसरा फ्लोर बनवाएगा, उसने पुराना फर्नीचर, अभी ये एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ अभी, इवन दो साल पहले जिसने मुझसे फर्नीचर लिया था वो फिर से फर्नीचर हमसे खरीद रहा है।
2: ओके,
6: तब मैंने कहा ये सेगमेंट, हमने कहा कि एक्सीडेंटली मैंने सेगमेंट सही चुना।
2: ओके, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि प्रीडिसाइडेड, लेकिन आपने सोचा कि थोड़ा सा जब ठंडे दिमाग से सोचा कि लॉन्ग टर्म में मुझे फायदा क्या करेगा, तो आपको फर्नीचर जो है ये सस्टेनेबल बिजनेस दिखा।
6: मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि जैसे आज के टाइम में आपका फूड सेगमेंट यानी कि आपका रेस्टोरेंट
2: जी,
6: आपका ग्रोसरी, आपका रेडीमेड गारमेंट्स, आपका फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर और बेकरी शॉप्स, ये जो हैं सेगमेंट ये लगातार चलेंगे, ये बंद नहीं होंगे,
2: नहीं होंगे। एग्जैक्टली।
6: और अगर किसी को करना है सही जगह सही समय सही टाइम पे आप करेंगे इन बिजनेस में, किसी में से हाथ डालेंगे आप क्लिक कर रहेगा, मेहनत करनी पड़ेगी क्लिक कर जाएगा।
2: एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ह्यूमन नीड की चीजें हैं और ह्यूमन नीड हमेशा ह्यूमन नीड रहने वाली है, लेकिन एक बात जैसे आपने कहा कि प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, रिसर्च इस बात की भी करनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या मिल सकता है, आपको लोकल लेवल पे क्या मिल सकता है, आपके अपने आपके दोस्त यार क्या आपकी हेल्प कर सकते हैं, और आपने जो इमेज बनाई है उसका इम्पैक्ट तो होता है।
6: बस
2: आप अगर खराब इमेज बनाएंगे तो भले ही आपने सुधर जाने का प्रण भी ले लिया हो, चीजें करे होंगे, तो उसको भी टाइम लगता है।
6: उसमें सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे मैं आज वो बेच रहा हूँ सामान, तो पहले आपको कस्टमर बन के सोचना पड़ेगा।
2: एग्जैक्टली।
6: जैसे मैं हूँ तो मैं सेल्स से पहले उस सर्विस को लेकर सोचता हूँ,
2: सोचते हैं
6: कि इसकी सर्विस मैं कैसे दूंगा, मैं सर्विस को प्रायोरिटी देता हूँ। इवन आप गाड़ी खरीदने जाते हैं शोरूम में
2: जी,
6: तो आप पहले सोचते हैं कि फला कंपनी की सर्विस कैसी है, क्योंकि आपको गाड़ी तुरंत बेचनी तो है नहीं ना, आप आज खरीद रहे हैं 10 साल 5 साल उसको रखेंगे, तो इसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, सर्विस कैसे होगी।
2: एग्जैक्टली।
6: तो हम उस पे ज्यादा फोकस करते हैं, और जब सर्विस आप अच्छी देंगे वो सेल्स से ही आपकी सर्विस शुरू हो जाती है, आपकी कस्टमर डीलिंग, आपकी रिलेशनशिप, और आपके कस्टमर सामान बेचने के बाद उससे फिर आपका कैसा इंटरेक्शन है, तब तक की सर्विस आपको काम देती है, वो कस्टमर फिर रिटेन कर जाता है और एक कस्टमर की चेन फिर बनाता है वो।
2: ये बात बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कहा जाता है सबसे स्ट्रांग जो आपका प्रचार होता है, जो एडवर्टीजमेंट होता है, वो लोगों के जरिए होता है, माउथ टू माउथ जो होती है, ये बहुत बड़ी प्रचार होता है। ये बात बिल्कुल सही है। एंड इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि ये सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे, ऑफ कोर्स फॉलो करने पड़ेंगे, और ये बहुत अच्छी बात रही कि आपने इतने सारे काम चेंज किए, उसके बाद जिसमें भी आपने हाथ डाला उसमें डेडिकेशन दिखाया, उसमें रिसर्च किया, उसमें ईमानदारी से उस काम को किया, जॉब किया, बिजनेस किया, ये बहुत अच्छी बात है। अब चूंकि हमारा चलने का वक्त हो गया है, और जाने से पहले हमारे 2 अंतिम प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि इनको बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में आप बताएं, क्योंकि आपने इतना टाइम पत्रकारिता में दिया है, इतने लोगों से आप मिले हैं, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, एक समाज का व्यक्ति होने के नाते आपका क्या मानना है, कोई संदेश अगर आप हमारे सुन रहे लिसनर्स को देना चाहें?
6: अपने गोंडा के लिए सबसे बड़ी बात है कि अभी मैं बात कर रहा था कि अपने यहाँ सबसे बड़ी चीज है जो आज के समय में मैं महसूस कर रहा हूँ, खास तौर पर समाज में अभी भी जो बच्चे बड़े हो रहे हैं
2: जी,
6: उनके प्रति समाज और माँ बाप की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है।
2: ओके।
6: क्योंकि यही बच्चे आगे चल के इस समाज का अंग बनेंगे।
2: बेशक बेशक।
6: तो इनको मैं अपने सामने कमजोर होते देख रहा हूँ।
2: ओके।
6: क्योंकि सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से ये कमजोर हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात
2: है।
6: इनको समाज से जुड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है।
2: तो मैं चाहूंगा कुछ शब्दों में आप सोल्यूशन भी बता दें कि क्या कर सकते हैं।
6: जैसे पहले होता था, हम लोग बच्चे थे
2: जी,
6: हम आप बच्चे थे अपने टाइम में, तो ओपन गेम्स होते थे, खुले में माहौल में खेलते कूदते थे और बच्चों से इंटरेक्शन होता था। अब है कि स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है बस उसका नाम पता है, ना उसके मम्मी पापा के बारे में पता है। हम लोग क्या था कि हम लोग बच्चे पढ़ते थे, हम लोग उसके घर जाते थे, वो हमारे घर आता था, हमारे मम्मी पापा उसके मम्मी पापा से बात करते थे, पता होता था, सबके आपस में कॉन्टेक्ट होते थे, हंसते खेलते थे। वो चीज अब कहीं गुम हो गई है। और इससे क्या है कि बच्चों में इनसिक्योरिटी, पेरेंट्स में इनसिक्योरिटी, सोसाइटी में इनसिक्योरिटी, आप गली में, अब यही गली में आप निकल जाइए, आप देख लिए कितने बच्चे सड़क पे अगर घूम रहे हो, कतई नहीं मिलेगा कोई बच्चा घर के बाहर।
2: एग्जैक्टली।
6: तब फोन में या टीवी में मिलेंगे आपको। कारण उसका है क्योंकि बच्चे अगर खेलेंगे, हम आप कहते हैं ना कि बच्चों को फोन नहीं देना है, टीवी नहीं देना है, लेकिन आखिर बच्चा करेगा क्या? 24 घंटे तो पढ़ेगा नहीं।
2: Exactly.
6: स्कूल से आके 10 घंटे तो पढ़ेगा नहीं। उसका मन भी मन है। और बच्चे को जब आप फ्री नहीं करेंगे, कोई आप माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल एकदम वो काट का उल्लू बन जाए, 99.9% लाए, कतई नहीं। आपका बच्चा स्टूडेंट बन सकता है लेकिन एक बेहतर इंसान नहीं बन सकता।
2: इंसान नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत बड़ी बात आपने बोल दी इस तरह से, और इसके मायने बहुत है। शायद जितनी बात ये नॉर्मल और जनरल लग रही है, ये सही कहा कि बाद में यही समाज बनेंगे, यही समाज का मेन अंग होंगे। और अगर हम आज इन्हें कमजोर होते हुए देख रहे हैं, तो आज हमें चेतने का टाइम आ गया है, आज हमको जागने का टाइम आ गया, इनके लिए करने का टाइम आ गया। बेशक। आज के अंतिम सवाल है, क्योंकि आप रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के स्टूडियो में बैठे हैं, जो कि देवी पाटन मंडल और गोंडा का पहला एफएम है।
6: मुझे बहुत मजा आया था जब पहली बार लॉन्च हुआ था ये
2: जी,
6: तो मोबाइल पे सुनता था, बड़ा मजा आता था।
2: Okay.
6: पहले लखनऊ जाओ तो गाड़ी में जब एफएम बजता था तो यार गोंडा में अपने एफएम नहीं बजता है।
2: एग्जैक्टली। लखनऊ लखनऊ सुनते थे उसमें। और अब क्या है ना कि गाड़ी में अगर आपने ऑन किया तो गोंडा शहर
6: बस,
2: की
6: बस, मजा आ जाता है।
2: क्या बात है। तो ये फील ही काफी है अपने आप का। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स है जो हम हर किसी के लिए लेके आते हैं। और जैसा कि आपका मानना है कि मीडिया का काम एक समाज का बेहतरी के लिए होता है, ऑफकोर्स हम भी मीडिया के ही अंग है, और हमारा भी कहीं ना कहीं वो जो वैल्यू है, जो आइडियोलॉजी है, वो समाज की बेहतरी को लेकर की है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज मुझे नहीं, मुझे लगता है सुनने वाले हर शख्स को बहुत अच्छा लगा होगा, एंजॉय भी किया होगा, और बहुत कुछ उनको सीखने को, समझने को भी मिला होगा आपकी लाइफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो है वो हम सब की लाइफ से बहुत मैच करती है।
6: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: बहुत जेन्युइन बात है आपने कही।
6: अरे हम लोग सब एक ही दूसरे के अंग हैं, कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं।
2: बेशक।
6: बस खाली एक दूसरे को समझना चाहिए बस।
2: एग्जैक्टली।
6: और समझने के लिए बस है ना कि आदमी को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है।
2: बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि जिस तरह हमारे श्रोताओं ने हमारी और आपका टॉक शो सुना है, वो अपनी राय इस वक्त जो सुन रहे हैं हमको एप्लीकेशन के चैट बॉक्स पे आकर के बता सकते हैं। और साथ ही साथ आज हम अपने स्पेशल गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे कि अपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल कर आपने हमको वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
6: हमारे पूरे गोंडा वासियों को ढेर सारी बधाई, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहां बुलाने के लिए।
2: थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों से हम कहेंगे कि भाई सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। अगले एपिसोड में किसी और नए मेहमान के साथ उनकी बातें, उनसे जुड़ी हुई बातें करेंगे। स्टे ट्यून।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल। इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
8: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
9: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
1: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
8: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

कभी कोई कहीं चला जाता है तो कभी कोई कहीं से आ जाता है, पर कुछ लोगों की जो कहते हैं ना कि पहचान हमेशा के लिए ऐसे मतलब मिट सी जाती है और कई उम्र इंतज़ार करते हुए बीत जाती है। सो वेलकम वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर आप सभी के साथ आरजे वीना।

बढ़ता जा रहा है। मतलब मुझे इसकी एक पीछे की साइकोलॉजी कभी नहीं समझ में आई, लेकिन हाँ ये बात तो सच है कि ये किसी का भी मिसिंग होना, घर में अगर कोई सामान मिस हो जाता है तो हमको लगता है कि यार क्या हो गया, कहाँ चला गया, फ़ोन नहीं मिलता है तो हम परेशान, लेकिन किसी इंसान का मिस होना, ओ माय गॉड। सो इस बारे में मैं थोड़े से आप लोगों से मतलब डेटा शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ये मिसिंग जो है चिल्ड्रन की है, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे है आज, और आपको बताना चाहती हूँ कि ये दिन खास तौर पे 1983 में शुरू किया गया। रोनाल्ड रीगन ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया, फिर इसी के बाद से लापता बच्चों के लिए ये दिन जो है पूरे विश्व में मनाया जाने लगा कि भाई एक दिन ऐसा भी होना चाहिए जिससे लोगों के अंदर जागरूकता उठे। और जो लापता, देखो गायब वही होते हैं वो जो नादान हो, मतलब आप खुद बताइए, जो बड़ा है, जो सयाना है, जिसको अपना पता मालूम है, मोबाइल नंबर मालूम है, वो किसी ना किसी जरिए से अपने घर पहुंच जाएगा। लापता कौन होता है? जो अनजान है, जो अपने मतलब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, तो डर छोटे बच्चों का ही ज़्यादा होता है। तो इसको जागरूकता फैलाने के लिए और बच्चों को ढूंढने और उनकी जो सेफ्टी है उसको रेगुलेट करने के लिए दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे खास चीज़ ये है कि हर साल ये मनाया जाता है 25 मई को, और इसके मनाने के पीछे जो कहते हैं ना कि बड़ी पॉजिटिव सोच रही, पहले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मनाया जाने लगा, फिर धीरे धीरे 1998 से इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयड चिल्ड्रन के लिए एक संस्था बनाई गई, यूएस के नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयड चिल्ड्रन के लिए ये एक उद्यम था जिससे कि मतलब बच्चों को ढूंढने के लिए अलग अलग मुहिम चलाई जाने लगी, और ख़ास तौर पे एक बड़ा नेटवर्क शुरू किया गया जिससे कि मिसिंग बच्चों को उनके घर पहुंचाया जाए, ठीक है ना। और आपको पता भी होगा कि बच्चों की तस्करी भी की जाती है, बच्चे भी बेचे जाते हैं ऑर्गन ट्रैफिकिंग के लिए, ना जाने क्या क्या, और हम इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो गए, और हमने नेटवर्क में 29 सदस्य रखे हैं, देश रखे हैं जो एज एक्टिव मेंबर की तरह काम करते हैं। और 1979 में न्यूयॉर्क शहर में 6 वर्षीय एटान पेट्स के लापता होने के बाद ये जो दिन है वो मनाया जाने लगा। 6 वर्षीय बच्ची गायब हुई थी, और उसी के बाद से सबसे पहले शुरुआत की गई अमेरिका में इसकी, ठीक है। इस नेटवर्क में 29 देश हैं, अल्बानिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, चिली, कोस्टा रिका, इक्वाडोर, जर्मनी, ग्रीस, ग्वाटेमाला, आयरलैंड, इटली, जमैका, लिथुआनिया, मेक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रूस, सर्बिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। मैंने सारे देशों के नाम बता दिए, आपने सुन लिया होगा तो आप लोग याद भी कर लीजिए। तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास कभी भी, देखिए हम लोग पब्लिक प्लेसेस पे रेगुलर जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है, कभी स्टेशन तो कभी हॉस्पिटल तो कभी कहीं भी, मतलब स्कूल वगैरह या कहीं भी सड़क पे, या मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसे अनजान या जिनको हम नहीं जानते वो बच्चे दिखते हैं, और हो सकता है हमें लगता है कि कोई ऐसे ही होंगे बैगर टाइप, पर सच बताओ उनमें एक आध बच्चा आपको ऐसा मिल सकता है, उस क्राउड में मिल सकता है जो शायद अपने परिवारों से दूर हो गया होगा। और मतलब मुझे बचपन की याद, मतलब बात याद है मुझे, मैं आप लोगों से किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। मतलब मैं वैष्णो देवी गई थी घूमने अपने पेरेंट्स के साथ, तो मतलब ये जागरूकता ही है कि हर जगह ये सारी चीज़ें होती हैं, इनफैक्ट एक्टिवेट किया जाता है चीज़ों को, एक्टिवेट इन सेंस कि माइक्स लगा दिए जाते हैं जगह जगह, पुलिस चौकी और मतलब GRP, CRPF, ये सारी चीज़ें रहती हैं जो सुपरवाइज करती हैं कि कहीं भी कोई गायब ना हो। तो ये चीज़ मुझे वहाँ अच्छी लगी। तो क्या हुआ कि मतलब मैं उस समय, मुझे बहुत छोटी थी मैं, मुझे याद है कि मैं क्लास सेकंड में रही होंगी, सेकंड थर्ड में, तो मैं वैष्णो देवी गई तो मैं किसी कारणवश बिछड़ गई अपने घर वालों से। वहाँ पे क्राउड बहुत होता है, बहुत भीड़ होती है, मतलब आप एक बार गायब

हुए तो मे बी चांसेस ऐसे हैं आप ना मिले अपने घर वालों से। पर फॉर्चुनेटली मैं अपने घर वालों से मिल गई। मतलब काफ़ी देर तक मैंने ढूंढा, फिर फाइनली मुझे इतना तो समझ था कि हाँ मुझे किसी बड़े के पास अब जाना चाहिए। और उस टाइम पे ये फ़ोन मोबाइल ये सब कम चलते थे। घर का एक वो लैंडलाइन नंबर होता था ऐसे 6 डिजिट्स का बस। तो मैंने वहाँ पे जो पुलिस थी उनसे जाके, मतलब लेडी पुलिस थी, उनसे बोला कि आंटी मेरे मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं। और मैं खूब रोने लगी, तो उन्होंने मुझे शांत कराया, पानी दिया, बिस्किट दिया। फिर उन्होंने बोला तुम बैठो, तुम अपने पापा का नाम बताओ, नहीं तुम अपना नाम बताओ, मैं यहाँ से अनाउंस करूँगी तुम्हारे पापा मम्मी आ जाएंगे। तो अराउंड 1 घंटे के बाद मेरे पापा मुझे ढूंढते हुए वहाँ आ गए और मैं अपने घर वापस आ गई। तो ये मतलब थोड़ा सा हमें अपने बच्चों को भी चीज़ें बता के रखनी चाहिए। घर में बच्चे हैं उनको मोबाइल नंबर और साथ में उनका एड्रेस और अपने पेरेंट्स का नाम बकायदा, और डिस्ट्रिक्ट तो ज़रूर याद करा देना चाहिए कि किस ज़िले से हो आप। इसे इजीली, मतलब अगर किसी दूर जगह भी बच्चा छूट जाए तो वो इजीली ट्रैक करके पहुंचाया जा सकता है। और मतलब मैं रिसेंटली केस बताऊंगी अभी। हाँ, अपने घर मतलब हमारे गोंडा से नज़दीक अयोध्या शहर में जैसे ही मतलब राम मंदिर का निर्माण हुआ है, काफ़ी क्राउड में लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो मुझे एक विमेन मिली, मतलब अराउंड वो 78 ईयर्स की थी। बच्चे ही नहीं, बूढ़ों को भी मतलब मिसिंग हो जाते हैं। तो 78 ईयर्स की थी और वो मतलब काफ़ी पैनिक हो गई थी। एंड द मेन प्रॉब्लम वाज ऑन दैट टाइम दैट लैंग्वेज बैरियर। वो कन्नड़ बोल रही थी और मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही। मैंने कहा भाई अब इनकी मदद कैसे करूँ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं लेके चलती हूँ। तो फिर उनको मैं जहाँ भी वो चेक पोस्ट बने हुए थे वहाँ लेके गई, वहाँ छोड़ा मैंने उनको। और फाइनली उन्हें 2 दिन तक वहाँ रखा गया। और उस दिन तो उनके घर वाले नहीं आए थे। हाँ मैंने नंबर लिया, मैं रेगुलर इंक्वायरी भी कर रही थी कि हाँ आपके घर वाले आए कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि हाँ 2 दिन बाद उनके घर से उनके हस्बैंड जो थे वो आए और उनको लेके गए। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस हमें दिखानी चाहिए, कोई इंसान सुरक्षित अपने घर पहुँच सकता है। सो हमारे साथ अनिल जी हैं और आज मंडे है, और मंडे मतलब कॉलिंग डे। और आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी, लेकिन छोड़ इस म्यूज़िकल ब्रेक के बाद, क्योंकि ज्ञान की बातें बहुत सारी हो गई हैं और ज्ञान के बाद थोड़ा सा एनर्जी होनी चाहिए। तो चलिए लेट्स एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। मूवी का नाम है नील बटा सन्नाटा, मेरी फेवरेट मूवी है, बट गाने आप लोग को भी पसंद आ जाएंगे। अगर आपने पढ़ाई को लेके कोई अच्छी चीज़ मज़ेदार नहीं देखी है तो आप ये मूवी देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। So let's enjoy this song.

वैसे ये गाना सुन के आपको एनर्जी तो हाई फील हो रही होगी, और मैं आपको बता दूं आज मंडे है, वैसे आप लोग सुनाना चाहें तो अपनी पसंद के बहुत सारे गाने और कविताएं सुना सकते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत ही बेहद मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके जानने के लिए और बेहद ख़ास है क्योंकि वो हमारे देश की बात है। जी हाँ, तो सबसे पहले तो आप लोग को बता दूँ कि आज मतलब आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ जिसको जान के आपको मज़ा तो ज़रूर आएगा। क्यों मज़ा आएगा? क्योंकि जो चीज़ हम जानते नहीं और जो जानने के बाद लगता है कि हमने कुछ बड़ा जाना, तो उसे जानने के बाद मज़ा आता है। अरे चलिए, इन सब जानने ना जानने की वाली बातों के पीछे परेशान मत होइए, क्योंकि मैं आपकी समझ को समझ से बढ़ाने का पूरा पूरा योगदान अपनी तरफ से दूंगी। तो चलिए हम पहले शुरू कर देते हैं एक छोटे से प्यारे से इंस्ट्रूमेंटल से, जिसको सुन के आपकी सोच की जो विचारधाराएं हैं वो थोड़ी सी रुख बदलती मालूम पड़ेंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही सुना आपने। तो हमारा जो देश का राष्ट्रगीत है, हमें सबको पता है, हम सभी को पता है कि वो वंदे मातरम है। किसको नहीं याद है जल्दी बताइए, जिसको जिसको नहीं बताया वो जरा मेरे सामने आ जाए, उनको मैं कट घरे में खड़ा करना चाहूँगी। क्योंकि अगर आपको अपने देश के गीत के बारे में नहीं मालूम तो आपको कुछ भी नहीं मालूम। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रगीत है, ठीक है, और इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत और बंगला भाषा में लिखा गया और अमर रचना थी। और शुरुआत में इसे बहुत मतलब कहते हैं ना कि कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनना पड़ा, और कैसे बनना पड़ा, क्यों बनना पड़ा, मैं आगे बताऊंगी। आपको बता दूं कि वंदे मातरम के दो मुख्य स्टैंजा हटा दिए गए थे। दो क्या, मेनली वो तीन स्टैंजास थे जिनको हटा दिया गया था, और उसके हटने के बाद काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, और कंट्रोवर्सीज के साथ चीज़ें बहुत मतलब बिखरती हुई दिखी थी। पर कहते हैं ना कि उजाला वो सवेरा, सवेरा फिर से होता है, तो सवेरा हुआ। शुरुआत का जो हिस्सा था वो हम गाते हैं, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलम, वंदे मातरम, ठीक है। तो 1930 में 1930 की बात है, जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था ये गाना, ठीक है, और मिसाल बन के सबके सामने आया, लेकिन कुछ लोगों को इसकी लिरिक्स समझ में नहीं आई, कंट्रोवर्सीज हुई, लोगों ने कहा ये एंटी मुस्लिम सॉन्ग है, और इसे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर एक कमेटी बनी जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इन तीनों को बिठा के इस बात पे चर्चा की गई कि क्या गीत में क्या दिक्कत है, कैसे है, क्या है। तो सबने ये बताया कि इसमें जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को बंगला आती थी, तो उन्होंने बताया कि इसके जो तीन स्टैंजा इसमें माँ दुर्गा की चर्चा की गई है, तो वही दुर्गा ऐसा करके पूरा मतलब है, मैं पूरा भी गा तो नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे बंगला अच्छे से आती नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन तीनों स्टैंजा पे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई। फाइनली गांधी जी ने कहा कि हम वंदे मातरम को देश का राष्ट्रगीत तो रखेंगे, लेकिन इसके तीन स्टैंजा को नहीं गाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही थी। फिर फाइनली हाल ही में अमृत का महोत्सव, भारत का अमृत महोत्सव जब मनाया जा रहा था देश में, तो इसे फिर से जोड़ दिया गया, और अब स्ट्रिक्टली कहा गया कि जब भी वंदे मातरम गाया जाएगा तो इन तीन स्टैंजास के साथ गाया जाएगा, और संपूर्ण वंदे मातरम को गाने का अब आज़ादी मिल चुकी है। और उसी के साथ जन गण मन हमारा राष्ट्र गीत बना, जनगणमन हमारा हमारे देश की पहचान बना, और उसी के साथ वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रगीत बना। नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, जनगणमन जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, दोनों ही गीतों में बड़ी सिमिलैरिटी है, दोनों हमारे देश की डाइवर्सिटीज बताते हैं। एंड
फाइनली इस गीत को अपनी पहचान मिली, वो भी अब जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इस दुनिया में नहीं रहे। उन तीनों स्टेंजास की कुछ कड़ियां मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्या है। आई होप आप लोग को जान के अच्छा लगेगा कि आपका वंदे मातरम उतना ही नहीं है जितना आपने बचपन में गाया था, ये काफी लंबा चौड़ा है। पढ़ के बताती हूँ, हमने यहाँ तक तो सुना है, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमन

तो ये सेकंड स्टैंजा था, पहला वाला स्थाई। सुजलाम सुफलाम मलया जशीतलाम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। तीसरा स्टैंजा जो हटाया था, कोटि कोटि कंठ कलकल विनाद कराले कोटि कोटि भुजेर धर खरकर वाले के बोले मा तुमी अबोले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम। तुमी विद्या तुमी धर्मा तुम हृदय तुमी मर्मा त्वही प्राणा शरीरे बाहुले तुमी मा शक्ति हृदय तुमी मा भक्ति तोमारे प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। तुम्ही दुर्गा दश प्रहार धारणी कमला कमल दल वाहिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। शस्य श्यामलाम सरलाम सुसुमिताम भूषिताम धरणीम भरणी मातरम वंदे मातरम। तो ये है पूरा वंदे मातरम गीत, और अगर आपने अभी तक नहीं गाया है तो ज़रूर गाइएगा और सीखिएगा कि आपका देश का गीत कितना लंबा चौड़ा और कितना खूबसूरत है। हमारे देश की विविधता को, हमारे देश की देवी को और हमारे देश की जो संस्कृति है उसको रिप्रेजेंट करता गीत है। तो इसके पीछे का इतिहास मैंने आप लोग को बताया, जान के अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा। और आगे चलिए बात करते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है। फिलहाल मैं आपको पेट्रियाटिक सॉन्ग बिल्कुल नहीं सुनाने वाली हूँ, मैं बात कर रही थी क्योंकि अभी बताना चाहती हूँ कि अभी रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती का जो पूरा महोत्सव है वो उधर वेस्ट बंगाल में चलता है, तो उसी से जुड़ी मुझे थोड़ी सी न्यूज़ दिखी तो मुझे याद आ गई ये बात। तो मैंने सोचा आप लोगों से क्यों ना बता दूं, कहीं मैं भूल गई आगे और बताना चाहा और मैं भूल गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए चलिए कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही चलती रहेंगी। और एक गाना है, मूवी आई थी जिसे कहते ना, मैंने कहा ना कि सच जो है या कोई मतलब बात है जिसमें बहुत रियलिटी है सच्चाई है वो कुछ दिन तक शांत रह सकता है, लोगों को मिल नहीं सकता पर ऐसा नहीं छुप नहीं सकता है, देर सही लेकिन आपके सामने वो सच ज़रूर आएगा। तो ये था वंदे मातरम का सच जो हमारे से शायद छूटा था या छुपा था, हमने ध्यान नहीं दिया। तो चलिए, ये गाना है बेगम जान फिल्म का, जो काफ़ी अंडररेटेड मूवी रही जिसमें आपकी आज़ादी की जंग दिखाई गई, उस फिल्म का ये गाना है, वो सुबह फिर से आएगी। मुझे बहुत प्यारा लगा ये गीत और शायद आपने सुना हो कि प्लेलिस्ट में कभी रहा हो, पर आप इसको सुनेंगे एक बार ना तो आप कहेंगे कि आरजे बिना आपने क्या गाना चुना है। मूवी शायद ही किसी ने देखी हो, लेकिन जिसने नहीं देखी मैं उसे कहूँगी आज़ादी का एक चेहरा ये भी था। अगर आपने नहीं देखी तो बेगम जान ज़रूर देखिएगा। तेज नारायण शुक्ला जी आपका भी स्वागत है, फैज़ाबाद से हमें सुन रहे हैं, अनिल जी हमें गोरखपुर से सुन रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और उम्मीद करूंगी आपकी कलम ने जो कुछ भी लिखा होगा वो आज हमारे कानों तक जाएगा। तो कॉलिंग वाली शाम है तो आप अपनी आवाज़ में कुछ भी बेहतरीन सा सुना सकते हैं। फिलहाल ये गीत सुनिए और बताइए कैसा है।

इतना प्यारा सा गाना सुन के मुझे लगता है आप लोग को मज़ा तो ज़रूर आया होगा। और हाँ भाई, कुछ रेयर गाने सुन के मन खुश भी हो जाता है। और मैं सच्ची बताऊँ कि अगर आपने बेगम जान नहीं देखी तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा, और आप ये बात ज़रूर फील करेंगे कि कुछ गाने जो हमने नहीं सुने शायद हमारी एक मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि अच्छे गानों को सुनना जो है हमारा कहते हैं ना अधिकार है। सो ये अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता, और इस अधिकार को दिलाने में आरजुबीन आपके साथ है। और ये गाना भी कंटिन्यूसली मैंने लगा दिया, बेगम जान का ही है, प्रेम में तोहरे, और एक पुराना गाना है, इसमें आशा भोसले की आवाज़ है, और इस गाने में भी एक अलग प्रेम दिखाया गया है। ये उस समय का की बात थी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, और विभाजन के समय बहुत सारे दिल टूटे थे, बहुत सारी प्यार की कहानियां अधूरी रह गई थी, बहुत सारी माएँ अपने बच्चों से जुदा हुई थी, बहुत सारे परिवार बिखर गए थे। तो उस दर्द को शब्दों में बयां कर पाना तो बहुत मतलब मुझे लगता है मुश्किल है, फिर भी प्रेम था लोगों में, बहुत अनूठा प्रेम। तो आपके कॉल का इंतज़ार है, और अभी इस गाने को कंटिन्यू ना करते हुए मैं अगला गाना सुनाती हूँ जो अलग ही लेवल का है, क्योंकि अब एनर्जी बढ़नी चाहिए, शाम हो रही है, तो शाम मतलब ढेर सारी एनर्जी, ढेर सारे सपने, ढेर सारी एनर्जी के साथ आपकी और मेरी आवाज़ जो हवा में तैरते हुए दूर किसी अपने को एक छोटा सा पैगाम देगी और कहेगी कि अरे भाई तुम्हें किसी ने याद किया है। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, सपनों से भरे नैना, ननींद है ना चैना, और आपको गेस करना है कि ये आवाज़ किसकी है। होप्स हो कि आपको याद आ जाएगा कि ये गाना किसकी आवाज़ में है। काफ़ी एनर्जी वाला गाना है, बहुत प्यारा गाना है, सुनने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग।

0: एनर्जी तो यहीं यूं ही बढ़ती रहेगी, लेकिन अभी कॉल कनेक्ट करने के बाद आ चुकी है, तो देखते हैं किसकी आवाज है। हेलो, वेरी गुड इवनिंग।
1: नमस्कार,
0: नमस्कार अनिल जी, कैसे हैं? शुभ संध्या।
1: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और गर्मी को एकदम एंजॉय कर रही हूँ।
1: गर्मी को एंजॉय करना तो मैं पहली बार हूँ।
0: क्यों नहीं, गर्मी को एंजॉय करना भी मतलब गर्मी की तौहीन होगी अगर गर्मी की बुराई हम
1: करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं नहीं नहीं, आपने जी सही कहा। गर्मी को एंजॉय, पानी डालने की जरूरत नहीं, वैसे ही नहा ले।
0: हाँ बिल्कुल, और अपना अपना भाई सबका है, घर में चार बच्चे हैं एक लड़ाकू है, तो उसकी बुराई थोड़े ना हम करते रहेंगे उसको भी।
1: अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल।
0: आज क्या सुनाइएगा
1: भाई? मैं एक नारी का विरह का चीज सुना रहा हूँ।
0: क्या बात है।
1: और एक्चुअली कहा गया है ना कि एक नारी अपने मतलब पति के याद में, और ये आपको शायद ये सचिन और उनका पिक्चर का गाना है, और का करूं सजनी आए ना पास।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: तो अगर आप इजाजत दे तो मैं थोड़ा सा सुना।
0: स्वागत है, स्वागत है।
1: अगर बुरा लगेगा तो मतलब अगर गड़बड़ होगा तो।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, सुस्वागत।
1: तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं
0: जी, बिल्कुल।
1: का करूं सजने आए ना बालम,

जब भी कोई आहट होए मनवा मोरा भागे, देखो कहीं टूटे नहीं

कलम का करो सजनी आए न बलम।

0: क्या बात है, क्या बात है। और एक क्लासिकल टच दिया है आपने आज शाम को। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ
1: थैंक
0: गया।
1: यू। अगर कुछ अच्छा लगा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं
0: बहुत बहुत आभार। और
1: और कोई
0: मतलब
1: कमियां हो तो भी
0: नहीं
1: बताइएगा।
0: नहीं मैं कमियां तो नहीं ढूंढ पाऊंगी, लेकिन हाँ मैं ये कहूंगी कि शाम को सुरीला और क्लासिकल बनाने का श्रेय आपको भी जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है, पॉजिटिव
1: वास्तव में जो
0: एनर्जी।
1: आनंद है वो कहीं और नहीं
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल, पॉजिटिव एनर्जी आ गई।
1: जी
0: बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी।
1: ओके, थैंक यू थैंक यू।
0: तो अनिल जी ने अपनी आवाज़ से ही नहीं बल्कि अपने सटीक सुरों से जो शाम में एक जादू सा बिखेर दिया है, वो कहीं ना कहीं चाय की मिठास को दोगुनी कर रहा है। तो चाय मैंने तो पी ली, लेकिन चाय का जो टेस्ट है वो एनहेंस कर गया ये गाना। का करूँ सजनी, मज़ा आ गया। मतलब मैं ये फील कर पाती हूँ कि आप लोगों से जब कम्युनिकेट करती हूँ तो कुछ नया निकल के आता है। तो मतलब कहते हैं ना, अपनी उधेड़ बुन में एक जगह बैठे रहना, अपना दिमाग लगाते रहना, उससे कई गुना बेहतर है कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को सुने। आई थिंक दिमाग का जो काफ़ी सारा स्ट्रेस है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए, गाना चल रहा था ना आप लोग का, सपनों से भरे नैना, चलिए रिकंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच अनिल जी, अपनी बेहतरीन आवाज़ के लिए और बेहतरीन गाने के चयन के लिए भी।

सपनों से भरे नैना, गाना सुन के तो मजा आ गया, लेकिन सच में इस गाने के कुछ लाइनें मुझे थोड़ा सा अंदर तक हिला के रख देती हैं। जैसे कि

मौत आ जाती है पर सुकून नहीं आता, कोई उम्मीद नहीं आती। और आज मैं बात कर रही हूँ लड़कियों की सिचुएशन की, जो एक वायरल मुद्दा देश में बना हुआ है और सब अपने अपने मतलब अपने ओपिनियन रख रहे हैं। और हमारे देश की पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने भी कहा कि एक डाइवोर्स्ड बेटी डेड बेटी से ज़्यादा बेटर होती है। पर मैं ये जानना चाहती हूँ, मतलब इनकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, अलार्मिंग चीज़ें हमारे सामने आती हैं पर अक्सर हम उन अलार्म्स को इग्नोर करते हैं। अलार्म यानी कि बेटी का ठीक से बात ना कर पाना या बेटी का भारीपन आवाज़ में, जो शायद वो शब्दों से बयां नहीं करती है। और हमें लगता है कि देखिए, आपने बेटी की शादी की है ना कि बेटी को बेचा है। और ऐसे में वो इंदौर के पिता की मुझे बात याद आती है कि ना तो बेटी को बेचा है और ना ही उसका घर का रिश्ता ख़त्म हुआ है, वो बैंड बाजे से अपनी बेटी को वापस ले आता है। क्योंकि शायद अगर उस अलार्म को वो सुनते ना तो शायद, हाँ एक सोसाइटी अलग अलार्म बजाती रहती है, अरे बेटी को एडजस्ट करना पड़ता है, बेटी को ये करना पड़ता है, तो आपको 100 अलार्म को इग्नोर करके एक अलार्म सुनना है, नहीं तो दुनिया आपकी बेटी की तहस नहस हो जाएगी। क्या होता है कि हम इन सब चीज़ों में ये भी देखते हैं कि काफ़ी अच्छे अच्छे एजुकेटेड बैकग्राउंड के लोग ऐसा कर जाते हैं। और पिछले एक साल में एक आंकड़ा सामने आया है, आंकड़ा ये सामने आया है कि कैसे बिना सबूत के किसी औरत को मारा जाए। और ये 2025 का मात्र आंकड़ा है जिसमें 16.3 करोड़ बार गूगल पर ये सर्च किया गया है। आप बताइए, बिना किसी सबूत छोड़े औरत को कैसे मारा जाए, ये सर्च किया जा रहा है। क्यों नहीं हमारे गूगल पे कोई ऐसा सेंसर होता है जो भी ऐसा सर्च करे उसकी आईपी एड्रेस को स्कैन करके उस इंसान को धरा जाए, दबोचा जाए कि भाई तुम क्यों ये ढूंढ रहे हो। क्या हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ही है कि हमें सुविधा से दे सकती है? क्या हमारी टेक्नोलॉजी हमें एक मौका ये नहीं दे सकती कि हम इन सब चीज़ों को तुरंत ट्रैक करें? और तब या तो हम बहुत पीछे हैं। मतलब ये आंकड़ा जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा भाई क्या गूगल के पास ऐसा कोई सेंसर नहीं है जो अलार्म कर दे साइबर, जो हमारे स्टेशंस हैं कि भाई ये बंदा इस लोकेशन पे ये सर्च कर रहा है, उसे तुरंत धर दबोचा जाए कि भाई तुम ये क्यों सर्च करो, किसे तुम्हें मारना है। तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम ही नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी भी वीक हो चुकी है। ठीक है, तो काफ़ी डरावनी चीज़ें सामने आ रही हैं और डर लगने लगा है बींग अ गर्ल भी, और आसपास के माहौल को देख के कि आने वाला कल क्या होगा। सबने यही कहा कि कहीं कोई कर्नाटक की बेटी, कहीं त्विशा, कहीं दीपिका, कहीं शेफाली, अलग अलग नाम की लड़कियों के साथ यही हो रहा है। और हम सोच रहे हैं और सब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हुआ था, वैसा तो नहीं हुआ था, ये तो मतलब आपको लग रहा है, ऐसा रियलिटी में थोड़े था। तो मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं, हमारा सिस्टम कहीं ब्रेक हो रहा है, हम कहीं वीक पड़ रहे हैं और उस वीकनेस को हम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं जैसा कि मुझे लगा सही वो मैंने बताया कि हमारी सोसाइटी को भी थोड़ा सा अलार्मिंग, जैसे मरने के बाद हम बहुत सारे स्टेटस लगाते हैं पर क्यों नहीं हम इस बात को लेके मतलब सपोर्ट करते हैं कि ठीक है डाइवोर्स इज ओके देन, मतलब किसी भी तरह की भ्रष्टाचार से, किसी भी तरह के बेटी को परेशान होने से बेटर है डाइवोर्स। क्यों नहीं हमारी सोसाइटी इस चीज़ को लेके कि भाई बेटी परेशान है तो उसको घर ले आओ, ये सलाह क्यों नहीं हमारी सरकारें मतलब हमारे सोसाइटी देती? और हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, हमारी गवर्नमेंट, हमारा आईटी सेक्टर क्या कर रहा है? गूगल पे 16.3 करोड़ बार 2025 में सिर्फ सर्च किया गया कि एक लड़की को कैसे बिना सबूत छोड़े मारा जाए।
तो ये झकझोरने वाली बात है, हमारे सिस्टम को अपडेट होना पड़ेगा, आईटी सेक्टर को अपडेट होना पड़ेगा। तो आज बहुत सारे मुद्दों पर बात होती जा रही है, मेरे दिमाग में जो जो मतलब आते जा रही है चीज़ें वो निकलती जा रही हैं। आप लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं? बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, खुशी उसी में मिलेगी जब शांत हो खोपड़ी। हाँ बिल्कुल, खोपड़ी को शांत करने के लिए आपको पीना चाहिए ठंडा ठंडा सत्तू का शरबत। तो चलिए एंजॉय करते एक और बढ़िया सा गाना, जिसको सुन के आप हो जाएंगे इस शाम के दीवाना।

0: तो इस प्यारे से गाने के बाद अब कॉल की बारी है, चलिए सुनते हैं आवाज किसकी है। हेलो,
1: शुभ संध्या मैम।
0: शुभ संध्या, आपका शुभ नाम?
1: मेरा नाम तेज नारायण शुक्ला है
0: जी। फैजाबाद से आप बात कर रहे हैं?
1: जी जी जी जी।
0: तो तेज नारायण जी कैसे हैं?
1: सब बढ़िया है।
0: तो आज
1: आप लोगों की कृपा है,
0: कलम से कुछ सुनाएंगे या फिर अपनी पसंद का कोई गाना?
1: पहले कलम का ही सुनाता हूँ।
0: जी जी, स्वागत है।
1: और जो सुनाने जा रहा हूँ, ये समझ लीजिए कि जब भी कोई लिखने वाला जब कलम हाथ में उठाता है कुछ लिखने के लिए, तो फिर उसकी मनस्थिति क्या होती है, और तो बस उसी पे है ये, और कितनी पंक्तियां उससे बनती हैं, कैसे लिखता है, बस वही आपको सुनाने जा रहा हूँ।
0: क्या बात है।
1: तो मैं शुरू करता हूँ। बहुधा सुनाई पड़ती है अंतर्ध्वनि की कुछ लिखूं, बहुधा सुनाई पड़ती है अंतर्ध्वनि की कुछ लिखूं, लेखनी में ही सही कहीं तो दिखूं, लेखनी में ही सही कहीं तो दिखूं, पर भावनाओं का प्रबल संवेग और अस्थिर मन नहीं बन पाता क्रम, लेखनी भी कम क्रमबद्ध होनी चाहिए परंतु मौलिकता भी नहीं खोनी चाहिए।
0: क्या बात है।
1: यहाँ तो शब्द बिखरे रहते हैं अलमारी में फैले कपड़ों की तरह, यहाँ तो शब्द बिखरे रहते हैं अलमारी में फैले कपड़ों की तरह, शब्दों को सहेजने में भाव विस्मित होते हैं, भाव में डूबता हूँ तो शब्द खोते हैं, शब्द रोते हैं, भाव में डूबता हूँ तो शब्द रोते हैं। चलिए चलिए जीवन क्रम का रूप करते हैं, मन में तात्कालिक भाव को भरते हैं, तलखियां बढ़ रही हैं संबंधों में, तलखियां बढ़ रही हैं संबंधों में, रिश्ते हो रहे हैं अक्सर बेलिबास, मन तो अब भी यही कहता है कि जैसे हो उसी हाल में रहो, शाबाश शाबाश शाबाश। ये थोड़ी सी कविता थी।
0: क्या बात है। शब्द बिखरे होते हैं जैसे अलमारी में बिखरे कपड़ों की तरह। क्या बात है।
1: यही मानसिक जी जी ये मानसिकता होती है लिखने, जब कोई भी जाता है तो इतने भाव रहते हैं कि उसको क्रमबद्ध नहीं कर पाता है,
0: कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, क्या चूज करें क्या ना चूज करें। क्या बात है, बहुत बढ़िया तुलना। अभी गाना कौन सा सुनाएंगे?
1: अरे गाना गाना गाना क्या बताऊं मैं, गाना मतलब इससे तो मेरे किशोर कुमार मेरे फेवरेट सिंगर हैं, मतलब मैं उनका ही ज्यादातर गाना पसंद करता हूँ, लेकिन इस समय थोड़ा मुझे क्षमा कीजिएगा। कई याद है, थोड़ा गाना नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगा, अगर कविता कहिए तो एक और सुना दूं।
0: जी जी स्वागत है, कविता का स्वागत है
1: जी। और अब जो भी सुनाऊंगा थोड़ा हल्का सुनाऊंगा।
0: हाँ,
1: वो थोड़ा सा माँ जी जी जी जी
0: जी
1: जी, जी तो ये जिंदगी पे ही है कि ये जिंदगी भी अजीब है, समझ में आती ही नहीं यार, ये जिंदगी भी अजीब है समझ में आती ही नहीं यार, हंसाती तो है, हंसाती तो है कभी कभी पर रुलाती है बार बार, हंसाती तो है कभी कभी पर रुलाती है बार बार, खुशियां भी अब मिलती हैं मौसमी फूलों की तरह, खुशियां भी मिलती हैं अब मौसमी फूलों की तरह, पर गमों की आंधी भी इन्हें कर देती है जल्दी ही तार तार, समाज है परिवार है रिश्ते हैं, और साथ में है खुद की परेशानियां पशेमानियां, जहमतें भी हैं जिल्लतें भी, कदम दर कदम देती है दस्तक दुश्वारियां हर बार, अब न तो कोई मंजिल है ना ही कोई रहनुमा, फिलहाल वक्त के ही हाथ में है कश्ती और वक्त के ही हाथ में है तलवार। जी धन्यवाद।
0: क्या बात क्या बात क्या बात है। जिंदगी का आपने जो कहते ना कि एक दौर बता दिया
1: लास्ट वाले में, जी लास्ट वाले में था पतवार, पतवार सारी है, किसी के साथ पतवार ही होगा जी।

0: चलिए अब बारी अगले कॉल को ऑनलाइन करने की। चलिए सुनते हैं आवाज़ किसकी है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, गुड इवनिंग या गुड नेम?
1: गुड इवनिंग मैम।
0: श्रद्धा कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल अच्छे हैं।
0: तो श्रद्धा आज आप क्या सुनाने वाली हैं?
1: हमने गाना लिखा है अपने महादेव के लिए, वही सुनाना चाहते हैं।
0: ओ वाह, क्या बात है। और मलमास चल रहा है और सोमवार का दिन भी है, तो मैं चाहूंगी कि आप जरूर सुनाएं। भक्तिमय माहौल के लिए आपकी आवाज का स्वागत है। शुरू करें।
1: हे जगदीश्वर

जगत पिता जगदीश्वर हो मेरे अंतर मन में हो तुम।

दोपहर हो करूं मैं तेरा नाम तुझे प्रणाम।

0: No, thank you.
1: क्या बात है सर, मतलब जैसे माँ सरस्वती का तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद हो श्रद्धा, क्या खूब गाया है। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। थैंक यू, इतना ही सुरीला गाती रहें और इतना ही खूबसूरत लिखती रहें। तो मैं लिसनर से बताना चाहूँगी, ये है श्रद्धा जो कि हमें रेगुलर सुनती हैं और मंडे को कॉल करके अपने लिखे हुए गीत गाती हैं जिनको ये खुद कंपोज भी करती हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच श्रद्धा। तो श्रद्धा की आवाज़ सुनने के बाद चलिए एक और छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक हम लेते हैं और इन्जॉय करते हैं। और जैसे कि कहा मैंने कि शाम कैसी भी हो, लेकिन अगर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो शाम बेहतरीन हो जाती है। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना आप लोग के साथ, जिसको सुन के आपकी और मेरी जो शाम है वो रंगीन हो जाएगी।

हम सभी के ऊपर अलग अलग रंग है, किसी पे प्यार का रंग, किसी पे एहसास का रंग, किसी पे जिम्मेदारी का रंग, किसी पे ममता का रंग, और ये सभी रंग हमें अलग अलग जगह अलग अलग रूप में दिखते हैं। पर हम कोशिश करके भी इन रंगों की जो सच्चाई है वो मिटने नहीं देना चाहते। पर जो खास चीज़ है वो ये है कि हर दिन हमें एक रंग, या कह सकते एक कह सकते कवर चढ़ाता रहता है, और वो होता है हमारे मेमोरीज का कवर। और वो मेमोरीज चढ़ती जाती है और फाइनली एक बड़ी सी किताब लिख जाती है, और उस किताब का नाम हमें रखना होता है। फिलहाल आप बताइए, आपकी किताब में पन्ने कैसे आप रखेंगे, खुशियों के, यादों के, एहसासों के, या वो पन्ने जो शायद कभी लिखे ही नहीं गए। तो इसी के साथ मुझे अपनी आरजे बीना को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे, होगी ढेर सारी बातें, और कॉलिंग टाइम अभी ख़त्म हो चुका है, मैं आपको बता देती हूँ। और कल आपके साथ होगी एक प्यारी सी कहानी की बात। और अभी आप सुन रहे हैं गाना रंगरेज मेरे, आवाज़ है जावेद बशीर की, बहुत ही प्यारा सा गाना है। एंजॉय करिए और बताइए इस गाने को सुन के कैसा लगा।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।

खामोशियाँ जो लफ्ज़ों से बयान नहीं होती, वो अक्सर दिल के सबसे करीब, सबसे नज़दीक होती हैं। लेकिन जब इन खामोशियों को किसी की आवाज़ मिल जाए तो वो एक खूबसूरत दास्तान बन जाती है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? सो नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। हाँ, और कहते हैं कि कुछ खामोशियां भी बहुत कुछ कह जाती हैं, तन्हाइयों में भी यादें रह जाती हैं। यूं तो लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं जज्बात जताने में, यूं तो लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं जज्बात जताने में, पर कुछ बातें बिना कहे दिल में उतर जाती हैं। सो आज की शाम आपके दिल के हर उस अनकही बात को, हर उस दबी हुई खामोशी को हम देंगे एक आपकी फरमाइशी के थ्रू एक नया रास्ता, नया जरिया। तो बैठे किसके इंतजार में हैं? आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल आ चुकी है। फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और ओ माय गॉड लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं ना, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका, जज्बात आपकी, ये आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपकी। हाँ हाँ, सो स्वागत है आप सभी का आपके फरमाइशी महफिल में। तेज नारायण शुक्ला, नागेश्वर धाकड़, मुस्तफ़ा जी, केकी गुप्ता, तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से, हाँ, आपका भी दिल से ही स्वागत है, और हमारे ही दिल से नहीं, कईयों के दिल से आपका स्वागत है। केकी गुप्ता जी स्टे ट्यून्ड, और सुरेश कुमार जी चौक से, निबर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, जुगल किशोर वर्मा जी, जग्गू दादा जी एमपी से, श्याम नाम की पगली मीन्स सुमित्रा जी, आपका भी स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी आज सिंपल। मोहम्मद मुशीब बाराबंकी से, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। सो एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली पहली पहली फरमाइश। लेकिन उसके पहले जज्बातों की भी गठरी को खोल लो ना दोस्तों। ये चैट बॉक्स में जब तक ऐसे चहल पहल नहीं दिखती है ना, तब तक आपकी आज सिंपल के दिलो दिमाग में भी चहल पहल नहीं होती है, वो मज़ा नहीं आता है ना दोस्तों, वो फील नहीं आता। समझ रहे ना बात को? आप समझते ही हैं तो बात को, तभी ना आ जाते हैं आधी रात को। आधी रात तो फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन सुकून का सबसे बेस्ट टाइम कोई होता है तो वो तो शाम ही होता है। और आज तो मंडे है, कल मैं आप लोग से नहीं मिली थी, कल मैंने आप लोग को बहुत ज़्यादा मिस किया था। आप लोगों ने मुझे कितना मिस किया था मुझे ज़रूर बताना। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बंटी गुर्जर। सो देरी किस बात की है, बढ़ते हमारी आज की पहली फरमाइश की तरफ। हाँ, और पहली फरमाइश हमारे पास में है किसकी? नागेश्वर धाकड़ की। और नागेश्वर धाकड़ को सुनना है गाना, तेरी बंजारन रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे। आए हाय मेरी बंजारन, आपके लिए बंजारा आ ही रहा है, बस 2 मिनट रुको, फिर उसके बाद में अपने घर का गेट खोलो और बंजारा साक्षात आपके सामने खड़ा होगा। स्टे ट्यून्ड, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को इंजॉय करने के लिए और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की नतरंगी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

तू नहीं आया आ गए सारे, कब आएगा मेरे बंजारे। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारे नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, बढ़ेंगे बढ़ेंगे चलेंगे चलेंगे, थमो जरा थमो जरा, आखिर जाना कहाँ है, यहीं तो रहना है। मेरे पास, आपके पास, हम सबके पास है ना। सो नागेश्वर धाकड़ ने कुछ अर्ज भी किया था दोस्तों, उनका कहना है कि उल्फत बदल गई कभी नियत बदल गई, खुद गर्ज जब हुए तो फिर सीरत बदल गई, अपना कसूर दूसरों के सर पर डालकर, अपना कसूर दूसरों के सर पे डालकर कुछ लोग सोचते हैं हकीकत बदल गई। आए हाय, बहुत ही खूबसूरत से लाइंस थे। अब एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। निशा पटेल नगर गोंडा से आपका स्वागत है और निशा जी का कहना है कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको, आप जितना मुझसे प्यार करती हैं उससे शायद कहीं ज़्यादा आपको प्यार करती हूँ। स्टे ट्यून, लव यू निशा जी, और इन्जॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में मुस्तफ़ा जी की सऊदी से। हाँ, झूठ तो मत लिखा करो ना तुम मुस्तफ़ा जी को, फाइनली सुनना है गाना। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूँगा, और डेफिनेटली मैं भी यूं ही मस्त नगमे लुटाती रहूँगी अगर आप यूं ही मेरा साथ देने का वादा करें तो। वादा नहीं करना है, बस साथ निभाना है, निभाते रहिए मज़ा आता रहेगा। वादे तो टूट जाते हैं, है ना।

सो मस्त नगमे तो हम यूं ही लुटाते थे, लुटाते हैं, लुटाते रहेंगे। लेकिन बस यही इतना कहना चाहेंगे कि इस महफिल में एंटरटेनमेंट ना कभी कम हुई थी, ना कभी कम हुई होगी और ना कभी होनी चाहिए। सही कहा ना मैंने? और आज तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्यों दोस्तों? हाँ, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मुस्तफा जी की फरमाइश पर। अब बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से के गुप्ता जी की, और के गुप्ता जी को सुनना है गाना दोस्तों हर पल मेरे होठों पर। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा उदित नारायण कविता जी की आवाज में, 90s का सदाबहार गाना, हाउ रोमांटिक गाना दिल है बेताब मूवी का, सिर्फ और सिर्फ के गुप्ता जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। आहा, सुरेंद्र यादव जी फ्रॉम गौरा चौकी, स्टे ट्यून्ड। ऐसा लग रहा है कि कुछ मिशन पे आई हुई हूँ ना, एकदम फोकस कर रही हूँ। स्टे ट्यून्ड फ्रॉम गौरा चौकी, नाउ शूट द बॉय, है ना? स्टे ट्यून्ड। लेकिन मैं बहुत खुश हो जाती हूँ आप लोग के पास आती हूँ सच में, और जिस दिन दिन बहुत अच्छा जाता है उस दिन शायद आप लोग के पास में आके और अच्छा चला जाता है, इसलिए आप लोग के पास में आके डबल खुश हो जाती हूँ। वैसे ज़िंदगी में खुशियाँ बटोरनी चाहिए, खुशियाँ बहुत अच्छी चीज़ होती हैं, है ना? कहीं से भी बटोर लेनी चाहिए, जहाँ से मिले मुफ्त में मिले तो क्या बात, मज़े ही मज़े, बल्ले ही बल्ले, है ना?

ये कोई प्रेम दीवाना है। हाँ, सबने एंजॉय किया है तिरंगा कॉम्प्लेक्स। गोंडा से के गुप्ता जी की फरमाइश पर बेताब का दिल है बेताब का ये गाना उदित नारायण कविता जी की आवाज में। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों। अगली फरमाइश हमारे पास में है हमारे जग्गू दादा की, और जग्गू दादा को एमपी से, जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है बगावत का गाना नागिन सा रूप है तेरा। सो एंजॉय करते हैं ये गाना और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो सबीहा। आपका स्वागत है निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सौरभ मौर्या स्टे ट्यून्ड। एंजॉय करते हैं ये वाला गाना।

0: गगन को डर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अये ये नागन डसले तो क्या कहना।

हमने एंजॉय किया जग्गो दादा मींस जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर बगावत का ये गाना मोहम्मद रफी जी की आवाज में। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और सौरभ जी ने अपना नाम चेंज कर लिया है दोस्तों, उन्होंने मेंशन कर दिया है कि वो गुड़ाघाट से हैं। और सौरभ, गुड़ाघाट पे एक मेला लगता है ना हर साल, उसका नाम ही है गुड़ाघाट मेला। मैं अपने बचपन में हर साल में उस मेले पे जाती थी, लेकिन फिलहाल अभी लोगों को जाते हुए देखती हूँ, खुद नहीं जाती हूँ। आप तो बहुत इंजॉय करते होंगे, हर साल इंजॉय करते होंगे वो वाला मेला ना। सही कहा ना मैंने। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा। स्टे ट्यून्ड। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों श्याम नाम की पगली मीन्स सुमित्रा जी की, और उनको सुनना है गाना ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना नहीं।

कि तेरी नैना है जरा बेईमान से, हमने एंजॉय किया है सुमित्रा जी की फरमाइश पर ये वाला गाना। बढ़ेंगे हमारी आज की फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले नैना जरा बेईमान से जो होते हैं ना, वही नैना सबको बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी बेईमान नैना बहुत पसंद है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, और मोहम्मद मुशीर जी को बाराबंकी से सुनना है गाना, हम तुमसे जुदा होकर मर जाएंगे रो रो कर, आए हाय। किसी से जुदा होकर रोने का नहीं है, ठीक है गम है, चार दिन रखिएगा, चार दिन में भुला जाइएगा, लेकिन रोने का नहीं ना। सो एंजॉय कर लेते हैं ये वाला गाना, और इसी के साथ में मोहम्मद मुशीर जी का बाराबंकी से ये भी कहना है कि बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है। ओहो शुक्रिया, बस आप लोग का साथ ऐसे ही बना रहे और आप लोग की गपशप ऐसे ही चलती रहे, मज़े तो अपने आप आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। मोहम्मद रफी जी की आवाज में आए हाय, ये रोने धोने वाला गाना हमने एंजॉय किया है दोस्तों, मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश पर, जो की है बाराबंकी से, आखिर क्यों। सो इसका जवाब तो मोहम्मद मुशीब जी जरूर देंगे और काहे नहीं देंगे, इनका जवाब जरूर सुनेंगे हम चैट बॉक्स में। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और दोस्तों हमारे पास में अगली फरमाइश है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, और आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना ये धरती चांद सितारे। सो एंजॉय करते हैं कुर्बान का ये गाना उदित नारायण अनुराधा जी की आवाज में हमारी आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर, जो की है लखनऊ से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। इम्तियाज अहमद फ्रॉम गोंडा, स्टे ट्यून्ड।

सो आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर हमने एंजॉय किया है ये वाला गाना, और आशु जी हैं लखनऊ से। सो नवाबों के शहर से हमने एंजॉय किया है ये वाला नगमा आशु जी की फरमाइश पर। अब अगली फरमाइश हमारे पास में है हमारे गोंडा के निबर जी की, और निबर जी को रानी बाजार सुनार गली गोंडा से सुनना है गाना मेघरे। सो एंजॉय करते हैं मेघरे मेघरे। और उनका कहना ये कि बरसात की बहुत ज़रूरत है, और बरसात के लिए हम सुनना चाहते हैं स्पेशली ये वाला गाना लता जी और सुरेश जी की आवाज़ में। तो एंजॉय करते हैं निबर जी की फरमाइश पर ये वाला गाना। स्टे ट्यून्ड।

मेघा रे मेघा रे, लता जी और सुरेश जी की आवाज में प्यासा सावन का ये गाना हमने एंजॉय किया है। निबर जी की फरमाइश पर जो की है रानी बाजार सुनार गली गोंडा से। अगली फरमाइश हमारे पास में निशा जी की पटेल नगर गोंडा से, और निशा को पटेल नगर गोंडा से सुनना है गाना बेवफा तेरा मुस्कुराना। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, हाउ रोमांटिक वाला शायद नगमा सिर्फ और सिर्फ हमारी हमारी हमारी निशा जी की फरमाइश पर जो की है पटेल नगर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

माय गॉड, निशा की फरमाइश थी पटेल नगर गोंडा से, बेवफा तेरा मुस्कुराना हमने एंजॉय किया जुबिन नौटियाल की आवाज में। ये वाला गाना बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले जरूरी सूचना देना चाहूंगी दोस्तों कि इस फरमाइशी गीत की उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारे आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। स्वदेश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजने लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपने आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो चले एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश बिना किसी देरी के, और अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, और धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना मैं आऊंगा। सभी प्राक और जानी का ये गाना एंजॉय करते हैं सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर, जो कि आवाज विकास गोंडा से। मिलते हैं सीधे 9 बजे, कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर गोंडा शहर की धड़कन पर, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। खाना वाना खा सकते हैं, खाना वाना खा के बिस्तर पे जाके आराम भी कर सकते हैं, आराम करते हुए गीतों को सुनने में और आनंद आता है, क्यों सही कहा ना मैंने। वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो पार्थ। स्टे ट्यून्ड।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधारी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
3: High international crude prices and
4: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
5: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
6: Several key agreements were signed.
7: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
6: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
0: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
8: अगेंस्ट द असेसमेंट ऑफ
4: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
8: Like metric tons of imports have reached our shores.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमान गेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सो बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कैसी है पब्लिक, क्या है हालचाल और क्या है आज के इस ब्रेक के बाद में खास खास खास बात और शाम में बहुत ही खूबसूरत सी बात। तो पेट पूजा तो हो ही गई होगी, मेरी पेट पूजा भी नहीं हुई, मैं भी घर पे जाके ताबड़तोड़ पेट पूजा करने वाली हूँ दोस्तों। लेकिन उसके पहले एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से है। सुरेंद्र यादव जी को गौरा चौकी से सुनना है गाना तेरे लिए ही जीता हूँ मैं मेरे रघुनंदन राम। सो एंजॉय करते हैं ये डिवोशनल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ सुरेंद्र यादव जी की।

एंजॉय किया ही डिवोशनल गाना, पवन सुत हनुमान का गाना, सिया राम का गाना, हमारे सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर जो की है गौरा चौकी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन उसके पहले पार्थ जी आपको अपनी पारी का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना सब्र का फल होता है बहुत ही ज्यादा मीठा। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो प्रबल मिश्रा फ्रॉम गोंडा एंड मनीष शर्मा फ्रॉम कोरासा गोंडा। और अगली फरमाइश हमारे पास में है इट्स कुमार के एमपी रीवा से। इट्स कुमार को एमपी रीवा से सुनना है मोटिवेशनल सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

एसोसिएट्स कुमार के एमपी रीवा से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है कैफ मोबाइल वाले की गोंडा से, और कैफ मोबाइल वाले को गोंडा से सुनना है गाना बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। इसे एंजॉय करते हैं ओल्ड इज गोल्ड वाला वैजयंती माला वाला गाना। स्टे ट्यून्ड।

हजारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा कैफ मोबाइल वाले की फरमाइश पर। अगली फरमाइश हमारे पास में मुमताज अंसारी की, और मुमताज अंसारी जी को सुनना है गोंडा से गाना मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी।

सपना तो टूट जाता है। हमने एंजॉय किया मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर ये वाला गाना। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है सबीहा की। सबीहा को सुनना है गाना लेके दुनाली हाथ में, सो एंजॉय करते हैं। हाँ, आजकल मुझे बहुत पसंद वाला गाना सबीहा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

दिन में तो मने ढूंढे पुलिसिया आऊंगा, आधी रात में हमने एंजॉय किया है ये वाला गाना, सिर्फ और सिर्फ किसकी फरमाइश पर, सबिया की फरमाइश पर। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और दोस्तों अगली फरमाइश हमारे पास में है किसकी मनीष शर्मा की, खुरासा गोंडा। सर मनीष शर्मा को खुरासा गोंडा से सुनना है गाना, ओ लैला तेरी ले लेगी तो लिख के ले ले। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना हमारे मनीष शर्मा की फरमाइश पर, जो कि है खुरासा गोंडा से। और इसी के साथ में आपकी आज सिंपल नॉट से सिंपल लेना चाहेगी आप सभी से अलविदा दोस्तों। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बे इंतहा बे इंतहा बे इंतहा प्यार आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, सो मच लव, स्टे ट्यून, एंजॉय करते हैं एनर्जी से भरपूर नगमा। आहा आहा

0: हमारे शहर में लग न जाए आग नफरत की, हमारे शहर में मैं मोहब्बत हूँ, मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
5: और जेंट्स के लिए,
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
11: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
12: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें
4: एटिस्किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है जी बहारे गज़ल। और गज़ल अपने आप में जिंदगी है, वो तो अच्छा है गज़ल तेरा सहारा है मुझे, वो तो अच्छा है गज़ल तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। जिसकी तस्वीर मैं कागज़ पे बना भी न सका, जिसकी तस्वीर मैं कागज़ पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तुम अगर जख्म भी दे दो तो गंवारा है मुझे। जी हाँ, ये गज़ल है जो मोहब्बत की ज़ुबान है, दर्द की ज़ुबान है, अपनेपन की ज़ुबान है। और आज हम जिस शायर को आपके बीच लेकर आए हैं, उनका नाम है जाफर ताहिर। उन्होंने लिखा कि ये तमन्ना थी कि हम इतने सुखनवर होते। सुखनवर का मतलब होता है कवि, पोएट, शायर। एक तमन्ना थी कि हम इतने सुखनवर होते, एक गजल कहते तो आबाद कई घर होते, दूरियां इतनी दिलों में तो न होंगी यारब, दूरियां इतनी दिलों में तो न होंगी यारब, फैल जाते ये जंजीर तो समुंदर होते, अपने हाथों पे मुकद्दर के नाविस्त भी पढ़, मतलब लेटर्स डॉक्यूमेंट्स, अपने हाथों पे मुकद्दर के नाविस्त भी पढ़, न सही मानी जरा लफ्ज़ तो बेहतर होते, दिल पे एक वही और इल्हाम का रहता है समा। इल्हाम का मतलब होता है घाव का भर जाना। दिल पे एक वही और इल्हाम का रहता है समा, हम अगर जिंद न होते तो पैगंबर होते। जिंद का मतलब जो व्यक्ति अंधविश्वास न रखता हो। हम अगर दिल न जलाते तो न जलते ये चराग, आय हाय हाय, हम अगर दिल न जलाते तो न जलते ये चराग, हम न रोते तो लहू आईने में पत्थर होते, हम अगर जामे कफ रक्स न करते रहते, तेरी राहों में सितारे नए गुलजर होते, घर बना बैठे बयाबा में दीवाने, वरना पांव उठ जाते जिब्रील का शहपर होते। और ये जो गज़ल है उनकी, ये गज़ल गुलाम अली साहब ने गाई भी। जी हाँ, आज के इस प्यारे से प्रोग्राम की शुरुआत भाई हमको की है नागेश्वर धाकर जी ने। गुड इवनिंग आज ये मनुसर, शुभ संध्या आपको भी नागेश्वर जी। एक कुमार जी हमारे साथ हैं, मनीष शर्मा जी हैं भाई, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर जी, नमस्कार जी, हाँ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, जब जागो तब सवेरा। और एक्स कुमार जी बहुत दिन के बाद दिखाई पड़ रहे हैं हमको, निकही सांझ मुबारक मनु श्रीमान, आपको भी भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए, आज बहुत दिनों के बाद एक गज़ल मेरे जहन में आई। मुझको लगता है मैं क्लास 10th या 11th में था, तो आज़ू बानू की आवाज़ में ये गज़ल सुनी थी मैंने, और आज अचानक ये गज़ल हमारे जहन में आई। हो सकता है आप लोगों ने भी सुनी हो, और ये तो मैं वादा कर सकता हूँ कि बहुत दिन पहले, कम से कम हमारे जितने श्रोता हैं उन्होंने कम से कम एक महीने पहले शायद ये गज़ल ना सुनी हो, अपवाद हर जगह हो सकते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं वो प्यारी सी गज़ल, और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए रेडियो गणस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन
और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद ख़ास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए। और जी हाँ, हमारे दादा जुड़ चुके हैं गोरखपुर से, अनिल शास्त्री जी चरण स्पर्श करते हैं आपको। शुभ संध्या। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

मेरा खत पढ़ के हैरत है सबको, प्यार में हमने क्या लिख दिया है। जिसको लिखना था जालिम सितमगर, उसको जाने वफा लिख दिया है। यही प्यार है, इसी को तो मोहब्बत कहते हैं, कि इल्जाम नहीं आने देंगे साहब। एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, किसी को भूलना कितना कठिन होता है। शायद आप रिलेट कर पाएंगे। एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछ, यानी एक पल में लगता है 100 साल बीत गए। एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। भूले हैं रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम। किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। आगाज, आगाज कहते हैं शुरुआत को, आगाज़े आशिकी का मज़ा आप जानिए, आप जानिए कि शुरुआत कैसे होती है। आगाज़े आशिकी का मज़ा आप जानिए, अंजामे आशिकी का मज़ा हमसे पूछिए। अंजाम क्या होता है वो हम बताएंगे। जलते दियों में जलते घरों जैसी जौ कहाँ, जलते दियों में जलते घरों में जैसी जौ कहाँ। सरकार रोशनी का मज़ा हमसे पूछिए, वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है। वो जान ही गए कि हमें उनसे प्यार है। आँखों की मुखबिरी का मज़ा हमसे पूछिए, कहा नहीं नज़्ज़ों ने बता दिया। हंसने का शौक़ हमको भी था आपकी तरह, हंसने का शौक़ हमको भी था आपकी तरह। हंसिए मगर हंसी का मज़ा हमसे पूछिए। हम तौबा करके मर गए बेमौत ए खुमार, तौहीने मैकशी का मज़ा हमसे पूछिए। जी हाँ, तो भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए। इंसान जब किसी को भुलाता है ना, तो फिर वो किस्तों में मरता है। और जब कभी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर लेकर आती है, तो वो कहता है कि मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। जी हाँ, एक प्यारी सी गज़ल आपको सुनाने जा रहा हूँ, और निवेदन है आपसे कि अगर आप आवाज़ पहचानिए तो चैट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, लिखिए कि इस गज़ल को किसने गाया है। देखते हैं भाई हमारे श्रोताओं की पकड़ आवाज़ पर कितनी है। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आपके लिए, और आपको बताना है कि इस प्यारी सी गज़ल को गाया किसने है। गूगल का सहारा मत लीजिएगा, आवाज़ से पहचानिएगा और बता दीजिएगा। हम प्रतीक्षा करेंगे आपके उत्तर की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सविता शास्त्री जी भी, शुभ संध्या सर जी आपको भी, और सचिन शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी को प्रणाम। और SP Power 3 यानी SQ हमारे साथ हैं भाई, गुड इवनिंग, आपको भी शुभ संध्या। कोई अपना अच्छा सा प्यारा सा नाम रख लीजिए, और इसके पश्चात भाई हम आपका नाम भी ले सकें। फिलहाल चलिए, आवाज़ बताना आपकी जिम्मेदारी है, गज़ल सुनाना मेरी।

जी हाँ, और बहुत अच्छा लगा भाई। गीता जी प्रणाम करते हैं आपको, और उत्तर मिल चुका है भाई जी, यह आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। तो चलिए, मोहम्मद रफ़ी की एक गज़ल आपको हमने सुनाई, और अब आपको सुनाते हैं मोहम्मद रफ़ी की दूसरी बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल, और आपसे मिलते हैं इस गज़ल के उस पार।

जी बिल्कुल सही अंदाज भाई मोहम्मद रफ़ी की। ये दोनों गज़लें हमने आपको सुनाई और अनिल जी ने भी कह दिया है भाई गीता एकदम राइट हैं। जी हाँ बिल्कुल सही हैं और राग का नाम भी बता दिया भाई। देखिए कलाकार आदमी है, राग भैरव है। नेहा जी हमको सुनते हैं बहराइच से। गुड इवनिंग, नमस्कार सर, आदाब करते हैं आपको नेहा जी, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आप गोंडा में आएंगे तो आपके मुबारक कदम हमारे स्टूडियो में ज़रूर पड़ेंगे। जी और इंसान जो है वो दर्द का मादा इस दुनिया में शायद हर कोई है। मुझको जिंदगी का जितना तजुर्बा है उतना मैंने देखा कि ऊपर वाले ने सबको सब कुछ नहीं दिया, कुछ न कुछ कमी रखी ताकि इंसान को लगे कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके बस के बाहर हैं। गजल आई कि सर से पातक वो गुलाबों का शजर लगता है, यानी सर से लेकर के और पांव तक गुलाब का पौधा लगता है। बावजू वजू बोलते हैं, हमारे मुस्लिम भाई जानते होंगे कि जब आप इबादत करने जाते हैं तो हाथ पैर को, कान को, आँख को धुला जाता है। जिस प्रकार से मंदिर जाते समय आप स्वच्छ होते हैं उसी प्रकार से वजू करना होता है। मतलब उसको वजू किए बिना अगर आपने कुरान को छू लिया तो ये नहीं, नापाक अगर हैं आप या मस्जिद जा रहे हैं नमाज पढ़ने तो वजू बहुत ज़रूरी है, सफाई, एक प्रकार से स्नान। सर से पातक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू होके भी छूते हुए डर लगता है। इतने पवित्र है लेकिन फिर भी छूते हुए डर लगता है। मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफर लगता है। मुझ में रहता है कोई दुश्मन जानी मेरा, मुझको लगता है कि मेरे अंदर ही मेरा कोई दुश्मन बैठा हुआ है। मुझ में रहता है कोई दुश्मन जानी मेरा, खुद से तन्हाई में मिलते हुए डर लगता है। बुत भी रखे हैं, नमाजें भी अदा होती हैं, बुत भी रखे हैं, नमाजें भी अदा होती हैं, दिल मेरा दिल नहीं अल्लाह का घर लगता है। और जिंदगी जिंदगी, शायर का दर्द यहाँ पर आता है कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीन, जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीन, पाँव फैलाऊँ तो दीवार में सर लगता है। और ऐसी स्थिति है ज़िंदगी के साथ, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास सुकून नहीं है। और ज़िंदगी का जो अंतिम लक्ष्य होता है, कोई मुझसे पूछता है कि आप क्या पाना चाहते हैं, तो मेरा एक उत्तर होता है आनंद, खुशी, बस। और वो हमको लगता है कि साधनों में नहीं है, वो आपके पास जो है, जो प्राप्त है, अगर वो पर्याप्त है, अगर ये सोच आपकी है तो आप जिंदगी में वो मकाम हासिल कर सकते हैं, हम आप। वरना शिकायतें तो सबको रहती हैं। जी हाँ, और सचिन शुक्ला जी कहते हैं सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी बिल्कुल आएंगे। और मुस्तफ़ा सऊदी जी हमारे साथ हैं जी, और धर्मेंद्र मोहन जी हैं। मनु सर जी नमस्कार, अगर इरादे नेक हों तो हम तो हमें खुद भी मिल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इरादे ही तो नेक होने चाहिए साहब, इरादों का नेक होना बहुत ज़रूरी है। और हमको इरादे नेक हैं तो खुदा भी मिल जाएगा, और 7 साल का बच्चा मिल लेता है उस ऊपर वाले से। बात हम कर रहे थे दर्द की, और जब हम गज़लों की दुनिया में जाते हैं और दर्द की बात होती है तो मुझे एक बहुत ही प्यारा नाम याद आता है, और वो नाम है अताउल्लाह खान का।
एक दौर जिया है उन्होंने अताउल्लाह खान ने। और आइए, हमने आपको रफ़ी जी को भी सुनाया, कुछ गज़लें हम चंदन दास जी की भी बजाएंगे, लेकिन फ़िलहाल चलते हैं अताउल्लाह खान की एक बहुत ही प्यारी गज़ल है, बहुत दिन हो गया होगा शायद आप लोगों ने न सुनी हो। आइए आपको आज सुनाते हैं अताउल्लाह खान की वो गज़ल जिसको सुनकर हमारे दौर के मजनू जो है वो जी एकदम डूब जाया करते थे। याद आ गया मुझे वो दिन। और आइए अब आपको ले चलते हैं अताउल्लाह खान के दर्द के साथ। सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्लेट 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

जी हाँ, अपने पास है भी क्या, आंसू है, दर्द है, गम है, और हम तो कहते ही हैं कि तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। तुम जो सोचो वो तुम जानो, हम तो अपनी कहते हैं। तुम जो सोचो वो तुम जानो, हम तो अपनी कहते हैं। देर न करना घर आने में, वरना घर खो जाएंगे। बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। छोटे बच्चे अगर कोशिश करते हैं तो रोकिए मत, क्योंकि वो जानते हैं कि वो छू सकते हैं। बड़े हो जाएंगे तो एहसास हो जाएगा कि नहीं हो सकता। बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। छल कपट सब आ जाएगा। अच्छी सूरत वाले सारे पत्थर दिल हों मुमकिन है। अच्छी सूरत वाले सारे पत्थर दिल हो मुमकिन है। हम तो उस दिन राय देंगे जिस दिन धोखा खाएंगे। किन राहों से सफर है आसा, कौन सा रास्ता मुश्किल है, यानी कौन सा रास्ता आसान है और कौन सा कठिन है। हम भी जब थककर बैठेंगे औरों को समझाएंगे। जी हाँ, बताएंगे तजुर्बा, और आपका तजुर्बा ही तो मेरे काम आता है। आप सभी जो हमको ज्ञान देते हैं उसके माध्यम से हम भी कुछ सीख पाते हैं। जी हाँ, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मिलेंगे इसी समय अर्थात 9:30 बजे कार्यक्रम में बाहर एक गजल में। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गन स्लेट 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और चलते चलते आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा नगमा।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ, ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी द ओल्ड कैफे। शिमला की सर्द हवाओं में मॉल रोड पर घूमना कबीर की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। कबीर जो पेशे से एक आर्किटेक्ट था, शहर के शोर से दूर पहाड़ों के सन्नाटे में अपने सपनों के स्केच बनाया करता था। वो गंभीर, शांत और अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाला लड़का था। कबीर को ब्लैक कॉफी पसंद थी, बिना चीनी की, कड़वी और बिल्कुल साफ जैसे उसकी जिंदगी थी। दूसरी तरफ थी अवनी। दिल्ली की भाग दौड़ से ऊबकर शिमला में अपनी मौसी के घर कुछ महीने बिताने आई अवनी बिल्कुल अलग थी। वो चुलबुली, हंसमुख और रंगों से प्यार करने वाली लड़की थी। जहां कबीर को कॉफी की कड़वाहट पसंद थी, वहीं अवनी को अदरक और इलायची वाली कड़क मीठी चाय से इश्क था। वो दिसंबर की एक धुंधली शाम थी, पारा शून्य के करीब पहुंच रहा था। कबीर मॉल रोड के एक कोने में स्थित द ओल्ड कैफे में बैठा अपने आईपैड पर एक रिजॉर्ट का डिजाइन तैयार कर रहा था। तभी कैफे का दरवाजा खुला और हवा के एक ठंडे झोंके के साथ अवनी अंदर दाखिल हुई। कैफे खचा खच भरा हुआ था। एक लौती खाली सीट कबीर के टेबल के सामने वाली थी। अवनी ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? कबीर ने बिना आंखें उठाए बस सिर हिला दिया। अवनी बैठ गई। उसने वेटर को बुलाया और कहा, एक कड़क अदरक वाली चाय, चीनी थोड़ी ज्यादा। कबीर ने अपनी ब्लैक कॉफी का घूंट लिया और अवनी की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली। अवनी ने मुस्कुरा दिया, लेकिन कबीर ने बस एक औपचारिक नोट दिया और वापस अपने काम में लग गया। कुछ ही देर में अवनी की चाय आ गई। चाय की भाप कबीर के चेहरे तक पहुंच रही थी, जिसमें अदरक की सौंध ही खुशबू थी। अचानक अवनी का हाथ टेबल पर रखे उसके मफलर से टकराया और उसकी चाय का कप कबीर के आईपैड और कुछ जरूरी कागजात पर गिरते गिरते बचा। कबीर ने फुर्ती से अपना आईपैड उठाया। आई एम सो सॉरी, सच में मेरा वो मतलब नहीं था। अवनी ने घबराते हुए टिश्यू पेपर उठाए। कोई बात नहीं, बच गया, कबीर ने रूखे लहजे में कहा। वैसे आप बहुत सुंदर डिजाइन बना रहे हैं, पर इस ठंड में इतनी कड़वी कॉफी कैसे पी लेते हैं आप? चाय पीनी चाहिए, आत्मा तृप्त हो जाती है, अवनी ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है द ओल्ड कैफे। अब तक आपने सुना अवनी और कबीर पहली बार ओल्ड स्कूल कैफे में मिले, जहां पर कबीर अपनी फेवरेट ब्लैक कॉफी पी रहा था और अवनी अदरक वाली चाय। अब आगे, कबीर ने पहली बार अपना काम पूरी तरह बंद किया। उसने अवनी को गौर से देखा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, नाक पर हल्की सी लाली और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। कबीर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। कॉफी कॉन्सेंट्रेटेड रखती है, चाय इंसानों को आलसी बनाती है। आलसी नहीं, सुकून पसंद। अवनी ने अपनी चाय का घूंट लेते हुए सुधार किया। उस शाम कैफे बंद होने तक दोनों के बीच बातों का सिलसिला चलता रहा। कबीर को पता ही नहीं चला कि कब उसकी कड़वी कॉफी खत्म हो गई और कब उसे अवनी की बातों का मीठा स्वाद अच्छा लगने लगा। उस पहली शाम के बाद जैसे शिमला के मौसम ने दोनों को मिलाने की साजिश रच ली थी। कबीर और अवनी अक्सर उसी कैफे में उसी समय मिलने लगे। कबीर अब रोज शाम को अपनी टेबल पर अवनी का इंतजार करता, हालांकि वो इस बात को खुद भी छुपाता था। अवनी जब आती तो पूरे कैफे में जैसे रौनक आ जाती। वो कबीर को अपने दिल्ली के किस्से सुनाती, अपनी पेंटिंग्स के बारे में बताती और कबीर उसे पहाड़ों की अनसुनी कहानियां सुनाता। कबीर ने अवनी को शिमला के उन रास्तों पर ले जाना शुरू किया जहां टूरिस्ट नहीं जाते थे, जैसे पुराने देवदार के जंगलों के बीच छुपी पगडंडियां, जहां सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। एक दिन वो दोनों जाखू हिल पर चढ़ाई कर रहे थे। बर्फबारी की हल्की फुहारें गिरने लगी थीं। अवनी ठंड से कांप रही थी क्योंकि वो दस्ताने लाना भूल गई थी। कबीर ने देखा, बिना कुछ बोले उसने अपने गर्म ऊनी दस्ताने उतारे और अवनी की तरफ बढ़ा दिए। और तुम? अवनी ने पूछा। मुझे आदत है पहाड़ों की, कबीर ने कहा अपनी जेबों में हाथ डालते हुए। अवनी ने दस्ताने पहने और कबीर का हाथ पकड़ लिया। कबीर ठिठक गया। अवनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आदत बदलनी भी चाहिए कबीर, कभी कभी दूसरों की गर्माहट भी महसूस करनी चाहिए। कबीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अवनी के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उस दिन बर्फ की सफेद चादर के बीच उन दोनों के दिलों में एक नया रंग घुल रहा था। शाम को वो वापस द ओल्ड कैफे आए। इस बार कबीर ने कॉफी नहीं मंगवाई, उसने वेटर से कहा दो कड़क अदरक वाली चाय। अवनी की आंखें खुशी से चमक उठी। तो मिस्टर कॉफी को चाय की आदत लग ही गई, चाय की नहीं चाय वाली की, कबीर ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा इकरार था। अवनी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपना चेहरा चाय के कप के पीछे छुपा लिया।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है द ओल्ड कैफे। अब तक आपने सुना शिमला में रहने वाले कबीर और शिमला घूमने आई हुई अवनी के बीच दोस्ती हो गई। अब वो रोज मिलने लगे। अब आगे वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था। जनवरी और फरवरी बीत गए। शिमला की बर्फ अब पिघलने लगी थी और पेड़ों पर नई पत्तियां आने लगी थीं। वसंत की आमद के साथ ही अवनी के दिल्ली लौटने का वक्त भी नजदीक आ रहा था। एक शाम जब वो दोनों मॉल रोड के सनसेट पॉइंट पर खड़े थे, सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुप रहा था। आसमान में नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों की छटा बिखरी हुई थी। माहौल में एक भारी सन्नाटा था। मैं अगले हफ्ते वापस जा रही हूँ कबीर, अवनी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा और उसकी आवाज में एक उदासी थी। कबीर का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वो जानता था कि ये दिन आएगा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं था। पहाड़ों की तरह उसकी जिंदगी भी स्थिर थी, लेकिन अवनी उस नदी की तरह थी जिसे बहते जाना था। दिल्ली बहुत दूर नहीं है अवनी, कबीर ने खुद को संभालते हुए कहा। दूरी किलोमीटर से नहीं होती कबीर, यहाँ का सुकून, ये पेड़, ये चाय और तुम, ये सब मुझे दिल्ली की भीड़ में कहाँ मिलेंगे। अवनी की आंखों से एक आंसू टपक कर उसके गाल पर आ गया। कबीर ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोछे। उसने अवनी को गले से लगा लिया। उस शाम उन्होंने कोई वादा नहीं किया, कोई कसम नहीं खाई। वो बस एक दूसरे की सांसों को महसूस करते रहे, जैसे उस पल को हमेशा के लिए अपने भीतर कैद कर लेना चाहते हों। जाने से एक दिन पहले वो आखिरी बार अपने पसंदीदा कैफे में मिले। टेबल पर दो चाय के कप रखे थे। दोनों में से किसी ने भी चाय को हाथ नहीं लगाई। चाय ठंडी हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके बीच का समय खत्म हो रहा था। ये चाय अधूरी रह गई। अवनी ने कप को देखते हुए कहा, कुछ कहानियां अधूरी ही खूबसूरत होती हैं अवनी। अधूरी चाय गवाह है कि हम फिर मिलेंगे इसे पूरा करने के लिए, कबीर ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। अगली सुबह अवनी दिल्ली की बस में बैठ गई। कबीर बस स्टैंड पर खड़ा हाथ हिलाता रहा तब तक जब तक बस पहाड़ों के मोड़ों के पीछे ओझल नहीं हो गई। शिमला फिर शांत हो गया, लेकिन कबीर के लिए ये शांति अब खामोशी नहीं, एक गहरा खालीपन बन चुकी थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है द ओल्ड कैफे। अब तक आपने सुना कबीर शिमला का रहने वाला था। अवनी शिमला अपनी मौसी के घर आई हुई थी। एक दिन दोनों की मुलाकात द ओल्ड कैफे में हुई और फिर वो रोज मिलने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे के इतने आदि हो गए कि बिछड़ने पर लगा जैसे जिंदगी में सूना पना गया हो। अवनी वापस दिल्ली चली गई थी। अब आगे 2 साल बीत गए। इस दौरान जिंदगी थमी नहीं। कबीर अपनी वास्तुकला की दुनिया में और भी सफल हो गया। उसने कई बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे किए लेकिन उसके हर डिजाइन में कहीं ना कहीं एक ऐसी खिड़की जरूर होती थी जहां से चाय की भाप जैसी धुंध दिखाई दे। वो अभी भी उस कैफे में जाता था। अवनी दिल्ली में अपनी कला की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उसने कई प्रदर्शनियां की और उसकी हर पेंटिंग में पहाड़ों का कोई ना कोई अंश जरूर होता था। कभी बर्फ से ढकी चोटियां तो कभी देवदार के पेड़ के नीचे बैठे दो साए। दोनों के बीच फोन पर बातें होती थीं, पर वक्त के अंतर और अपनी अपनी व्यस्तताओं के कारण धीरे धीरे बातें कम हो गईं, लेकिन यादें कम नहीं हुईं। एक दिन कबीर को दिल्ली में एक बड़े हेरिटेज होटल में रेस्टोरेंट को डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसे काम के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी और गाड़ियों के शोर ने कबीर को परेशान कर दिया। उसे शिमला की ठंडी हवाएं और अवनी की याद सताने लगी। कबीर को पता था कि अवनी कहाँ रहती है, लेकिन उसने उसे सरप्राइज देने का फैसला किया। उसे पता चला कि कैनॉट प्लेस की एक मशहूर आर्ट गैलरी में अवनी की पेंटिंग्स की एक प्रदर्शनी लगी है। कबीर शाम को उस गैलरी में पहुंचा। गैलरी में बहुत भीड़ थी। शहर के संभ्रांत लोग पेंटिंग्स देख रहे थे। कबीर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर गैलरी के सबसे मुख्य हिस्से पर पड़ी। वहां एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी थी जिसका शीर्षक था आधी अधूरी चाय। पेंटिंग में शिमला के द ओल्ड कैफे की वही टेबल थी। खिड़की के बाहर बर्फ गिर रही थी। टेबल पर 2 कप रखे थे, एक में काली कॉफी थी और दूसरे में आधी बची हुई चाय जिससे अभी भी भाप निकलती हुई महसूस हो रही थी। पेंटिंग के सामने एक अकेली लड़की खड़ी थी। वो कोई और नहीं, अवनी थी। कबीर की आंखें नम हो गईं। वो पेंटिंग के पास गया और अवनी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। इस पेंटिंग में चाय अभी भी गर्म है, लेकिन पीने वाला कहीं खो गया है। कबीर ने धीमी आवाज में कहा। अवनी चौंक कर पीछे घूमी। कबीर को अपने सामने देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 2 साल की दूरी, चेहरे पर आए बदलाव, सब कुछ एक पल में गायब हो गए। कबीर, अवनी के मुंह से सिर्फ इतना निकला, हाँ अवनी, तुम्हारी अधूरी चाय को पूरा करने आया हूं, कबीर ने कहा। अवनी ने बिना परवाह किए कि आसपास कितने लोग हैं कबीर को कस के गले लगा लिया। दिल्ली की उस भीड़ भाड़ वाली गैलरी में उन दोनों के लिए वक्त जैसे फिर से ठहर गया था। पहाड़ों का सुकून दिल्ली के दिल में उतर आया था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है द ओल्ड कैफे। अब तक आपने सुना, अवनी जब शिमला अपनी मौसी के घर गई थी तब वहां उसकी मुलाकात कबीर से हुई। वो दोनों गहरे दोस्त बन गए, पर अवनी को वापस आना था और वो आ गई। 2 साल बाद कबीर किसी काम से दिल्ली आया और जाकर अवनी से मिला। ऐसा लगा जैसे दोनों की जन्मों की इच्छा पूरी हो गई हो। अब आगे, कबीर का दिल्ली का प्रोजेक्ट 3 महीने चला। इन 3 महीनों में दोनों ने एक भी दिन अलग नहीं बिताया। वो दिल्ली के पुराने किलों, लोधी गार्डन और चांदनी चौक की गलियों में घूमे, लेकिन दोनों को पता था कि उनका असली घर कहाँ है। एक शाम जब कबीर का काम पूरा हो गया, उसने अवनी का हाथ पकड़ा और कहा, अवनी, दिल्ली के पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ है, नाम, शोहरत, बड़ी गाड़ियां, लेकिन मेरे पास सिर्फ मेरे पहाड़ हैं, एक छोटा सा घर है और एक पुरानी कैफे की टेबल है। क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगी? अवनी ने मुस्कुराते हुए कबीर की आंखों में देखा। कबीर, नाम और शोहरत तो कहीं भी मिल जाएंगे, पर मेरी चाय में अदरक कूटने वाला मुझे सिर्फ शिमला में ही मिलेगा। अगले ही हफ्ते अवनी और कबीर शिमला वापस आ गए। इस बार अवनी मेहमान बनकर नहीं, बल्कि हमेशा के लिए कबीर की जिंदगी का हिस्सा बनकर आई थी। उन्होंने एक सादे समारोह में शादी कर ली, जिसमें उनके परिवार वाले और द ओल्ड कैफे का वेटर भी शामिल था, जिसने उन्हें पहली बार मिलते देखा था। शादी के बाद कबीर ने अपने घर के बरामदे में एक छोटा सा कोना बनाया। अब हर शाम शिमला की पहाड़ियों पर जब सूरज ढलता है और ठंडी हवाएं चलती हैं, तो उस बरामदे में 2 कुर्सियां लगती हैं। कबीर के हाथ में उसकी ब्लैक कॉफी होती है और अवनी के हाथ में उसकी कड़क अदरक वाली चाय। उनकी कहानी अब अधूरी नहीं थी, वो आधी अधूरी चाय अब मुकम्मल हो चुकी थी और उसके स्वाद में दोनों की मोहब्बत की मिठास हमेशा के लिए घुल गई थी। पहाड़ों की वादियों में आज भी जब कोई द ओल्ड कैफे जाता है, तो वेटर उस कोने वाली टेबल को दिखाकर नए प्रेमियों को एक आर्किटेक्ट और एक चित्रकार की कहानी सुनाता है, जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो अधूरी चीजें भी एक दिन मुकम्मल हो ही जाती हैं।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी द ओल्ड कैफे। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट वाला शो जिसका नाम है भूले बिसरे गीत, जो लेके आ गई है आपकी अपनी आरजे अनोखी। और आज हम एक ऐसे कलाकार की बात करने वाले हैं आज के अंक में, जो कि केवल एक गायक नहीं, एक इमोशन है। हाँ जी, और उनकी आवाज की क्या ही बात कहें। जब भी वो आए अपने संगीत के जरिए से, उन्होंने हमारे इमोशंस पे कब्जा पा लिया, हमारे हर एक दुख को खुशी में तब्दील कर दिया। उनकी आवाज ने हर दिल पे राज किया। हाँ, मानते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा अवार्ड्स तो नहीं जीते, लेकिन उन्होंने लोगों का दिल जीता। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं केके की। जी हाँ, यूथ सेंसेशन कहे जाने वाले केके, जिनका की पूरा नाम आज तक एक रहस्य बन के रह गया है, जिसको मैं बताने वाली हूँ कि वो है क्या। जी हाँ, इनका पूरा नाम है कृष्ण कुमार कुनाद और ये साउथ से संबंध रखते हैं। इनके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि आज इन पे चर्चा की जा रही है, जो कि अपनी आवाज से हर दिल को जीत लिया करते थे। आएंगे और मुलाकात होगी और बात होगी, लेकिन उससे पहले इन्हीं की आवाज में ये सॉन्ग।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं केके की। इनका जन्म 23 अगस्त 1968 में हुआ, जिन्हें केके के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम मैंने अभी आपको बताया, कृष्ण कुमार कुनाथ था। एक भारतीय पार्श्व गायक है नहीं थे। जी बिल्कुल सही सुना आपने, अभी हमारे बीच नहीं है। केके को भारत के सबसे महान और सबसे सफल पार्श्व गायकों में से एक माना जाता है। विभिन्न संगीत शैलियों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध, उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में गाने रिकॉर्ड किए। केके को 2 स्क्रीन अवार्ड्स सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, साथ ही 6 फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए भी नामांकित हुए थे केके।

केके ने अपने करियर की शुरुआत विज्ञापनों के लिए जिंगल्स गाकर की और 1996 में माचिस के एक गाने से फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें इन्हें बहुत सारा रोल तो नहीं मिला और ना ही ये प्रचलित हुए। इनके अलावा हरिहरन और शंकर महादेवन जैसे दिग्गजों की आवाज इस गाने में थी। केके ने 1999 में अपना पहला एल्बम पल रिलीज किया। इस एल्बम के गाने पल और यारों, जो बहुत ही ट्रेंड में अभी भी जब कोई भी दोस्ती का दिवस आता है तो ये गाना बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में देखा जाता है, जो कि बेहद लोकप्रिय हुआ और स्कूल के ग्रेजुएशन समारोह जैसे समारोह में गाए गए। ये एल्बम उनके करियर की सफलता साबित हुआ। 1999 की फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही ने उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए नामांकित किया।

केके ने विभिन्न भाषाओं में सफल गीतों के साथ 2000 के दशक के अग्रणी गायकों में से एक के रूप में खुद को स्थापित किया। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में शामिल हैं दिल चाहता है, कोई कहे कहता रहे, साथिया ओ हमदम सोनियो रे, देवदास से डोला रे और 10 का टाइटल सॉन्ग, जी हाँ 10 बहाने करके ले गए दिल, वो लम्हे वो रातें कोई ना जाने, तू ही मेरी शब है सुबह है, ओम शांति ओम आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, और बचना ए हसीनों खुदा जाने के मैं फिदा हूँ। जन्नत मूवी से जरा से दिल में दे जगह तू, खट्टा मीठा मूवी से सजदे, पिया आए ना आशिकी 2 से, इसी तरह से मर्डर 3 से मत आज मारे, इस तरह से कई सारे गाने हैं जो ब्लॉकबस्टर हुए, इसके अलावा सुपर डुपर हिट रहे और हर एक यूथ के दिल की धड़कन बन गए। केके अपने रोमांटिक गानों के लिए द मेसमराइज के नाम से लोकप्रिय थे। केके को उनके गाने पल के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक पुरुष और फिल्म बचना ए हसीनों के गाने खुदा जाने के मैं फिदा हूँ के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष का स्क्रीन पुरस्कार मिला।

आइए अब आपको केके के प्रारंभिक जीवन और उनके कार्यों की ओर ले चलते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया, केके का जन्म 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में मलयाली माता पिता के घर हुआ। कृष्ण कुमार यानी केके की माँ का नाम था कनक वल्ली और पिता का नाम था सीएस मेनन। कृष्ण कुमार की पढ़ाई लिखाई नई दिल्ली से हुई और ये वहीं के पले बढ़े। बॉलीवुड में आने से पहले उन्होंने पूरे 3,500 जिंगल्स गाए।

केके ने दिल्ली के माउंट सेंट मैरी स्कूल और किरोडीमल कॉलेज से दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। वे 1999 के क्रिकेट विश्व कप के दौरान भारतीय राष्ट्रीय टीम के समर्थन में रिलीज हुए गीत जोश ऑफ इंडिया में दिखाई दिए। किरोडीमल कॉलेज से वाणिज्य में डिग्री प्राप्त करने के बाद केके ने संगीत के प्रति अपने प्रेम को आगे बढ़ाने से पहले 6 महीने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया। उन्होंने प्रतिस्पर्धी रिकॉर्डिंग उद्योग में खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया और गुजारा चलाने के लिए होटलों में गाना भी गाया और 1994 में ये मुंबई चले गए।

बात करेंगे केके की आजीविका पर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआती दिनों में इन्होंने अपने जीवन यापन के लिए कई सारे होटल्स रेस्टोरेंट में गाना गाया। इसके बाद इन्होंने कई सारी जगहों पर जिंगल्स गाया। फिर ये गए साउथ में, बिल्कुल तमिल मलयालम जैसे फिल्मों में इन्होंने अपनी आवाज दी। और इतने सारे संघर्ष को करने के बाद इनको मौका मिलता है बॉलीवुड में आने का। तो इस तरह से इन्होंने अपने जीवन यापन के लिए संगीत को ही माध्यम बनाया और पूरा जीवन संगीत के नाम कर दिया।

इसके अतिरिक्त ये कई सारे एल्बम्स में दिखे और टेलीविजन में भी इन्होंने कई सारा काम किया। जैसे उन्होंने टेलीविजन धारावाहिक के लिए कई गाने गाए, जिनमें जस्ट मोहब्बत, शकालाका बुम बुम, कुछ झुकी सी पलके, हिप हिप हुर्रे आदि सीरियल शामिल हैं। उन्होंने पाकिस्तानी टीवी शो द घोस्ट में तन्हा चला गाया, जो 2008 में हम टीवी पर प्रसारित हुआ था। इस गाने को फारूख आबिद और शुएब फारूख ने संगीतबद्ध किया था और इनके बोल मोमिना दुरैद ने लिखे थे।

KKM TV इंडिया के संगीत कार्यक्रम कोक स्टूडियो में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने साबरी ब्रदर्स के साथ कव्वाली चढ़ता सूरज और झनकार बीट्स से तू आशिकी है का एक रिप्राइज गाया। वो आज तक चैनल पर सुरीली बात में दिखाई दिए। केके ने सोनी मिक्स और MTV अनप्लग्ड पर प्रदर्शन किया, जो 11 जनवरी 2014 को MTV पर प्रसारित हुआ। उन्होंने अप्रैल 2014 में दुबई में अपना सलाम दुबई 2014 संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया और गोवा, दुबई, चेन्नई और हांगकांग में संगीत कार्यक्रम में प्रदर्शन किया।

29 अगस्त 2015 को के टेलीविजन सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल जूनियर के दूसरे सीजन में जज और गेस्ट जूरी सदस्य के रूप में दिखाई दिए। उसी वर्ष 13 सितंबर को वो सोनी मिक्स के शो बातों बातों में दिखाई दिए। 2019 में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए साक्षात्कार में केके ने कहा कि वो लाइव परफॉर्मेंस और पार्श्व गायन के साथ संगीत उद्योग में सक्रिय थे। लाइव परफॉर्मेंस उन्हें खुश करती थी। वे दर्शकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नहीं छोड़ना चाहते थे और 2008 में अपने दूसरे एल्बम की सफलता के बाद एक नया एल्बम जारी करना चाहते थे।

अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, के ने 1991 में ज्योति कृष्णा से शादी की। उनके बेटे नकुल कृष्ण ने उनके साथ मस्ती, जो कि एक एल्बम है, में हमसफर से गाया। केके की एक बेटी भी है जिसका नाम तमारा कृष्णा है। केके को मीडिया में भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और बहुमुखी गायकों में से एक बताया जाता है। एसआर प्रवीण ने उन्हें एक दुर्लभ मलयाली गायक कहा, जिन्होंने बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाया। इंडिया टीवी ने उन्हें अपनी सर्वकालिक शीर्ष 10 बॉलीवुड गायकों की सूची में रखा। केके को गूगल की 2022 की शीर्ष सर्वाधिक खोजे गए एशियाई सूची में 30वें स्थान पर रखा गया। केके के कुल 9 गाने बीबीसी की सर्वकालिक शीर्ष 40 बॉलीवुड साउंड ट्रैक सूची में रखे गए। इस तरह इनके काम को कई सारे सराहनीय चीजों से नवाजा गया।

केके के काम को कई कलाकारों से प्रशंसा मिली। अरिजीत सिंह केके को अपना पसंदीदा गायक और गुरु मानते थे। 2023 में सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और अपने एक संगीत कार्यक्रम में उनका गाना दिल इबादत गाया। उन्हें अग्रणी गायक कहते हुए अभिजीत भट्टाचार्य ने कहा, केके एक ट्रेड सेटिंग गायक थे जो आज भी कायम है। वे हमारे आखिरी पार्श्व गायक थे, उनके बाद जो आए मैं उन्हें पार्श्व गायक नहीं मानता। तो इस तरह से इतनी बड़ी बात कह दी हमारे अभिजीत ने हमारे केके जी के लिए।

उन्होंने ये भी कहा कि उनके गाने पर्दे और नायकों के लिए लिखे जाते थे। अनुपम रॉय ने केके को अपना आदर्श बताया और कहा कि वे एक जीवांत कलाकार थे जो अपनी ऊर्जा भीड़ से प्राप्त करते थे। शान ने केके के लिए कहा कि काम करने के तरीके की प्रशंसा ही नहीं, बल्कि हमने साथ में गाने रिकॉर्ड करते हुए या मंच पर प्रस्तुति देते हुए अपने कुछ बेहतरीन पल भी बिताए हैं। केके बहुत अनुशासित थे, वे समय पर पहुंचते थे और उनकी तैयारी किसी गाने की रिकॉर्डिंग या स्टेज शो के लिए हमेशा सटीक होती थी। हमने साथ में कुछ बेहतरीन युगल गीत भी गाए। सुनिधि चौहान का कहना है, उन्हें अपना पसंदीदा बताती हैं सुनिधि और कहती हैं, मैं केके के साथ मंच पर पागल हो जाती थी और हमने साथ में जो शो किए हैं उन्हें मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं व्यक्तिगत रूप से केके की प्रशंसक हूँ, इतनी कि मैं थोड़ी सी केके बनना पसंद करूंगी। तो इस तरह के कलाकार थे हमारे केके जी।

इन सभी के अलावा कई अन्य कलाकार जैसे एआर रहमान साहब, ऋचा शर्मा, अमित मिश्रा, उषा उत्थुप, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, विशाल ददलानी और मोहित चौहान ने अक्सर उनकी संगीत क्षमताओं और गीतों की प्रशंसा की है। कई अभिनेताओं ने भी केके को अपना पसंदीदा बताया है। पंकज त्रिपाठी ने कहा, मैं केके का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। वह मेरे पसंदीदा गायकों में से एक हैं। उन्होंने जो गीत गाया वे सभी बहुत ही भावपूर्ण और अद्भुत ट्रैक हैं। केके ने इमरान हाशमी के लिए कई गाने गाए, जिनके लिए इमरान हाशमी ने कहा, एक ऐसी आवाज और प्रतिभा जैसी कोई और नहीं, वे अब उन्हें उनके जैसा नहीं बनाते हैं। केके के गाए गानों पर काम करना हमेशा से ही बहुत खास रहा है। तो बहुरूपी प्रतिभाओं के धनी और अपने प्रशंसकों के बीच लोकप्रिय हमारे केके जी आज भी हमारे बीच में जीवंत हैं। जी हाँ, अपने गानों के

के 31 मई 2022 को दक्षिण कोलकाता के नजरुल मंच में एक कॉलेज उत्सव में एक संगीत कार्यक्रम दे रहे थे। संगीत कार्यक्रम के बाद वे एस्प्लेनेड में अपने होटल लौट आए। उन्होंने अपने होटल वापस जाते समय अस्वस्थ महसूस करने की शिकायत की, जहां उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। वे बेहोश हो गए और होटल में उन्हें होश में लाने के लिए प्रयास असफल रहे। केके को लगभग 10:30 बजे कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वह मात्र 53 वर्ष के थे। 1 जून 2022 को कोलकाता पुलिस ने केके की मौत की जांच के लिए अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया। उनके शव परीक्षण की वीडियोग्राफी की गई। रिपोर्ट में मायोकार्डियल इन्फॉरक्शन यानी दिल का दौरा बताया गया और पाया गया कि दिल के दौरे के कारण संभावित मौत हुई है, जिससे किसी गड़बड़ी की संभावना से इनकार किया गया। शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर के अनुसार केके बच सकते थे अगर उन्हें होश खोने के तुरंत बाद CPR दिया जाता। उन्होंने अपनी मृत्यु से कई दिन पहले अपनी पत्नी से कंधे और बांह में दर्द की शिकायत भी की थी।